अभी आप सुन रहे थे महालय के अवसर पर विशेष कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर। सुबह के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत। पहले सुनिए शंकर महादेवन के स्वर में ये देवी आराधना।

अभी आप सुन रहे थे महिषासुर मर्दिनी स्रोत शंकर महादेवन और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये देवी भजन, एक बार फिर स्वर शंकर महादेवन का है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी में समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का

0: पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं समूह स्वर में देशकान से।

इस भक्ति रचना के साथ ही आज की वंदना अब यहीं पर संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत महात्मा गांधी एक यात्रा। इस क्रम का 9वां भाग प्रस्तुति सुमित गौतम की है।

गांधी भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित

0: प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में।
1: गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले गुरुदेव उनके सबसे बड़े आलोचक भी रहे और सबसे बड़े मुरीद भी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से लेकर उनके चरखा प्रेम तक की तीखी आलोचना की थी। शांति निकेतन में हर साल 10 मार्च का दिन गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में अपने आश्रम जीवन के अभ्यस्त हो चुके गांधी अपना सारा काम खुद अपने ही हाथों से किया करते थे। इसलिए शांति निकेतन में भी जब उन्होंने अपना कमरा और बिस्तर खुद ही साफ किया और अपने कपड़े और बर्तन भी खुद ही धोए तो यह देखकर शांति निकेतन के छात्र अपनी परावलंबिता पर बहुत शर्मिंदा हुए थे। शांति निकेतन में तो छात्रों को नौकर चाकर, रसोइये और सफाई कर्मियों की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए गांधी से प्रभावित होते हुए भी वे उनके इस अनुशासन को अपनाने के बारे में बहुत चिंतित हो गए। गांधी को यह बात समझते देर नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण देने के लिए 10 मार्च का दिन मुकर्रर किया। शुरू शुरू में तो छात्रों ने इसमें उत्साह से भाग लिया, लेकिन गांधी जी के जाते ही सब कुछ पुराने ढर्रे पर आ गया। फिर भी हर साल 10 मार्च को सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाती थी और शांति निकेतन में रहने वाले सभी लोग अपना सारा काम खुद ही करते थे। इसे ही उन्होंने गांधी दिवस का नाम दिया था। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर रहे थे तो उन्हें भारत लाने के लिए सीएफ एंड्रयूज को अफ्रीका भेजने वाले गोपाल कृष्ण गोखले और रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। भारत आने के बाद गांधी ने भारतीय जनमानस को एकदम नीचे उतरकर समझने की कोशिश की। आगे का रास्ता उन्होंने खुद ही बनाना शुरू किया। टैगोर जैसे कवि और दार्शनिक तक गांधी के बहुत सारे तरीकों और निर्णयों को शुरू शुरू में ठीक से समझ नहीं पाए। उन्होंने ऐसे अवसरों पर कड़े शब्दों में गांधी के उन निर्णयों की आलोचना की, लेकिन गांधी जी ने अपने स्वभाव के अनुरूप ही कभी भी उन पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं की। ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ जिस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया उस दौरान टैगोर यूरोप के दौरे पर थे और पूरब तथा पश्चिम की आध्यात्मिक एकता के सूत्र तलाश रहे थे। टैगोर को गांधी का यह संघर्षकारी रवैया खटका और उन्होंने सीएफ एंड्रयूज को पत्र लिखकर इसकी आलोचना की थी और बाद में तो खुलकर सार्वजनिक रूप से भी असहयोग आंदोलन के विरोध में आ गए। टैगोर के मुताबिक असहयोग एक नकारवादी विचार था और इससे मानवता में विश्वास की नीति की भी अनदेखी होती थी। टैगोर ने असहयोग को भी एक प्रकार की हिंसा करार दिया था। टैगोर के इस रवैये के जवाब में महात्मा गांधी ने 1 जून 1921 के यंग इंडिया में एक लंबा लेख लिखा जिसका शीर्षक था कईवर की चिंता। गांधी ने लिखा, मेरी समझ में रविंद्र बाबू को असहयोग आंदोलन के अभावात्मक या खंडनात्मक पक्ष से चौंकने की कोई जरूरत नहीं थी। हम लोगों ने नहीं कहने की शक्ति बिल्कुल गंवा दी है। सरकार के किसी काम में नहीं कहना पाप और अभक्ति गिना जाने लगा था। बोने के पहले निराई करना बहुत जरूरी होता है। जानबूझकर पक्के इरादे के साथ असहयोग करना वैसा ही है। हर एक किसान जानता है कि फसल बढ़ते रहने की अवधि में भी खुरपी का उपयोग करते रहना जरूरी है। टैगोर ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और उन्हें जलाने की गांधी की मुहिम का भी विरोध किया था। उन्होंने इसे ठेठ अर्थशास्त्री नजरिए से देखा और कहा कि चूंकि भारत की एक बड़ी आबादी के पास पहनने को वस्त्र नहीं है, इसलिए उसे जो भी वस्त्र मिलता है उसे अपनाना चाहिए। जबकि गांधी इसे न केवल अपने ही अर्थशास्त्री नजरिए से देख रहे थे बल्कि इसे आत्मशुद्धिकरण का तरीका मान बैठे थे। इतना तक कि अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कस्तूरबा को उपहार में दिए गए हाथ से बुनी गई विदेशी सूत की साड़ी तक उन्होंने अपने हाथों से जला दी थी।
2: कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी एक यात्रा क्रम का 9वां भाग। आलेख व वाचन सुमित गौतम का था। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे।

तो वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। ये सुनकर कैकई के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सामयिक चर्चा। विषय है धनिया की खेती से अधिक लाभ कैसे। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, धनिये की बुवाई करें। मसाले वाली फसलों में धनिये का प्रमुख स्थान है, साथ ही औषधि फसल भी है। धनिया की फसल अधिकतर हरी पत्तियों और सूखे दानों के लिए उगाई जाती है। धनिया पोषक तत्वों में विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। धनिया की फसल हरी पत्तियों के लिए प्रत्येक मौसम में उगाई जाती है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए ठंडी और हल्की गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। पाला रहित मौसम अनुकूल रहता है। दाना बनते समय अधिक तापमान, तेज हवाएं, वर्षा उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए दोमट बलुई दोमट भूमि जहां पर जल निकास का उचित प्रबंध हो उपयुक्त रहती हैं। बीज की बुवाई से पूर्व खेत तैयार करके समतल कर लेना चाहिए। जुताई गुड़ाई करते समय सभी खरपतवार निकाल कर अलग कर दें और अंतिम जुताई के समय एल्डिन 4% चून 8 किलोग्राम प्रति एकड़ भूमि में मिला दें, जिससे दीमक लगने की संभावना न रहे। अच्छे उत्पादन के लिए उन्नतशील प्रजाति के बीजों का प्रबंध करना चाहिए, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। धनिया की उन्नतशील प्रजातियां हैं RCR 41, RCR 20, DH 246, UD 743, DH 248, LCC 128, CS 6, DD 1, NS 6, IL 195, और अपनी उपलब्धता के आधार पर बुवाई करें। बीज की मात्रा छिटकवा विधि से बुवाई करने पर 20 से 25 किलोग्राम और लाइन से लाइनों में बुवाई करने पर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है। बुवाई से पूर्व बीजों को समतल पक्के फर्श पर डालकर सुविधा अनुसार रगड़कर 2 भागों में विभाजित कर लें। विभाजित बीजों को बुवाई पूर्व बाविस्टिन 2 ग्राम दवा या ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुवाई करें, जिससे बीज जनित और भूमि जनित रोगों से बचाव हो सके। फसल बुवाई के समय 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद खेत की जुताई के समय खेत में समान रूप से मिला दें। रासायनिक खादों में नत्रजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रयोग करें। नत्रजन खाद की 1/3 मात्रा बुवाई के समय, शेष मात्रा खड़ी फसल में प्रथम सिंचाई के बाद और फसल में फूल बनते समय प्रयोग करनी चाहिए। धनिया की फसल उथली जड़ों वाली होती है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में सिंचाई बहुत जरूरी होती है। कम अंतराल पर सिंचाई करते रहें, फसल में फूल और दाने बनते समय नमी की कमी न होने पाए। फसल में फूल बनते समय पाला पड़ने की अधिक संभावना रहती है। पाले से बचाव के लिए नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें और बचाव के सभी उपाय अपनाएं। खेत के चारों ओर धुआं करके भी फसल को पाले से बचाव कर सकते हैं। धनिया की फसल में अधिकतर मोल्था और चैंपा कीट नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचाव के लिए पौधों का जमा होते ही जैविक कीट नियंत्रण तकनीकी अपनानी चाहिए, जिससे पौधों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। जब फसल पकने लगे दानों के रंग में पीलापन आने लगता है, उस अवस्था में फसल की कटाई करनी चाहिए। दानों को सीधे धूप से बचाव करें, जिससे दानों का रंग खराब न हो। अगर फसल की कटाई के बाद छाया में सुखाएं तो और अच्छा रहता है।
0: कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था धनिया की खेती से अधिक लाभ कैसे। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। पहले सुनिए रेलवे परिवहन से जुड़ी ये विशेष सूचना। श्रोताओं, मथुरा जंक्शन और बटेश्वर यार्ड में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मथुरा से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन शनिवार को एक फेरा लगाएगी। इससे आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर और आसपास के स्टेशनों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। गाड़ी संख्या 01901 मथुरा जंक्शन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी अनारक्षित विशेष ट्रेन मथुरा से शाम 4 बजे रवाना होगी। यह शाम 5 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी और 5 मिनट के ठहराव के बाद आगे बढ़ेगी। यह ट्रेन शाम 6:05 पर धौलपुर, 6:33 पर मुरैना और शाम 7:15 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।

0: श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जन जागरूकता गतिविधि का आयोजन किया गया है। इस अभियान के तहत शहर के नागरिकों और व्यापारियों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। निगम की IEC टीम ने बाजार क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों में जाकर दुकानदारों एवं आम जनता से संवाद साधा और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तुरंत बंद करने, कचरे का सही तरीके से निपटान करने और पर्यावरण को नुकसान से बचाने की समझाइश दी। इसके साथ ही पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित किया गया।
1: कृपया ध्यान दें, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पात्र लाभार्थियों और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए। आज ही आयुष्मान ऐप से अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं या डायल करें 14555।
0: श्रोताओं, बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए बिजली कंपनी की ओर से आज नवर संभाग केंद्र के अंतर्गत संपर्क अभियान आयोजित किया जाएगा। इसके तहत शहर के 5 स्थानों पर शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये शिविर लक्ष्मीगंज, हरेशिव गार्डन, शिंदे की छावनी, जारी पटका नंबर 3, फालका बाजार, बेस्ट नमकीन के सामने, बाराघाटा बिक्की फैक्ट्री के पास, बाराघाटा सब स्टेशन केंद्रीय सिंह विहार कॉलोनी का कम्युनिटी हॉल, चावड़ी लेले साहब का बगीचा और वर्कशॉप फीडर क्षेत्र में शिविर लगाया जाएगा।
1: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीजों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
0: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण का आज का अंक। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार अब दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर विधानसभासनयोः भाजपेति दलेन बृहत्मत व्याप्त्या विजयः समधिगतः। तथैव असम राज्यस्य सामरिक दृष्ट्या महत्वपूर्णे नगांव लोकसभासने भाजपा प्रत्याशी देवाशीष शर्मा विजयी जातः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री कशगम टीवीके इति दलेन धारापुरम तथा मधुरांतकम इति

0: अगाधविश्वासं प्रकटीकरोति। अस्मिन् निर्वाचनचक्रे पश्चिमबङ्गालस्य नन्दीग्राम रेजीनगर आसनयोः असमस्य नगांव संसदीयक्षेत्रे च भाजपादलेन, तमिलनाडुराज्ये तमिलगवेत्री कषगम दलेन च ऐतिहासिकः विजयः प्राप्तः। लोकसुरक्षाचिन्तनात् पूर्वनियमनिषेधाच्च दिल्ली आरक्षिसंस्थया जन्तरमन्तरक्षेत्रे प्रस्तावितस्य प्रदर्शनस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। महानगर्यां दिल्ल्यां सुरक्षाव्यवस्था अत्यन्तं कठोरा वर्तते। पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रोस्थानकानि च पिहितानि सन्ति। राष्ट्रियराजधान्यां शान्तिव्यवस्थायाः रक्षार्थं दिल्ल्यारक्षिप्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विहितानां समयानाम् अभावात् जन्तरमन्तरक्षेत्रे प्रदर्शनस्य अनुमतिः प्रदातुं न शक्यते। क्षेत्रेऽस्मिन् भारतीयनागरिकसुरक्षासंहितायाः 63-100 नियमानुसारं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता वर्तते। सुरक्षाकारणात् दिल्ली मेट्रो रेल विभागेन राजीव चौक, केन्द्रीय सचिवालयं समेत्य 45 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि। यातायात नियन्त्रण विभागेनापि मार्ग परिवर्तनस्य मार्गदर्शिका प्रकाशिता अस्ति। प्रशासनेन नागरिकान् प्रति सुगम गमनाय अग्रिम मार्ग निर्धारणस्य परामर्शः प्रकल्पितः। नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास मंत्रालयस्य राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे भाषणं कुर्वन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किशोरीनां स्वास्थ्याय, पोषणाय, सर्वांगीण विकासाय च विशेष ध्यानं दातुं समाहूतवान्। जनसहभागिता भावनावर्धनाय प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् आंगनवाड़ी केन्द्राणि केवलं प्रशासनिक संस्थाः न भूत्वा सामाजिक सहयोगस्य जीवन्त केन्द्राणि भवेयुः। साक्षात्कारात् परं वार्ताहरान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोक्तवान् यत् विपक्ष नेतारः विशेष गहन संशोधन SIR इत्यस्य प्रक्रियायाः कथित विसंगतीनां विषये राष्ट्रपति महोदयां ज्ञापितवन्तः। तैरपि निर्वाचन यन्त्राणां EVM प्रयोगं समाप्य मतपत्रैः एव निर्वाचन सम्पादनस्य याचना विहिता। मतदात्री सूच्यां सामूहिक आपत्तीनां रोधनाय निर्वाचनायोगेन प्रपत्र 7 आवेदनस्य सीमा निर्धारिता। निर्वाचनायोगेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः प्रति प्रेषित पत्रे स्पष्टीकृतं यत् प्रस्तावित आपत्ति अवधौ एकेन मतदात्रा अधिकमतेन 10 प्रपत्राणि एव प्रस्तौतुं शक्यन्ते। तथैव सतत नवीनीकरण काले प्रतिमासं केवलं 5 आवेदनानि स्वीक्रियन्ते। रांचीनगरे द्वितीय T20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 6 कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला 1-1 इति समाकृता। तृतीया स्पर्धा श्वः इंदौरनगरे भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। प्रभावित स्टेशनों में

0: जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई ओडिशा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र के कथित लीक होने के संबंध में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मामला पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुआ था। बाद में यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। दो दिन की इस बैठक में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में दो विधान सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुच्चेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट अपने पास बरकरार रखी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीट और असम के नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए कल मतगणना हुई। इन 6 सीटों पर उपचुनाव मंगलवार को हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से थोड़ी देर बाद प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे डॉक्टर KBL पांडे से उनकी वार्ता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का समीक्षात्मक निबंध। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं प्रातः 7:30 से। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात और प्रातः 8:15 मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 8:30 आप सुनेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पॉडकास्ट मानसिक स्वास्थ्य समझे संभाले, डॉक्टर संजय लाहरिया संचालक व निदेशक मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे सूचना और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:30। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर PL गोहतकर का गाया राग अलैया बिलावल। प्रातः 10:00 दिल्ली की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। प्रातः 10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गैस एक प्रमुख उदर समस्या, डॉक्टर अंशुमान सोमानी से आभा गुप्ता की इस विषय पर बातचीत। प्रातः 10:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें और दिन के 11:00 से इस सभा के शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिनके अंतर्गत दिन में 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दिन में 12:00। कार्यक्रम संग्रहालय से आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम का प्रसारण होगा। दिन में 1:30 पर लोक संगीत और दिन में 1:45 पर सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति होंगे। दिन में 2:00 आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 5:00। इस सभा के सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही प्रसारित होंगे, जिनमें 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। 6:00 आप आनंद ले सकेंगे भजन संध्या का। 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 9:30 पर प्रसारित होगा अखिल भारतीय पत्रिका संस्कृति भारती। 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, आज प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पॉडकास्ट मानसिक स्वास्थ्य समझे संभाले। डॉक्टर संजय लाहरिया, संचालक व निदेशक मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। समय प्रातः 8:30 रहेगा।

श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनबाड़ी केंद्रों को सामुदायिक जन भागीदारी का केंद्र बनाने पर दिया जोर। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 से घटकर 14% हुआ, हाईकोर्ट ने कानून किया रद्द। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में सिंजी

0: युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। और भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आज आखिरी दिन, पर्यटन और एडवेंचर पर रहेगा जोर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार, विश्वविद्यालय और स्वयंसेवी संगठन आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़कर बच्चों के विकास में योगदान दे सकते हैं। श्री मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण के साथ महिलाओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने साफ सफाई को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण से जोड़ते हुए महिला एवं बाल विकास विभागों में स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने वाले 2019 के कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण ही मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार फैसले का विधेयक परीक्षण करेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक कोर्ट ने 13% अतिरिक्त नियुक्तियों को सुरक्षित रखते हुए भविष्य की भर्तियों में समायोजित करने का निर्देश दिया है। वहीं वर्ष 2022 के बाद अब तक की भर्तियों में रोके गए 13% पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन सरकार के अध्यादेश और आरक्षण की नोटिफिकेशन पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में न्यूज पिंच के यूथ कॉन्क्लेव जिनजी पिंच में शामिल होंगे। इस टॉक शो में वे युवाओं और विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी आकांक्षाओं, विचारों और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा, रोजगार, नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप जैसे विषयों पर भी बातचीत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल नरसिंहपुर में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को 502 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी करेंगे। इससे प्रदेश के 20,456 स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 8 लाख से ज्यादा बच्चों की मुफ्त शिक्षा में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 45 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं डॉक्टर यादव ने कल आगर में बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि जिले में 3,800 करोड़ रुपए की मैकिन फूड परियोजना शुरू हो रही है, जिससे करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। लालू खेड़ी में 200 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण उद्योग भी स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2027 तक गेहूँ 2,700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 17 जिलों के 82 ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज दिए गए हैं। इनमें छिंदवाड़ा के 34, हरदा के 10, सिंगरौली के 6 हितग्राही शामिल हैं। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से सर्वे कर संपत्ति के रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं और डिजिटल तकनीक से पंजीयन किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी प्रमाण मिलेगा और बैंक से कर्ज जैसी वित्तीय सुविधाएं लेने में भी मदद मिलेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में कल सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा के रंग, राष्ट्र के संग और सेवा ज्योति कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विकसित भारत की थीम पर चंद्रयान मिशन और अयोध्या के श्रीराम मंदिर को दर्शाती रंगोली बनाई। बच्चों ने भारत के नक्शे के आकार में मानव श्रृंखला भी बनाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव से लगा करके सेवा संकल्प महोत्सव का पूरा महीना, उनके सफलतम राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष और इस अवसर पर रंगोली के माध्यम से हमारे अपने मन के अंतर के भाव का बाहर का प्रकटीकरण और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश बदला और हम सब देख रहे हैं, जोरदार ताली बजाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, दोनों हाथ ऊपर करके।
0: भोपाल में चल रहे चार दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आज अंतिम दिन है। मार्ट में पर्यटन, तकनीकी, हस्तशिल्प और ग्रामीण संस्कृति आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव हरि किशोर एस ने कहा है कि भोपाल और इंदौर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बड़े केंद्र बनने की संभावनाएं हैं। वहीं प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने वर्ष 2027 को एडवेंचर ईयर के रूप में मनाने की बात कही है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। तीनों नेताओं ने पूजन अर्चन कर विश्व शांति, देश की सुरक्षा और समाज में भाईचारे की कामना की। श्री मांझी ने करीब 20 साल बाद मंदिर आने पर यहां की बदली व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि महाकाल क्षेत्र आस्था के साथ साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा हब बन गया है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए अब तक करीब 6,80,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें 6,77,000 धान उत्पादक किसान हैं। पंजीकृत किसानों का कुल रकबा 10,88,000 हेक्टेयर है। इस साल पहली बार पंजीयन में एग्रीस्टेक आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जमीन के रकबे की जानकारी मिलेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद भी मिलेगी। भोपाल के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का 13वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। समारोह में नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अनिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान 233 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी, जिनमें 108 स्नातक, 124 स्नातकोत्तर और एक पीएचडी शोधार्थी शामिल है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक देकर सम्मानित भी किया जाएगा। भोपाल एम्स में सहायक प्रोफेसर के 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 दिन बढ़ाकर 17 अक्टूबर कर दी गई है। इन पदों पर सामान्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्जरी समेत कई विभागों में संविदा आधार पर नियुक्तियां होंगी। मैहर में नवरात्रि मेले के दौरान मां शारदा के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे ने राहत दी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 14 जोड़ी ट्रेनों को 11 से 22 अक्टूबर तक निर्धारित तारीखों पर मैहर स्टेशन पर 5 मिनट का स्थायी ठहराव देने का फैसला किया है। आपको समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत कल धार जिले के बाग विकासखंड में जिला स्तरीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जनविश्वास अभियान के अंतर्गत कटनी में भी जिले के ग्राम पंचायत खुखरा में जन संवाद शिविर आयोजित हुआ। आगर मालवा जिले के सुयत कला स्थित शासकीय महाविद्यालय में आयोजित युवा संगम रोजगार स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले में 95 शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसरों के लिए प्रारंभिक चयन किया गया है। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 30वें स्थापना दिवस पर एक निजी होटल में आयोजित समारोह में 21 शीर्ष उद्यमियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों और चैम्बर के अध्यक्ष का सम्मान किया गया। झाबुआ जिले की पेटलावत पुलिस ने बमानिया में युवक के अपहरण के मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंडला जिले के ग्राम खुखरा में जन विश्वास शिविर के तहत जन संवाद आयोजित किया गया। बैतूल में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कल तहसील कार्यालय प्रभात पट्टन में उद्यमी संवाद आयोजित हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए वार्ता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का समीक्षात्मक निबंध। वार्ताकार हैं डॉक्टर KBL पांडे।
1: साहित्य को व्यापक मानवतावाद और मूल्यवत्ता से जोड़ने वाले तथा मनुष्य को सभी सरोकारों के केंद्र में रखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के ही नहीं पूरे हिंदी साहित्य के विलक्षण गद्यकार हैं। डॉक्टर नामवर सिंह जब उन्हें दूसरी परंपरा के उद्भव के रूप में देखते हैं तो द्विवेदी जी को पढ़ने का नया संदर्भ मिलता है। एक ओर शास्त्र और परंपरा का गहन पांडित्य,

दूसरी ओर आधुनिकता की मूल्य परकता के नए विमर्श की ग्रहणशील गतिशीलता जैसे ध्रुवांतों से द्विवेदी जी अमिश्र मिश्रण नहीं बनाते, बल्कि उनकी सार्थक अनिवार्यताओं का नया रसायन प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने समान रचनात्मकता के साथ उपन्यास, निबंध और साहित्य की समीक्षात्मक तथा इतिहासपरक वैचारिकी का सृजन किया है। उनमें आधुनिक समय की व्यापक चेतना की विविधता है, विचार की रूढ़िमुक्त और निर्भीक जीवंतता है। उनका पांडित्य उन्हें बांधता नहीं, स्थगित नहीं करता। कालिदास उन्हें जीवन के प्रति प्रवृत्ति के साथ सौंदर्य और लालित्य की रसपूर्णता देते हैं, तो शांति निकेतन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षितिमोहन सेन के सानिध्य में वह वैश्विकता, मानवतावाद और कला तथा साहित्य के प्रति अभिनव दृष्टि पाते हैं। यही दृष्टि उनके पूरे साहित्य को निर्धारित करती है। जगह जगह के भटकावों से वो फक्कड़ और मस्त होते जाते हैं। उनके उपन्यास इतिहास, पुराण और संस्कृति का अज्ञात पूर्व कथारस प्रवाहित करते हैं, तो अशोक के फूल, कुटज, देवदारु, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह जैसे निबंध संग्रहों में चिंतन, अनुभव और दृष्टि संपन्नता के प्रतिमान मिलते हैं। वो जब सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन साहित्य, मध्ययुगीन बोध का स्वरूप आदि ग्रंथों में साहित्य पर समीक्षात्मक तथा ऐतिहासिक विचार करते हैं, तो अभी तक प्रचलित अनेक स्थापनाओं का खंडन कर देते हैं। साहित्य के बारे में दिए गए कई फैसलों को उलट देते हैं, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया ही बदल देते हैं। वो अपने जीवन और व्यक्तित्व में जितने मौलिक और असाधारण हैं, उतने ही विचार के क्षेत्र में भी हैं। उनमें न को अमूर्त अवधारणाओं की अस्पष्टता है, न सोच की उलझनों का मकड़जाल। उनमें व्यक्ति व्यंजकता है, व्यक्ति परकता का अलगाव नहीं। उनके अशोक, कुटज, देवदारु, शिरीष सिर्फ वृक्ष नहीं रह जाते, वे पूरे इतिहास, पूरे समाज, पूरी संस्कृति की सनातन समकालीनता के प्रवाचक बन जाते हैं। वनस्पति की मनुष्य के साथ ऐसी सहवर्तिता उसके मानवीकरण से बहुत आगे की चेतना है। मनुष्य के स्वार्थ के विपरीत कुटज का परार्थ भाव और जिजीविषा का वो अभिनंदन करते हैं। कुटज हृदय से अपराजेय होकर जीता है। वो अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। कुटज का यही उपदेश है। अशोक वृक्ष के बहाने द्विवेदी जी संस्कृति पर विचार करने लगते हैं। मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के बारे में वो कहते हैं कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती ये जीवनधारा आगे बढ़ी है। द्विवेदी जी बदलती हुई सौंदर्य दृष्टि का परिचय देते हुए कहते हैं कि जिस दुनिया में छोटाई और बड़ाई में, धनी और निर्धन में, ज्ञानी और अज्ञानी में आकाश पाताल का अंतर हो, वो दुनिया बाह्य असुंदरता के दुह में खड़े होकर आंतरिक सौंदर्य की उपासना नहीं कर सकती। निरन्न निर्वसन जनता के बीच खड़े होकर आप परियों के सौंदर्य लोक की कल्पना नहीं कर सकते। नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक तोता, एक मैना और वसंत आ गया है जैसे निबंधों में वो ज्ञान और चारुता का विरल संयोग रचते हैं। व्यापक चिंताओं के साहित्यकार के रूप में द्विवेदी जी मनुष्य को ही साहित्य का लक्ष्य मानते हैं। इस मनुष्य समाज में न जाति भेद है, न रूढ़ियों और अंधविश्वासों की मान्यता। वो बहुत दुख के साथ अनुभव करते हैं कि इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं। व्यक्तित्व देखने की न उन्हें आदत है, न परवाह है। जाति पाति को ईश्वरीय विधान मानने के विरुद्ध वो तर्क देते हैं कि जो ठाकुर जाति विशेष की पूजा ग्रहण करके ही पवित्र रह सकते हैं, वे मेरी पूजा नहीं ग्रहण कर सकते। मेरे भगवान हीन और पतितों के भगवान हैं, धर्म और संप्रदाय के ऊपर के भगवान हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में संस्कृति की अवधारणा भी रूढ़िमुक्त और मानवीय है। वो संस्कृति को द्वीपों में विभाजित, परस्पर असंग और सर्वथा अमिश्रित नहीं मानते। वो लिखते हैं कि मैं संस्कृति को किसी देश विशेष या जाति की मौलिकता नहीं मानता। मेरे विचार से सारे संसार के मनुष्यों की एक सामान्य मानव संस्कृति हो सकती है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है।
सब कुछ में मिलावट

0: है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। द्विवेदी जी उस लोक धर्मी परंपरा पर विश्वास करते हैं जिसमें परिवर्तनशील गतिशीलता है। वो उस अध्यात्म से आश्वस्त नहीं है जिसमें संसार अथवा ऐहिकता का निषेध है। वो इस विचार से असहमत हैं कि इस जगत की समस्त गंदगियों से परे कोई ऐसा परात्पर ब्रह्म है जो शाश्वत है। वो जब लोक के साथ खड़े होकर गरीबी, असमानता और दासता के विरुद्ध आवेश में आते हैं तो मानवता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करते लगते हैं। स्त्री की सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं तो आज के विमर्श से भी आगे पहुंचते हैं। वो मनुष्य की व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक मुक्ति के पक्षधर हैं। उनके अनुसार अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है, सब प्रकार के शोषणों से मुक्ति का। अगली मानवीय संस्कृति मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। द्विवेदी जी का समीक्षात्मक गद्य भी नवोन्मेष पूर्ण है। वो अपने पूर्व चली आ रही शुक्ल जी की अनेक स्थापनाओं को बदल देते हैं। शुक्ल जी ने जिसे वीरगाथा काल कहकर अन्य साहित्य को साहित्य ही नहीं माना, उसे द्विवेदी जी आदिकाल कहकर सिद्धों और नाथों के साहित्य से विकसित मानते हैं। वो भक्ति युग को न तो ग्रियर्सन की तरह बिजली की कौंध की तरह अचानक मानते हैं, न शुक्ल जी की तरह दासता के पराजय बोध की प्रतिक्रिया। वो उसे जातीय चेतना से संदर्भित करते हैं। शुक्ल जी ने कबीर में काव्यत्व नहीं पाया, वही कबीर द्विवेदी जी के माध्यम से आज भक्ति युग के ही नहीं पूरी परंपरा के आदि पुरुष माने जाते हैं। शुक्ल जी ने तुलसी की तुलना में सूर को कम महत्व दिया, द्विवेदी जी ने समीक्षा की पहली पुस्तक सूरदास पर ही लिखी। ये किसी ईर्ष्या की प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि द्विवेदी जी की उदार वैज्ञानिक चेतना में लोक, समाज और व्यापक दृष्टि के आग्रह थे जिन्होंने उन्हें शास्त्रीयता से अलग मूल्य प्रदान किए। द्विवेदी जी का आनंद, थक्कड़पन, मस्ती तथा मूल्यों और विश्वासों से निर्मित व्यक्तित्व उनके पूरे कृतित्व में दिखाई देता है। व्योमकेश शास्त्री अथवा व्योमकेश दरवेश उनका एक और रूप है। द्विवेदी जी अपने ललित निबंधों, अन्य निबंधों तथा समीक्षात्मक गद्य में विचार और शिल्प के नए प्रतिमान गढ़ते हैं। वो जब कबीर के कृतित्व के साथ उनके व्यक्तित्व का निरूपण करते हैं तो कविता के सभी उपकरणों का उपयोग करने लगते हैं। यही उनके द्वारा दूसरी परंपरा का निर्माण है। उनके अस्वीकार निर्भीक हैं और स्वीकार आश्वस्त, बिल्कुल कबीर की तरह। उन्होंने लिखा है, किसी से भी न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। वो सभी साहित्यिक मूल्यों के साथ ही मानवीय संवेदना के विराट आकार और विश्व चेतना के असाधारण प्रवक्ता थे।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता हजारी प्रसाद द्विवेदी का समीक्षात्मक निबंध। वार्ताकार थे डॉक्टर के बी एल पांडे। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो मित्र विशाल। आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक कुछ खास है जो कि जुड़ा हुआ है हिंदी फिल्मी जगत से जुड़ी एक जानी मानी अदाकारा से। श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें केवल पर्दे पर देखा नहीं जाता बल्कि उनकी मौजूदगी को महसूस किया जाता है। एक ऐसा ही नाम है अभिनेत्री रेखा। श्रोताओं, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लेकर आए हैं उनकी फिल्मों के उन खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता जिसमें कभी प्रेम की मिठास है, कभी जुदाई की टीस, तो कभी जीवन और रिश्तों की गहराई। रेखा जी का फिल्मी सफर कई दशकों में फैला है। उनकी खूबसूरत अदायगी, संवाद बोलने का अंदाज और भावनाओं को पर्दे पर जीवंत कर देने की कला ने उन्हें भारतीय सिनेमा की यादगार अभिनेत्रियों में शामिल किया है। श्रोताओं, रेखा की सबसे यादगार फिल्मों में साल 1981 में रिलीज हुई उमराव जान का नाम सबसे पहले आता है। मुजफ्फर अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने एक शायरा और तवायफ का किरदार निभाया था।

फिल्म में उनकी अदायगी, नृत्य और संवाद बोलने के अंदाज ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने उर्दू भाषा की कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं ली थी। इस फिल्म में उनके भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। श्रोताओं, आज भी उमराव जान को उनके फिल्मी करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जाता है। तो आइए इस यादगार फिल्म से लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। स्वर आशा भोसले का है, गीत शहरयार का और संगीत खय्याम का।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा के जन्म दिवस पर उनकी फिल्मों से कुछ यादगार फिल्मी गीत। श्रोताओं, क्या कहने उस आवाज, उस अंदाज और उस अदाकारी के। सिनेमा प्रेमी आज भी उनकी खूबसूरती को याद करते हैं। श्रोताओं, रेखा जी की फिल्मों की यदि हम बात करें और सिलसिला का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। श्रोताओं, अमिताभ बच्चन और रेखा की सुपरहिट जोड़ी ने इस फिल्म के गीतों को भी यादगार बना दिया। श्रोताओं, इस हिट सुपरहिट जोड़ी ने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान कुल 11 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद किया और खासकर उनमें से सिलसिला को लेकर आज भी चर्चा होती है। तो आइए इस यादगार फिल्म से सुनते हैं ये गीत। संगीत निर्देशन शिवहरी का है, गीत जावेद अख्तर का और स्वर है लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन का।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: श्वेता और रेखा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी, जबकि हिंदी सिनेमा में उन्होंने 1970 में फिल्म सावन भादो से कदम रखा। शुरुआती दौर में अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली रेखा 1970 और 80 के दशक में कई शानदार फिल्मों से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। रेखा जी की अदाकारी की यही खासियत रही है कि उनके चेहरे के भाव कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं एक बेहद ही लोकप्रिय गीत जो आज भी श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह रखता है। इस गीत को हमने लिया है फिल्म घर से। गीत गुलजार का है, संगीत राहुल देव वर्मन का और स्वर लता मंगेशकर का।

श्रोताओं, रेखा जी ने रोमांटिक भूमिकाओं से लेकर गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदारों तक अपनी अभिनय प्रतिभा के अनेक रंग दिखाए। उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी आवाज़, भाव भंगिमा और नृत्य अभिव्यक्ति ने उनके किरदारों को विशेष बना दिया। और अब एक ऐसा ही गीत जिसमें प्रेम भी है, इजहार भी और एक खूबसूरत सी कसर भी। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है, गीत अनजान का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, सिनेमा बदलता रहा, दौर बदलते रहे, लेकिन रेखा जी का आकर्षण बरकरार रहा। उनका अभिनय हमें ये याद दिलाता है कि एक सच्चा कलाकार समय की सीमाओं से परे होता है। आज उनके जन्मदिन पर हमारी यही शुभकामना है कि वे सदैव स्वस्थ, प्रसन्न और यूं ही अपनी कला से आने वाले कलाकारों को प्रेरित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अगर तुम न होते से। स्वर लता मंगेशकर का है, गीत गुलशन बाबरा का और संगीत राहुल देव वर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजना

0: योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुर स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है।

0: अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
1: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
2: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्म सम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
4: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
3: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
5: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
3: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जनसेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
6: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना धन का जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
3: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है।

0: आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
2: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
2: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
3: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
2: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवि पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at World Bowls Champion of Champions after reaching semi-finals in Australia. And in men's cricket, West Indies beat India by 6 wickets in the second T20 international to level 5 match series 1-1. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centres to be developed as centres of community participation. He said families living near Anganwadi centres should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys and other locally relevant items for children. Discussing issues related to women's safety, Mr. Modi advised the development of age-appropriate modules for children on women's safety, dignity and empowerment.

0: The world, along with the COVID-19 pandemic in previous years, had set back the development prospects of the Global South. India's Putul Sonowal has created history by shoring the country of its first ever medal at the World Bowls Champion of Champions in Wareham, Australia. The 43-year-old from Assam achieved the milestone by reaching the semi-final of the men's singles event. In men's cricket, West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20 International in Ranchi last night, levelling the 5-match series 1-1. Chasing a target of 250 runs, West Indies overall the score posting 252 runs for the loss of 4 wickets in 18.3 overs, winning the match with 9 balls to spare. Captain Shai Hope led from the front with a magnificent 102 of 45 balls, while Sherfane Rutherford's 84 of 87 set the chase alight. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
1: Thank you, Pramod. By polls boost, BJP wins both Bengal seats, Assam Lok Sabha seat, headlines the Statesman via the Tribune. Headlines, ruling parties win by poll battles across 4 states, Union Territory. The Asian Age headlines, Delhi turns into fortress. To halt CJP protests today, the papers add that 40,000 plus security personnel deployed, 45 metro stations shut and mobile internet suspended in areas near protest site and diversions in most routes. Another prominent story covered in all newspapers is the Indian origin jurist Navanatham Navi Pillai winning the Nobel Peace Prize. The Hindu says international jurist Navi Pillai wins Nobel Peace Prize. The paper adds that she was born in Durban in Tamil origin parents, grew up under apartheid and studied law at Harvard. And finally, a story in the Indian Express says seized from Thane 2 years ago, infant orangutan sets to return to Indonesia. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar. Today, tightened security across national capital, Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at the World Bowls Champion of Champions after reaching the semi-finals in Australia. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पॉडकास्ट मानसिक स्वास्थ्य समझे संभाले। इस विषय पर डॉक्टर संजय लाहरिया, संचालक व निदेशक मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। आइए सुनते हैं ये पॉडकास्ट।
3: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का ये विशेष पॉडकास्ट। श्रोताओं आप जानते हैं कि हर वर्ष 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़े भ्रम और संकोच को दूर करना और लोगों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ हैं ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला के संचालक प्रोफेसर डॉक्टर संजय लहारिया जी। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं और इनसे इस विषय पर जानकारियाँ भी लेते हैं। डॉक्टर लहारिया, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद विभूति जी, आपको सबसे पहले मेरा नमस्कार और आज ये कार्यक्रम जो श्रोतागण सुन रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब, आपका नाम तो हम श्रोताओं को बता ही चुके हैं, अब सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप बताइए कि आकाशवाणी के साथ आपके जुड़ाव की शुरुआत कैसे हुई और उससे जुड़ी जो पहली स्मृति या कोई विशेष अनुभव है तो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए।
4: देखिए, आकाशवाणी हिंदुस्तान की बहुत पुरानी रेडियो सर्विस है, तो हम बचपन से ही आकाशवाणी पर आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मधुर गीत और समाचार सुनते आए हैं। जब हम पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, मेडिकल में, तब शायद मनोरंजन के लिए आकाशवाणी एक हमारा साथी होता था। तो हम विविध भारती या लोकल आकाशवाणी चैनल जब ग्वालियर में होते थे तो ग्वालियर का आकाशवाणी चैनल या विविध भारती अक्सर सुनते थे, और जब भी हमें

0: पढ़ाई के बीच में थोड़ी बोरियत महसूस होती थी तो उस वक्त हम रेडियो को अपने पास ही रखते थे, बीच में आकाशवाणी शुरू करके कुछ मनमोहक गाने सुनते थे और उससे बड़ा रिफ्रेश महसूस करते थे और फिर से वही एनर्जी हमारे अंदर पढ़ाई के लिए आ जाती थी। तो आकाशवाणी तो बचपन से ही हमारा साथी रहा है और आज मैं खुद आकाशवाणी में आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूँ, ये मेरे लिए भी बड़े गौरव की बात है और बड़े सम्मान की बात है।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता आपको थोड़ा और जान लें, इसलिए अपने बचपन, शिक्षा और करियर से लेकर आज के इस मुकाम तक आपकी जो जीवन यात्रा है उसके विषय में थोड़ा बताइए। किन अनुभवों ने आपको बहुत अधिक प्रभावित किया?
0: बेसिकली मेरा जन्म तो ग्वालियर शहर में ही हुआ है और मैं ग्वालियर का ही रहने वाला हूँ और मेरी 12वीं क्लास तक जो शिक्षा है वो ग्वालियर में ही हुई है। इसके बाद मैं मेडिकल की शिक्षा के लिए इंदौर MGM मेडिकल कॉलेज, आज भी काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है, वहाँ मेरी मेडिकल की पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने चाइल्ड स्पेशलाइजेशन किया, वो गजराजा मेडिकल कॉलेज से किया। फिर उसके बाद मैं साइकेट्री की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ PGI, जो कि आज देश का सबसे बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान है, वहाँ मैंने MD की पढ़ाई की। तत्पश्चात पिछले 12 वर्षों से मैं ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला में पहले सह प्राध्यापक के पद पर ज्वाइन हुआ था और आज प्राध्यापक एवं संचालक उस संस्था का हूँ। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मैं आज अपने ही शहर में अपनी एक संस्था उसका संचालन कर रहा हूँ।
1: क्या दिलचस्पी आप में अचानक से आई इस सब्जेक्ट को लेके? क्या कोई कारण था इसका? परिवार में कोई इस विषय से जुड़ा हुआ था?
0: ऐसा नहीं था कि परिवार में कोई जुड़ा हुआ था, लेकिन जब मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब हमने इन सब्जेक्ट्स को गहराई से पढ़ा, मानसिक रोग विषय ऐसा था जिस पर पूरे मेडिकल में भी पढ़ाई के दौरान भी बहुत कम चर्चा होती थी, थोड़ा सा ही उसमें उसका नॉलेज दिया जाता था। शायद ये कह सकते हैं कि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा पढ़ाई के दौरान। तब हमने देखा कि इस विषय के ना तो शहर में कहीं डॉक्टर हैं और ना ही इसके लिए कोई ऐसी संस्था है या ऐसे कोई थेरेपिस्ट हैं जो इस विषय पर इलाज कर सकें या सुन सकें या किसी को सुनने के लिए, जैसे काउंसलिंग सर्विसेज या कुछ इस तरह नहीं थी। हमको जो सलाह दी गई वो यही सलाह दी गई कि आप किसी फेथ हीलर से जा करके मिलें, जैसे कि कोई तांत्रिक है या कोई एस्ट्रोलॉजर है, उस तरीके से सलाह दी जाती थी, ना कि उसकी सही सलाह दी जाती थी। तब मुझे लगा कि नहीं, अब जरूरी है समाज में कि इस विषय को भी लोगों तक पहुँचाया जाए, इस बीमारी से संबंधित भी साइंटिफिक इलाज की ज़रूरत है। जैसे कि सुसाइड, अभी कुछ ही दिनों पहले 10 सितंबर को दुनिया ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया था। आत्महत्या एक बड़ा ही संवेदनशील विषय है जो कि आज हम रोज़ जब भी सुबह अखबार पढ़ते हैं, उठते हैं, तो हमें कोई ना कोई ऐसी घटना पढ़ने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है जो कि हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग होती है,
1: शॉकिंग
0: होती है। हालांकि उस समय जब मैं गया था पढ़ाई करने के लिए, उस समय इस विषय के बहुत कम डॉक्टर थे और जब मैं ग्वालियर में आया भी था तब हार्डली एक या दो डॉक्टर ही थे। इस विषय पर सरकार की भी जागरूकता आई है, मेडिकल के अंदर भी इसको एक स्पेशल सब्जेक्ट बनाया गया है, लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, लोग इसमें इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। उस समय आज से 10-15 साल पहले इस विषय की जो शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन था वो बड़ी जगह पर ही था, जैसे कि दिल्ली में या बेंगलोर निमेंस में या चंडीगढ़ PGI में या लखनऊ KGMC, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, वहीं पर इसका पाठ्यक्रम था। बाकी मेडिकल कॉलेज में, खासकर मध्य प्रदेश में, तो सिर्फ इंदौर में ही था आज से 10-15 साल पहले। अब सरकार की पहल से या प्रयासों से आज लगभग हर मेडिकल कॉलेज के अंदर मनोचिकित्सक हैं और हर जिला अस्पताल में भी एक मन कक्ष होता है जहां कोई भी व्यक्ति जाकर के अपने मन की बात बता सकता है या साझा कर सकता है। वहां पर एक मनोरोग विशेषज्ञ भी होता है और ट्रेंड काउंसलर भी होते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, पूरी दुनिया के देश इसे सेलिब्रेट करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मानसिक रोग के प्रति, मानसिक समस्याओं के प्रति जन जागरूकता कैसे फैलाई जाए, क्योंकि अगर हम जब जागरूक होंगे तभी हम किसी मनोचिकित्सक को या किसी काउंसलर को या किसी अस्पताल में जाने के लिए अप्रोच करेंगे। इस बीमारी की विडंबना है कि जिस व्यक्ति को एक गंभीर बीमारी मानसिक रोग की होती है तो उसको ये लगता है कि मुझे कोई बीमारी ही नहीं है, वो घर वालों को बोलता है कि आप लोग बीमार हैं, आपका अपना इलाज कराइए। तो ऐसी स्थिति में मरीज का इलाज करना, मरीज को दवाई खिलाना, ये बड़ा चैलेंजिंग है डॉक्टर के लिए भी और उसके घर वालों के लिए।
1: ये बिल्कुल ठीक है कि अब ज्वलंत विषय बन चुका है ये समाज का। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। आपके एक्सपीरियंस में सबसे बड़ी वो मिथ कौन सी है जिसे

0: सबसे पहले हटाना चाहिए?
1: बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग बीमारियाँ हैं, आजकल बच्चों को भी मानसिक रोग हो रहे हैं, कोई भी इम्यून नहीं है। एडल्ट एज में भी होते हैं, ओल्डर एज में भी होते हैं, महिलाओं को भी होते हैं, पुरुषों को भी होते हैं, मजदूर हैं, गरीब इंसान है उसको भी होते हैं, एक अमीर इंसान है उसको भी हो सकते हैं, कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाती है, पूरी दुनिया में जागरूकता लाई। कई सारी भ्रांतियाँ हैं, जैसे सबसे बड़ी भ्रांति है मानसिक रोग कुछ है ही नहीं है, ये किसी भूत प्रेत का साया है, ऊपरी चक्कर है, या कोई सुपर नेचुरल पावर की वजह से ये इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। बात सही है, कुछ व्यवहार ऐसे इंसान करता है इसमें, अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, तो हमें ऐसे ही लगेगा भूत प्रेत का साया है। इसीलिए सबसे पहले जो घर वाले हैं वो किसी ज्योतिष को या किसी तंत्र को अप्रोच करते हैं, अलग अलग तरह के इलाज, अलग अलग तरह की तांत्रिक विद्याएं मरीज के ऊपर आजमाते हैं। इसमें ऐसा होता है देर हो जाती है उसको अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते, ऐसा अक्सर देखा गया है कि लगभग 1-2 साल इधर उधर ट्रीटमेंट कराने के बाद में ही मरीज मानसिक अस्पताल तक या मनोरोग विशेषज्ञ तक पहुँचता है। और अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि ठीक है मानसिक रोग है, तो लोगों को लगता है कि मानसिक रोग का इलाज ही नहीं है, तो दवाइयों के प्रति भी भ्रांतियाँ हैं कि ये दवाइयाँ खराब हैं, क्योंकि मानसिक रोग में अक्सर ऐसा होता है कि दवाइयाँ लंबे समय तक दी जाती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि लंबे समय तक दवाइयाँ दी जाएंगी तो इससे हमारा मरीज और डिस्टर्ब हो सकता है। और दूसरी बात, मानसिक रोग को समाज में थोड़ा अलग तरीके से एक स्टिग्मा है उससे जुड़ा हुआ, व्यक्ति मानसिक अस्पताल तक नहीं जाना चाहता। अगर सपोज आपको नींद नहीं आती है और कोई डॉक्टर आपको कहे कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से या किसी मानसिक अस्पताल में अपना इलाज कराइए, सबसे पहला सवाल उसका यही होता है, क्या मैं पागल हूँ, मैं क्यों जाऊँ? छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी आज मानसिक अस्पतालों में काउंसलर होते हैं, छोटी मोटी समस्याओं को वो काउंसलिंग के माध्यम से भी इलाज कर सकते हैं। हर मरीज को दवाई नहीं दी जाती है, कई मरीजों का इलाज काउंसलिंग और थेरेपी के माध्यम से भी होता है। मानसिक रोग का मतलब वही नहीं है कि दाढ़ी बड़ी हुई है, नहाया नहीं है, फटे कपड़े पहने हुए हैं, पत्थर फेंक रहा है, इसे हम गंभीर मानसिक समस्या कहते हैं, जो बिना इलाज के यहाँ तक इंसान पहुँचता है। अगर समय पर उसका इलाज किया जाए तो वो भी हमारे आपके जैसे ही व्यवहार कर सकता है। आज साइंस ने काफ़ी डेवलप किया है, आज बेहतरीन दवाइयां हैं, सेफ दवाइयां हैं, जिनको लंबे समय तक लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। इस बात की जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि हर बीमारी को हम वैसे गंभीर मानसिक रोग ना समझा जाए, छोटी मोटी समस्याएं भी मानसिक रोग या मानसिक समस्याओं की कैटेगरी में आते हैं, जिसके लिए आजकल में आप घर बैठे भी कॉल कर सकते हैं, मानसिक रोग चिकित्सक या काउंसलर से सलाह ले सकते हैं, या मानसिक अस्पताल में या किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाकर के असेसमेंट करा सकते हैं। असेसमेंट कराने के बाद में मनोचिकित्सक ये डिसाइड करता है कि इसको काउंसलिंग की जरूरत है या इसको दवाइयों की जरूरत। जितनी जल्दी हम इलाज स्टार्ट करेंगे उतना ही इसमें अच्छी रिकवरी और अच्छे रिजल्ट की संभावना है, जितना देर करेंगे उतना ही लंबी दवाइयां चलने की संभावना।
0: पहले स्टेज पर ही इलाज शुरू कर देना चाहिए, इससे गंभीर रोग ना बन पाए।
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर लहरिया, आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, यहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी और अकेलापन, इन सब के अलावा सोशल मीडिया जैसी चीजें हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित कर रही है?
1: देखिए, पिछले 2 दशकों में जब से सोशल मीडिया का प्रभाव इंसानी जीवन में बढ़ा है, खासकर ये मोबाइल स्मार्टफोन जब से लोगों के हाथ में आया है, तब से ये देखा गया है मानसिक रोगों में या मानसिक समस्याओं में लगभग 10-20% का इजाफा हुआ है, और कुछ इजाफा COVID-19 पेंडेमिक के बाद लोगों में पाया गया है। तो लगभग पिछले 2 दशकों में मानसिक रोगों की समस्याएं लगभग 2 गुनी हो चुकी हैं। तो सोशल मीडिया या स्मार्टफोन, इसका प्रभाव डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में है, बच्चों पर भी इसका दुष्प्रभाव बहुत पड़ता है। पहले हम बच्चों को बहलाने के लिए कोई खेल खिलाते थे, कोई खिलौना देते थे, आज सबसे बड़ा खिलौना लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो वो बच्चों को पकड़ा देते हैं, जो मुँह से बोलेगा वही उसके सामने हाजिर हो जाएगा। ऐसा डेवलपिंग ब्रेन, ऐसा ग्रोइंग ब्रेन को अगर इस तरह की लत, एक एडिक्शन या लत या उसका डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो बच्चे के पास दिन भर अगर मोबाइल रहेगा, माएँ बड़ी आसानी से अब बच्चे से छुटकारा पाने के लिए, कि चल रो रहा है बच्चा, खाना नहीं खा रहा है, तो उसको मोबाइल दिखा के खाना खिलाने लगते हैं, बाद में कहते हैं कि ये बच्चा अब बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाता है, अब बच्चे की गलती इसमें कैसे है। तो आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों में ऑटिज़म जैसी बीमारी, जिसमें कि बच्चा सोशल इंट्रैक्शन कम करता है, कम्युनिकेशन कम करता है, क्योंकि बच्चे का सारा ध्यान मोबाइल में है, फैमिली मेम्बर्स से उसका कुछ इंट्रैक्शन होता ही नहीं है, ऑटिज़म की समस्या भी बच्चों में बहुत बढ़ती जा रही है। ADHD जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ऐसे जैसे डिसऑर्डर हैं, ये भी बच्चों में काफ़ी देखे जा रहे हैं, बच्चा बहुत चंचल हो जाता है इसके अंदर, उसका ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, तो ऐसी बीमारियाँ बच्चों में हो रही हैं। बड़ों के अंदर हम जब भी हमारी नींद खुलती है, मोबाइल की बीप हमको जगा देती है कि नहीं कोई मैसेज आया, और हम अचानक से उठ करके मैसेज
0: आता, अलार्म भी मोबाइल पर ही होता है,
1: अलार्म भी मोबाइल पर होता है। चलिए ठीक है, अलार्म तो कोई बात नहीं है, बट रात भर

0: मैसेज जो आते रहते हैं, बीप्स जो आती रहती हैं, आपको डेफिनेटली नींद में डिस्टर्ब करती हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया लोगों में नींद नहीं आने की समस्या है, लोगों में चिड़चिड़ापन है। आज अगर हमारा मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए या घर में छूट जाए या डेटा थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए या इंटरनेट बंद हो जाए तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। हर 10 सेकंड में 15 सेकंड मोबाइल को खोल करके हम देखते हैं। ठीक है, मोबाइल जरूरी भी है, ऐसा नहीं है आजकल हर काम हम मोबाइल से ही कर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन काम के अलावा भी सोशल इंटरेक्शन है, वो भी हम मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। हम ना किसी के यहाँ जाना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में लोग बड़े आइसोलेटेड हो गए हैं, एकाकी हो गए हैं, जिससे कि मानसिक समस्याएं, खासकर तनाव, स्ट्रेस, वो लोगों में काफ़ी बढ़ने लगा। पहले अगर हमें कोई तनाव होता था तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, हम दोस्तों के साथ में रहते थे, हम बात कर लेते थे,
1: खाना खाते हुए, चाय पीते हुए,
0: बिल्कुल
1: बात हो गई।
0: लेकिन आज हमारे पास मोबाइल में हमारे हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन हमारा अपना कोई भी नहीं है। हम दूसरों के पिक्चर देख के उनको लाइक करके ही खुश होते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या समस्या है उसको सुनने का किसी के पास वक्त ही नहीं है। पहले आपके पास एक बड़ा कोई खास दोस्त होता था, निस्वार्थ आपकी बात सुनता भी था, एम्पेथाइज करता था और आपके लिए कोई सॉल्यूशन भी निकालता था। आज आपके पास कोई भी नहीं है ऐसा, आप सिर्फ अकेले ही हो, आप हो और आपका मोबाइल है बस। कुछ ऐसा तरीका निकालने की ज़रूरत है कि जीवन में हमारे मोबाइल का या सोशल मीडिया का जो दखल है वो बड़ा लिमिटेड हो और इंसान रियल जिंदगी में इंटरेक्शन करे, ना कि वर्चुअल जिंदगी में, वर्चुअल लोगों के साथ में।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमें रियल और वर्चुअल का जो अंतर है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और नोटिफिकेशंस जैसे हैं तो उनको साइलेंट करने का भी ऑप्शन होता है, आपके पास ये हमेशा विकल्प है कि आप उनको साइलेंट कर लीजिए।
0: बिल्कुल, मोबाइल यूज का भी एक शेड्यूल होना चाहिए कि किस समय हमें कितना मोबाइल यूज करना है।
1: कोई भी बहुत जरूरी सूचना है वो सुबह तक वेट कर सकती है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आपकी नींद सवेरे नहीं आएगी।
0: दिन में वैसे ही लोगों पे आज सोने का इतना फास्ट लाइफ है जिसमें दिन में आराम करने का सोने का वक्त नहीं है, तो रात को 8 घंटे की नींद बिल्कुल फ्री होकर के सोना चाहिए, मोबाइल को ऑफ करके सोना चाहिए। अनलेस अंटिल आप कोई ऐसा जॉब नहीं कर रहे हैं जहां रात को भी आपको कॉल आ सकते हैं, नाइट शिफ्ट हैं या जो ऑन कॉल हैं, चाहे डॉक्टर्स ही हैं या कई लोग हैं जैसे, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो नाइट में अगर इनको किसी मोबाइल की जरूरत नहीं है तो उनको अपना इंटरनेट या मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट करके ही सोना चाहिए, जिससे कि वो अनइंटरप्टेड 8 घंटे की नींद ले सके।
1: कोई व्यक्ति किसी चिंता या उदासी से ग्रस्त है वो ये कैसे समझ पाएगा या पहचान पाएगा कि अब ये चिंता या उदासी है वो सामान्य नहीं है और मुझे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद की ज़रूरत है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आपका। मनोरोग को कैसे पहचाने? देखिए, किसी भी मनोरोग, खासकर हम डिप्रेशन या एंजाइटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन का मतलब होता है नींद और भूख। तो जब ऐसा लगे हमको कि नींद हमको प्रॉपर नहीं आ रही है, बार बार खुलती है या सुबह जल्दी खुल जाती है, हमें भूख भी कम लगती है जितना हमें कुछ समय पहले होती थी उससे कम लगती है, हमारा वजन कम होता जा रहा है या हमारा मन उदास रह रहा है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं हो रही है, किसी से मिलने की इच्छा नहीं हो रही है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, लंबे समय तक, लगभग 15 दिन, महीने भर, एक दिन की बात नहीं है, एटलीस्ट इतना समय, एक महीने का समय गुजर गया है, हमारे मन में कुछ निगेटिविटी आती जा रही है, जैसे कि इंसान को ये लगने लगता है कि ये दुनिया बेकार है, ज़िंदगी बेकार है, कुछ करने का मन नहीं है, मैं घर वालों पर बोझ बन गया हूँ। एक महीने पहले वो इंसान सब कुछ कर रहा था, वो बाज़ार भी जा रहा था, वो परचेजिंग भी कर रहा था, वो गाड़ी भी ड्राइव कर रहा था, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो गया है कि पता नहीं मैं गाड़ी चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इस तरह की बातें अगर वो करता है, सेल्फ डाउट जिसको हो जाते हैं, इनडिसिसिवनेस, जो डिसीजन नहीं ले पाता है वो, तो घर वालों को ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को कोई समस्या है, हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लेने की ज़रूरत है। और स्वयं भी हमको एहसास होने लगता है कि हमारी हालत बिगड़ती जा रही है या अब हम काम नहीं कर पा रहे हैं, मन बहुत उदास रहता है, कभी कभी मरने का भी मन करता है, ऐसी कंडीशन में हमको तुरंत किसी काउंसलर या मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। जैसे ये तो डिप्रेशन और एंजाइटी की बात हो गई, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इंसान की उत्तेजना बहुत बढ़ जाती है, यूफोरिक हो जाता है या शक शंका वहम करने लगता है, ये भी मानसिक रोग के लक्षण हैं। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति स्वयं नहीं पहचान पाता है कि मुझे कोई मानसिक रोग हुआ है, उसके जो आसपास लोग रहते हैं, घर वाले, रिश्तेदार या दोस्त, वो पहचान सकते हैं कि इसे कोई मानसिक समस्या है, या कोई व्यक्ति जैसे नशा करता है, नशे की वजह से भी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। तो मोटा मोटा हम ये कहें कि यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल गया है, नेचर चिड़चिड़ा हो गया है, किसी व्यक्ति की नींद कम हो गई है, भूख कम हो गई है, हम ये मान सकते हैं कि इस व्यक्ति को कोई ना कोई मनोरोग की समस्या है और उसे समय पर अस्पताल में या किसी विशेषज्ञ के पास

0: में सलाह लेनी चाहिए,
1: क्लिनिकल एड या थेरेपी चाहिए। आप अपने व्यवहार को और अपने एहसासों को, भावनाओं को बदलता हुआ देखें तो कैलेंडर पे नजर रखें। अगर ये एक महीने से ज्यादा हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए और परिवार वालों को भी समझ जाना चाहिए। डॉक्टर लहारिया, हमें बताइए क्या सरकार इस विषय में कोई सुविधाएं ऐसी दे रही है, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो ऐसे में लोगों को हेल्प करें?
0: ज़रूर, हम सब ने देखा है कि 2020-21 में COVID-19 पेंडेमिक आया था, सबका ध्यान शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर था, मानसिक स्वास्थ्य उस समय काफ़ी इग्नोर हुआ, लोगों का आना जाना बंद हो गया, डॉक्टर से कंसल्टेशन बंद हो गया, तो बहुत सारे मरीज जिनकी रेगुलर दवाइयां चल रही थी उनको भी दवाइयां नहीं मिल पाईं, और डर का माहौल इतना बन गया था क्योंकि हम सबके लिए एक बड़ी नई चीज़ थी ज़िंदगी में। पहली बार ऐसा माहौल देखा था कि हर घर में, हर जगह पर, टीवी पर 24 घंटे वही न्यूज़, कहीं कितनी मौतें हो रही हैं,
1: कल्पना से परे
0: था ये सारा
1: डिजास्टर।
0: थोड़ा बहुत तो चिंता होना लाजमी है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को जो थोड़े से वल्नरेबल थे, जिनके परिवार में किसी को मानसिक समस्या थी, जो लोग अकेले थे, आइसोलेटेड हो गए थे, ऐसा देखा गया था कि कम से कम 10-20% ऐसे लोगों में एंजाइटी की समस्या, नींद नहीं आने की समस्या, डिप्रेशन की समस्या बढ़ गई थी। ये पूरी दुनिया में थी, भारत में भी थी। इसी को देखते हुए 2022 में जब बजट प्रस्तुत किया गया, तब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया एक ऐसी सर्विस की ज़रूरत है, घर बैठ के इंसान एक मनोरोग विशेषज्ञ से कंसल्ट कर सकता है या अपनी काउंसलिंग करवा सकता है। तो टेली मानस सर्विसेज स्टार्ट हुई थी 2022 में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इसको हम टेली मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सर्विसेज भी कह सकते हैं, जिसका टोल फ्री नंबर होता है 14416, जिस पर कोई भी व्यक्ति कभी भी दिन रात कभी भी किसी भी समस्या के लिए, उसको लगता है कि मुझे कोई मानसिक समस्या है या कोई मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या किसी काउंसलर से सलाह लेने की ज़रूरत है, तो वो कभी भी कॉल कर सकता है। वहाँ पर उसको काउंसलर्स मिलेंगे, उससे उसकी समस्या को सुनेंगे, बातचीत करेंगे, और अगर ऐसा लगता है कि उसकी समस्या मनोरोग बीमारी को इंडिकेट करती है तो वो अपने सीनियर को भी कॉल एस्केलेट कर सकते हैं, वहाँ साइकेट्रिस्ट भी उनसे कंसल्ट कर सकता है। हालांकि अभी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन टेलीफोनिक कॉल्स में नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आगे ऐसा प्लान है गवर्नमेंट का कि इसको वीडियो कॉल में कन्वर्ट करके टेली प्रिस्क्रिप्शन भी दिया जाए। तो ये गवर्नमेंट की बहुत ही चौकांक्षी योजना है। मध्य प्रदेश में ही हमने देखा है कि कम से कम 4 सालों में हमको 2.5 लाख कॉल प्राप्त हुए। मेजर सेंटर है वो निमहंस बेंगलोर है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सर्विस अवेलेबल है। मध्य प्रदेश की सर्विस ग्वालियर के अंदर है, इस पर आप
1: डॉक्टर लहारिया अभी मैं कॉल करूँ तो कॉल पिक होगा?
0: जरूर होगा,
2: नमस्कार, आपका कॉल टेलीमानस इंदौर में कनेक्ट हुआ है।
1: मैं किससे बात कर रही हूँ?
2: आप काउंसलर से बात कर रहे हैं इंदौर शर्मा।
1: नाम बताइए प्लीज।
2: नाम मेरा कार्तिक है।
1: कार्तिक जी, हम आकाशवाणी से बात कर रहे हैं और आपकी बात हम आपके निदेशक साहब से करवा रहे हैं।
0: कार्तिक जी, हमारे पास 2 सेल हैं मध्य प्रदेश में, एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में है, और मैं अभी आकाशवाणी में हूँ। मैं ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला का संचालक हूँ, डॉक्टर संजय लहारिया। तो कॉल आपसे कनेक्ट हुआ है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि ये 14416 टोल फ्री नंबर है, और किसी भी समय कभी भी इस कॉल को लगाएंगे तो आपका कॉल ग्वालियर या इंदौर कहीं भी कनेक्ट होगा, और आपको जो भी मानसिक समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा।
2: ठीक, बिल्कुल
0: जी। धन्यवाद कार्तिक जी।
2: जी सर, धन्यवाद। चलिए, मैंने उसमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: वेरी प्रोफेशनल, और हम इनसे असुविधा के लिए क्षमा भी चाहेंगे। जो नंबर डॉक्टर साहब ने बताया मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, 14416 14416, ये टेलीमानस सुविधा है, और जिसे कभी भी आप किसी भी मेंटल डिस्ट्रेस पर कॉल कर सकते हैं। और आपने देखा जैसे कि अभी भी कॉल उठा है और बात भी आपसे की गई है। डॉक्टर लहारिया, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आपका हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश होगा? जो व्यक्ति मानसिक परेशानी

0: से गुजर रहा है या जिसे ऐसा लग रहा है कि मानसिक परेशानी से वो गुजर रहा है, उसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए?
1: आज पूरी दुनिया 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रही है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है जन साधारण में मानसिक रोगों के लिए जागरूकता लाई जाए। तो मेरा भी आप सभी लोगों के लिए यही संदेश है कि मनोरोग को पहचानें। आपको अगर कोई समस्या है और ऐसा लगता है कि आपको कोई मानसिक समस्या है तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, आप कॉल करें, मनोरोग विशेषज्ञ तक पहुँचें, बात करें, चुप ना रहें, क्योंकि चुप रहने से या बात नहीं करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। और दूसरी बात, मनोरोग की समस्याएं ना हो, कम से कम हो, इसके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा व्यायाम करते हैं, वैसे मनोरोग से बचने के लिए भी थोड़ा समय निकालें, अपने मन को शांत रखें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा योग करें, थोड़ा मेडिटेशन करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, कहीं आप बैठे हैं, तो लंबी सांस लेकर के डीप ब्रीदिंग करें, 15 मिनट के लिए डेली डीप ब्रीदिंग करें। कोई ऐसा दोस्त अपने पास रखें, फ़ोन में नहीं, मोबाइल में नहीं, रियल वर्ल्ड के अंदर, जिसे आप सारी अपनी मन की बात शेयर कर सकें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी आपको केयर मिलेगी।
0: ये जो आपने एक बात कही कि दोस्त रियल रखें, हम तो कहते हैं कि रियलिटी के जितने नज़दीक आप रहेंगे आप बीमारियों से उतना ही दूर रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: चलते चलते डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाएं, तो आप बताइए कि वो कौन सा गीत है जो आज आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को।
1: ज़रूर, उससे जुड़ी एक घटना भी है। कोई व्यक्ति मन में सोच रहा था कि अब ये जीवन बेकार है, मेरे लिए कोई सहारा नहीं है, मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। तब उस व्यक्ति ने आकाशवाणी पर, रेडियो पर इस गीत को बजते हुए सुना, उसका आत्महत्या का, उसका अपने जीवन को ख़त्म करने का विचार बदला। तो बड़ा ही एक इंस्पायरिंग गीत है। मुझे इस फिल्म का नाम याद नहीं है, पर उसके बोल कुछ ऐसे हैं कि एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे,
0: एक अंधेरा
1: लाख सितारे।
0: डॉक्टर लहरिया, जिस आदमी की आपने बात करी वो हम सब में कभी ना कभी पैदा हो ही जाता है या कहें कि रहता है, तो हम सभी उस आदमी को जानते हैं। तो चलिए, ये गीत हम सबसे ज्यादा खुद सुनते हैं।

0: डॉक्टर लहरिया, मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपने विचार और अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे इतनी सारी बातचीत करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, धन्यवाद विभूति जी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पॉडकास्ट मानसिक स्वास्थ्य समझे संभालें। इस विषय पर डॉक्टर संजय लहरिया, संचालक व निदेशक मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।

0: आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र का प्रसारण। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए सूचना और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र विशाल। श्रोताओं आज का दिन बेहद ही खास है और आप इस खास दिन की पहचान कर ही चुके होंगे, क्योंकि आज हमारा जो प्रसारण था वो रोज की तरह सुबह 6 बजे की बजाय सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो चुका था। आज महालया है, यानी पितृपक्ष माह के आखिरी दिन और माँ दुर्गा की कैलाश से पृथ्वी की यात्रा का आरंभ। श्रोताओं महालया के दिन ही माँ दुर्गा की प्रतिमा में आँखें बनाई जाती हैं, रंग भरे जाते हैं, इसी के साथ प्रतिमा पूर्ण मानी जाती है। बंगाल और बंगाल की संस्कृति से प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों में आज की सुबह महालया की शंख ध्वनि के साथ हुई होगी। जागो तुमी जागो दुर्गा, जागो दशो प्रहर धारिणी, अभय शौक्ति बलो प्रदायिणी तुमी जागो। श्रोताओं सुबह के 4 बजे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र से महालया की ये आध्यात्मिक आवाज़ बीते 95 वर्षों से गूंज रही है। कार्यक्रम निदेशक नृपेंद्र नाथ मजूमदार

इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार थे। वीरेंद्र कृष्ण भद्रा ने चंडीपीठ का वाचन किया और गीत भी गाए। श्रोताओं, प्रारंभिक वर्षों में कार्यक्रम का स्वरूप अलग था, किंतु 21 अक्टूबर सन 1937 को महालया के दिन पहली बार महिषासुरमर्दिनी अपने पूर्ण रूप में प्रसारित हुआ। सन 1931 से चंडीपाठ वाणी कुमार करते थे, पर 1937 में यह दायित्व स्वयं वीरेंद्र कृष्ण भद्रा ने संभाला। पहले यह कार्यक्रम षष्ठी की सुबह 6 बजे प्रसारित होता था, किंतु सन 1937 से इसे महालया की सुबह 4 बजे स्थानांतरित कर दिया गया। प्रसारण से पहले सभी गायक, वादक और वाचक विधिवत पूजा करते थे। स्वयं भद्रा गंगा स्नान कर पूजा अर्चना के बाद ही स्टूडियो में प्रवेश करते थे। इसी आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण के साथ वे चंडी पाठ किया करते थे। सन 1966 में इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर लिया गया, फिर लाइव की परंपरा खत्म हो गई। जाहिर है 95 वर्ष की इस संगीतमय आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारा इतिहास, बहुत सारी कहानियां भी समाहित हुई, और आज हमारे केंद्र से आपने इसका प्रसारण भी सुना ही होगा। श्रोताओं, महालया की सुबह लोग गंगा स्नान, अन्य पवित्र नदियों में जाकर अपने दिवंगत पूर्वजों को जल और तिल अर्पित करते हैं, जिसे तर्पण कहा जाता है। इस रस्म के जरिए पितरों को सम्मानपूर्वक विदा किया जाता है, और आज जैसा कि सर्व पितृ अमावस्या है, 16 दिन हमारे जो पूर्वज हैं हम उनको याद कर रहे थे, और आज उसका आखिरी दिन है, श्रद्धा श्राद्ध। श्रोताओं, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका आशीष प्राप्त करते हैं, ताकि हम अपने जीवन की कठिनाइयों से उबर पाएँ, और उनके आशीष से हम नित नए उन्नति के पायदानों को तय करें। श्रोताओं, जैसा कि हम आज समझ ही रहे हैं कि आज कितना विशेष दिन है, और इस दिवस पर हम ये भी जानते हैं कि कल से नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। नवरात्र यानी शक्ति की उपासना के दिन, और जब माँ दुर्गा की आराधना की जाती है तो आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो संस्कृति हमारे देश की है, उसमें हर जगह माँ दुर्गा की आराधना का तरीका भिन्न होता है, लेकिन सभी लोग माँ की आराधना पूरी श्रद्धा भाव के साथ और पूरी उमंग और उत्साह के साथ करते हैं। जैसे कि बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, वहीं गुजरात में गरबा नृत्य कर माँ देवी की आराधना की जाती है। तो श्रोताओं, आज इसी रंग में आपको भी रंगते हैं। आइए सुनते हैं इस गीत को और माँ की आराधना करते हैं।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोताओं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज का दिन विशेष है, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। श्रोताओं, ये दिन हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गलत धारणाओं और भेदभाव को कम करना तथा लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व के बारे में समझाना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत सन 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा की गई थी। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस दिवस के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया। यदि इस दिवस के उद्देश्य की हम बात करें तो श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी झिझक और कलंक को कम करना, तनाव, चिंता और भावनात्मक कठिनाइयों के बारे में सही जानकारी देना और ज़रूरत पड़ने पर परिवार, मित्रों और विशेषज्ञों से सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रोताओं, बच्चों और युवाओं सहित सभी आयु वर्गों के मानसिक स्वास्थ्य को ये दिन महत्व देता है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे सोचने, महसूस करने, सीखने, निर्णय लेने और दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य कमजोरी नहीं बल्कि हमारे

0: समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी भावनाओं को समझना, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना और ज़रूरत पड़ने पर सहायता लेना स्वस्थ जीवन की निशानी है। श्रोताओं, जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो हम तनाव अवसाद से घिर जाते हैं और इन्हीं के चलते कई बार हम कुछ गलत निर्णय भी लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा मानसिक स्तर स्वस्थ हो, और इस स्तर को सही करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो हमारे अपने हैं उनके साथ अपनी बातों को शेयर करें, कहीं कोई उलझन अपने दिमाग में न रखें। और यदि जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो कई सारी समस्याएं हम देखते हैं, जिसमें नींद आना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और थकान जैसी समस्याएं। बस ज़रूरत इस बात की है कि मानसिक जो स्वास्थ्य है, यदि हम उसको थोड़ा भी नज़रअंदाज करते हैं तो हमें कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज इस दिवस पर एक ऐसा वातावरण बनाने का संकल्प लें जहां प्रत्येक व्यक्ति बिना झिझक अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके, उसे समझा जाए और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्राप्त कर सके। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी दिनों दिन तरक्की कर रही है, हम मोबाइल और इंटरनेट का बहुतायत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हमारा मानसिक स्तर भी स्वस्थ हो, और उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने अपनों के साथ समय बिताएं, एक हेल्दी टाइम स्पेंड करें, साथ ही साथ योग मेडिटेशन को अपने रोज़ाना की दिनचर्या में शामिल करें। ऐसे ये तरीके हैं जिनसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को स्वस्थ रख सकते हैं। श्रोताओं, बहुत ज़रूरी है कि जो भी हो रहा है या जो भी होगा उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि चीज़ें आपके अनुकूल हों ये हर समय ज़रूरी नहीं। इसलिए अपने इस मानसिक स्तर को हमेशा एकाग्र रखें और हमेशा कुछ अच्छा सोचें और अपने अपनों के साथ समय बिताएं। आज इस दिवस पर हम यही संकल्प ले सकते हैं।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज का दिन खास है, आज राष्ट्रीय डाक दिवस है। भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय डाक व्यवस्था के महत्व, उसकी सेवाओं और देश के सामाजिक आर्थिक जीवन में उसके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, राष्ट्रीय डाक दिवस, विश्व डाक दिवस जो कि कल 9 अक्टूबर को मनाया गया था, भारत में डाक व्यवस्था का विकास ब्रिटिश काल में हुआ और 1854 में भारत में आधुनिक डाक सेवा की नींव रखी गई। इसी वर्ष भारत में पहला डाक टिकट भी जारी किया गया था। श्रोताओं, आज भारतीय डाक सेवा केवल पत्र पहुंचाने तक सीमित नहीं रह गई है। आज पत्र, पार्सल सेवा, डाकघर बचत योजनाएं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवाएं, डाक जीवन बीमा जैसी विभिन्न सरकारी और वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करता है। ये दिवस उन लाखों डाक कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है जो देश में दूर दराज क्षेत्रों तक भी डाक और विभिन्न आवश्यक सेवाएं पहुंचाते हैं। डाकघर आज भी संचार के साथ साथ वित्तीय समावेशन और सरकारी सेवाओं का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्रोताओं, चिट्ठियों की खुशबू से लेकर डिजिटल संदेशों तक भारतीय डाक ने समय के साथ अपने स्वरूप को बदला है, लेकिन लोगों को जोड़ने का उसका उद्देश्य आज भी वही है। राष्ट्रीय डाक दिवस हमें इसी सेवा और संपर्क की परंपरा को याद करने का अवसर देता है। डाकघर जो कि अपनी चिट्ठियों के लिए पहले जाने जाते थे, चिट्ठियां जो न सिर्फ संदेश लाती थी बल्कि उनमें आपके अपनों का प्यार होता था, और जब ये चिट्ठी किसी अपने की कहीं दूर देश से आती थी तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हाल होता था।

और श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं जाने माने प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक और उपन्यासकार आर के नारायण को। आज उनकी जयंती है। आर के नारायण का जन्म चेन्नई में हुआ था। उनके पिता स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई चेन्नई में की और बाद में महाराजा कॉलेज मैसूर से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि साहित्य और लेखन में बढ़ने लगी। श्रोताओं, आर के नारायण ने भारतीय जीवन, समाज और आम लोगों की रोज़मर्रा की परिस्थितियों को अंग्रेजी साहित्य में सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने मालगुड़ी जैसे काल्पनिक कस्बे के जरिए भारतीय समाज की विविधता और मानवीय भावनाओं को दुनिया के पाठकों तक पहुंचाया। उनके लेखक ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को अलग पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रोताओं, 1958 में आर के नारायण का उपन्यास द गाइड प्रकाशित हुआ। इसकी कहानी राजू नाम के एक टूरिस्ट गाइड की है, जिसकी जिंदगी एक महिला के साथ जुड़ने के बाद कई मोड़ लेती है। ऐसी परिस्थितियों में उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां लोग उसे आध्यात्मिक व्यक्ति मानने लगते हैं। नारायण ने राजू की कहानी के जरिए इंसान की इच्छाओं, गलतियों, रिश्तों और बदलाव को बहुत सहज ढंग से सामने रखा। उपन्यास को पाठकों ने खूब पसंद किया और सन 1960 में इसके लिए नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। श्रोताओं, नारायण की रचनात्मक दुनिया का सबसे खास हिस्सा था मालगुड़ी। यह दक्षिण भारत में बसा एक काल्पनिक कस्बा था जिसमें अपनी कहानियों और उपन्यास की पृष्ठभूमि उन्होंने बनाया। यहाँ स्कूल जाते बच्चे, छोटी दुकानें, शिक्षक, परिवार और अपनी अपनी परेशानियों से जूझते आम लोग। मालगुड़ी वास्तव में कोई एक शहर नहीं, जिसमें नारायण को भारत के छोटे शहरों और कस्बों की झलक दिखाई देती थी। मालगुड़ी उनके नाम और लेखन की बड़ी पहचान बन गया। श्रोताओं, आज हम इस महान प्रसिद्ध लेखक को याद कर रहे हैं और उनको नमन करते हैं। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम दें। कल मिलने के वादे के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर PL गोहतकर का गायन। आइए सुनते हैं इनका गाया राग अलैया बिलावल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पी एल गोहतकर का गाया राग अलैया बिलावल। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी का प्रसारण अब आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
1: का भोपाल केंद्र है, हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी, आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। मालवा के देवास जिले में बीते पखवाड़े कहीं गणेश उत्सव की धूम रही तो अब शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। चामुंडा पहाड़ी पर मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि में यहां 25 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन सुरक्षा, इलाज, भोजन और पीने के पानी के इंतजाम कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर चल रही सेवा संकल्प बाइक यात्रा भी देवास पहुंची। बागली के पुंजापुरा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने बाइक सवार दीपेश कोटी से बातचीत की। दीपेश ने बताया कि यात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान, पौधरोपण, दूसरे राज्यों की संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिल रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत देवास में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी पहल की जा रही है। इसी कड़ी में बिजली कंपनी ने सेवा सेतु शिविर लगाया, जहां लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया समझाई गई। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और लोगों के बिजली बिल का बोझ कम करना है। सेवा का ये सिलसिला गांधी जयंती के मौके पर भी आगे बढ़ा। देवास जिले में 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सफाई, स्वास्थ्य जांच, बुजुर्गों और अनाथ बच्चों की मदद, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पौधरोपण जैसे काम किए जा रहे हैं। जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद और सैनिकों के परिवारों के सम्मान जैसी गतिविधियां भी इस अभियान में शामिल हैं। सेवा के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। खाते गांव में 16 किसानों को सोयाबीन के बेहतर पैदावार, फसल को बीमारियों और कीटों से बचाने, उपज का बेहतर मूल्य पाने के तरीके बताए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन छोड़कर कहा कि सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों तक नई तकनीक पहुँचना जरूरी है। वहीं खातेगांव में ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि रोजगार पाने के लिए हुनर जरूरी है। केंद्र में फिलहाल महिलाओं को सिलाई और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोनों प्रशिक्षण 35-35 दिन के होंगे और प्रशिक्षण लेने वालों के रहने खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। दूसरी ओर जिले में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया। 9 अक्टूबर तक सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाकर नए मतदाताओं और सूची में नाम जुड़वाने से छूटे गए पात्र लोगों से आवेदन लिए गए। इसका मकसद मतदाता सूची को सही और सभी पात्र नागरिकों को इसमें शामिल करना है। लोगों को राहत देने की एक और पहल देवास जिला न्यायालय में हुई, जहां मीडिएशन नेशन 3.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बताया गया कि आपसी बातचीत और सहमति से विवाद सुलझाने पर लंबी अदालती लड़ाई से बचा जा सकता है। इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं और पक्षों के

बीच रिश्ते भी बेहतर बने रह सकते हैं। अब बात बच्चों की, जिनके लिए देवास जिले के बागले विकासखंड के सुबलियापुरा गांव में बाल वाटिका बनाई गई है। स्कूल परिसर में झूले, फुआरा, बैठने की जगह और हरियाली से सजी इस वाटिका में बच्चे रोज खेलते हैं। करीब 3,500 वर्ग फीट में तैयार इस जगह को बनाने में 3 महीने तक मेहनत की गई है। अब गाँव के बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलने और मस्ती करने के लिए भी एक सुंदर जगह मिल गई है। अंत में बात कुछ ऐसे लोगों की जिनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सही अवसर और थोड़े से सहयोग से मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी बदली जा सकती है। देवास जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाएं अपनी मेहनत से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। बिसलखेड़ी की किरण गुनाया ने किराना दुकान से शुरुआत की और फिर खेती और ट्रैक्टर के जरिए अपनी सालाना आय करीब 2.5 लाख रुपए तक पहुंचाई। वहीं नराना की रानी गोस्वामी ने बेटे के लिए टेंट व्यवसाय शुरू कराया और उचित मूल्य की दुकान तथा खेती से जुड़कर सालाना करीब 3 लाख रुपए कमाने लगी। टोंक खुर्द विकासखंड के इकलेरा की उर्मिला पाटीदार ने साड़ी की दुकान के साथ पशुपालन और आलू की खेती को भी आजीविका का जरिया बनाया है। इन तीनों महिलाओं की सालाना आय करीब 2 से 3 लाख रुपए तक पहुंच गई है। इनकी सफलता से गांव की दूसरी महिलाएं भी स्वसहायता समूहों से जुड़कर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित हो रही हैं। देवास जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी, आलेख था नितिन गुप्ता का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गैस एक प्रमुख उदर समस्या, इस विषय पर डॉक्टर अंशुमान सोमानी से आभा गुप्ता की बातचीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ।

0: श्रोताओं नमस्कार। सेहत की बात तरानों के साथ कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अंशुमन सोमानी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आपसे हम बातचीत करेंगे गैस एक प्रमुख उदर समस्या। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस विषय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी डॉक्टर साहब से, साथ ही डॉक्टर साहब की पसंद के कुछ सुरीले गीत, कुछ खास गीत भी आपको सुनने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हम आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है गैस एक प्रमुख उदर समस्या, यूं देखा जाए तो शायद ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत लोगों को परेशान करती है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो पेट में गैस बनना ये क्या है?
1: पेट में गैस बनना एक फीलिंग है जो कई बार पेशेंट आके बोलते हैं कि मेरा पेट फूल रहा है। उसके कुछ जो कॉजेज हैं जो अब आजकल बढ़ रही है कि गैस की समस्या, उसमें सबसे प्रमुख है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत इरेगुलर है।
0: जी।
1: हम लोग के पास खाने का, सोने का, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, हम लोगों की लाइफस्टाइल में आजकल कुछ भी एक्सरसाइजेस खत्म हो गई हैं। लोगों को थोड़ा भी दूर जाना हो तो गाड़ी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जबकि पहले लोग पैदल चलते थे। तीसरा, आजकल खान पान उतना अच्छा नहीं रह गया है क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिलावटी मिलने लगी हैं। हमें जीभ में ज़्यादा पसंद हो वही चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, इसके बजाय जो सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है उस पर कोई उतना ध्यान नहीं देता।
0: बिल्कुल सही बात, यानी स्वाद देखते हैं, स्वास्थ्य नहीं देखते हैं। और फास्ट फूड का चलन आजकल हो गया है, रेडीमेड जो खाने आजकल तैयार मिलते हैं तो उसका भी स्वास्थ्य पर ख़राब असर पड़ता है। तो ये गैस की समस्या में कई बार इतनी विकट हो जाती है कि व्यक्ति को कई बार तो ये लगता है कि हार्ट पर असर पड़ रहा है, यानी कि हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है कहीं, या कई बार भीषण पेट दर्द भी होता है।
1: जिनको एसिडिटी का अटैक होता है वो हार्ट अटैक के साथ मिमिक कर सकता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि एसिडिटी ईसोफेगस में ज़्यादा फील होती है।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे मरीजों को एक तो जल्दी जल्दी खाने से बचना चाहिए।
0: अच्छा।
1: मतलब आराम आराम से खाना खाएं। दूसरा, खाना खा के कभी लेटना नहीं चाहिए, तुरंत एक डेढ़ घंटे बाद लेटे
0: जी।
1: और थोड़ा नियमित पैदल घूमना या कुछ एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए,
0: यानी कि हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है उसको अपनी दिनचर्या का आवश्यक अंग बनाएं।
1: हाँ,
0: और समय नहीं है ये कहकर

0: से न टाले, समय निकाले इसके लिए। आपने बताया डॉक्टर साहब कि खान पान अच्छा होना चाहिए, तो ये अच्छा खान पान कैसा होता है?
1: अच्छे खान पान में कुछ रेशेदार चीजें जैसे फल वगैरह ये होने चाहिए, हरी सब्जियां, पत्तेदार जो हैं
0: जी
1: रेशेदार वो होना चाहिए, मतलब प्रोटीन्स, विटामिन्स और फैट का बैलेंस सही होना चाहिए डाइट में।
0: जी बिल्कुल, यानी कि जो मौसमी फल हैं वो भी लें और सलाद भी खाने में शामिल करना चाहिए। श्रोताओं कहते हैं कि पेट की राह से दिल तक पहुंचा जा सकता है लेकिन पेट की राह से ही बहुत सारी बीमारियां भी शरीर में घर करती हैं, ये भी बात सही है ना?
1: दिल में पहुंचने का वही है कि स्वादिष्ट खाना खिलाते जाएं। लोग केवल जीभ का स्वाद देखते हैं जबकि एक 50 ग्राम की जीभ आपके 50 किलो के शरीर को खराब कर सकती है।
0: बिल्कुल सही बात है, स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, कभी कभी स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए लेकिन रोजाना का जो खाना है उसमें ऐसा आहार शामिल करें जो पौष्टिक हो और जिसमें सभी सप्लीमेंट्स हों। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले क्यों ना गीत संगीत की कुछ बात हो जाए। आपकी पसंद का गीत, जैसा कि हमने श्रोताओं को कहा था ये सिलसिला हम शुरू करते हैं, तो बताइए कौन सा गीत सबसे पहले आप सुनना चाहेंगे?
1: होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो,
0: प्रेम गीत फिल्म का ये गीत जगजीत सिंह जी की आवाज में। जी, ये गीत आपको क्यों पसंद है, आप गाते हैं खुद?
1: नहीं, मैं बाथरूम सिंगर हूँ बेसिकली।
0: अच्छा। हाँ, लेकिन श्रोताओं के लिए गुनगुना सकते हैं दो लाइनें?
1: नहीं।
0: चलिए, श्रोताओं गीत बहुत अच्छा पसंद किया है डॉक्टर साहब ने और ये गीत जगजीत सिंह जी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना, उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। ये बात सही है कि अमर कोई नहीं होता है, ज़िंदगी तो फानी है, छोटी सी होती है, लेकिन जितना भी जीवन जिया जाए वो स्वस्थ जिया जाए तब ही जीवन की सार्थकता है। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गैस एक प्रमुख उदर समस्या इस बारे में, तो एसिडिटी क्यों बनती है? आपने बताया खान पान, दिनचर्या, लाइफ स्टाइल। एसिडिटी से बचने के लिए कई बार कुछ लोग जो है धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू चबाने से या धूम्रपान करने से गैस नहीं बनती है या कब्ज नहीं होती है, तो ये जो मान्यता है ये कहाँ तक सही है?
1: ये मान्यता पूरी तरह गलत है। तंबाकू का कोई इफेक्ट अपने उस पे नहीं है सिस्टम पे, बस थोड़ा सा तंबाकू एक लेग्जेटिव का काम कर सकता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: पर चूंकि आदमी की आदत है तो दिमाग कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो मेरी आदत चलती रहे, उस पर कोई रोक टोक ना लगे,
0: बहाना तलाश,
1: इसीलिए वो ऐसी चीजों को सजेस्ट करता है कि उससे गैस पास होती है। जो हमारे पास काफी मरीज आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने आज 2 बीड़ी नहीं पी तो मेरे को मोशन नहीं हुआ या नहीं होता।
0: जी जी, ये मान्यता बिल्कुल गलत है कि धूम्रपान करने से, बीड़ी पीने से या तंबाकू चबाने से कब्ज दूर होती है या एसिडिटी नहीं होती है। श्रोताओं ने इस बात को हमारे ध्यान से सुना होगा। अच्छा, एसिडिटी से बचने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है?
1: एसिडिटी से बचने के लिए एक तो हम खाना काफी चबा चबा के आराम से खाएं।
0: जी,
1: खाना खा के हमें लेटना नहीं चाहिए कम से कम 1-1.5 घंटे। खाने के साथ पानी ना पिए, आधे घंटे बाद पानी पिए।
0: अच्छा,
1: या खाने के पहले पी ले पानी। तनाव कम रखें, हमेशा तनाव एक एसिडिटी का प्रमुख कारण है।
0: अच्छा,
1: या नींद नहीं होना ये एसिडिटी का प्रमुख कारण है, इनसे बचे। इन चीजों में योगा आपकी काफी मदद कर सकता है जो लंबे समय से एसिडिटी वगैरह से परेशान रहते हैं मरीज।
0: अच्छा, मेडिटेशन या ध्यान या योगा यदि वो करें तो एसिडिटी से बच सकते हैं। खान पान के बारे में आपने बताया, दिनचर्या के बारे में आपने बताया। एक और समस्या होती है कि कई बार पेट दर्द बड़ा भीषण उठता है और समझ में आता नहीं है वजह क्या है इसकी, तो पेट दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एसिडिटी
1: मरीज के लिए पेट काफी छोटी सी चीज है, बाकी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के लिए पेट में ही सब कुछ है। पेट के किस हिस्से में दर्द है उससे रिलेटेड अलग अलग कारण है। जैसे पेट में सबसे ऊपर यदि दर्द हो रहा हो तो वो पैनक्रेटाइटिस का हो सकता है।
0: अच्छा,
1: हमारे पास काफी मरीज आते हैं जो 1-2 दिन पैनक्रेटाइटिस के साधारण दर्द की दवाइयां ले लेके उसके बाद जब नहीं संभलता तब वो 3rd-4th दिन आते हैं, तब तक पैनक्रियास इतनी डैमेज हो चुकी रहती है कि कई बार जान बचाना मुश्किल होता है। आपके किस हिस्से में दर्द है उससे रिलेटेड चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। गॉल स्टोन का दर्द अपने सीधे साइड में ज्यादा होता है।
0: अच्छा,
1: अपेंडिक्स का दर्द सीधे साइड में नीचे पेट में ज्यादा होता है।
0: जी,
1: तो दर्द के ऐसे अलग अलग कॉजेज नहीं बता सकते, बाकी किस जगह पे दर्द है पेट में उसी से सब डिसाइड होता है।
0: अच्छा, स्टोन या पथरी जिसे कहते हैं वो भी पेट में हो तो भी दर्द पैदा होता है?
1: पथरी या तो किडनी में होगी या गॉल ब्लैडर या पेनक्रियाज, तीन चीजों में होती है। तो पेनक्रियाज में जो पथरी होती है वो आमतौर पर एल्कोहलिक्स में ज्यादा कॉमन है या कुछ उसके जेनेटिक कॉजेज भी रहते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन मोटापे, बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहने से या कोलेस्ट्रॉल रहने से हो सकता है, उसका पेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। किडनी में स्टोन हमारे पानी कम पीने से या पानी में कुछ सॉल्ट्स का इम्बेलेंस होने से भी किडनी में स्टोन हो सकता है।
0: जी, तो पानी की बात आपने की, तो अशुद्ध पानी भी काफी हद तक जिम्मेदार होता है पेट में इन्फेक्शन के लिए।
1: आजकल गर्मियों में मरीज पीलिया के देखते हैं या अधिकतर हेपेटाइटिस ए या ई के होते हैं, ये दोनों अशुद्ध पानी से ही जाते हैं। हम पानी अपना साफ पिए, फिल्टर्ड पानी पिए, बेहतर है कि आप पानी उबाल के ठंडा करके पिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पानी की शुद्धता का खास ख्याल रखें, उसे ढककर भी रखना चाहिए। कई बार खुला छोड़ देते हैं पीने का पानी और फिर उसी को ऐसे ही पी लेते हैं, उसमें कीड़े गिर सकते हैं या मक्खियां बैठ सकती हैं। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि गैस एक प्रमुख उदर समस्या है, इसके बारे में कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे अपने खान पान में बदलाव करें, दिनचर्या में बदलाव करें तो हम इस समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात।

0: तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमान सोमानी। डॉक्टर साहब से हम गैस एक प्रमुख उदर समस्या विषय पर तो बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्यों ना श्रोताओं आपका मनोरंजन करवाया जाए डॉक्टर साहब की पसंद का एक और गीत सुनवाकर। डॉक्टर साहब बताइए अब कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: मुझे ये चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गीत भी काफी पसंद है।
0: यादों की बारात फिल्म का गीत है, रोमांटिक गीत है, क्या इससे कोई आपकी याद जुड़ी हुई है?
1: अपने कॉलेज लेवल पे सबके साथ कुछ ना कुछ यादें जुड़ी रहती हैं।
0: जी हाँ, तो चलिए आपकी उन यादों को हम ताजा करते हैं और श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म यादों की बारात का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना, उम्मीद है गीत पसंद आया होगा। आइए अपनी बातचीत को हम जारी रखते हैं। हमारी आज की बातचीत का विषय है गैस एक प्रमुख उदर समस्या, और हमारे मेहमान हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमान सोमानी। डॉक्टर साहब, अल्सर नाम की जो बीमारी है वो पेट में होती है, तो ये किस वजह से होती है और ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है?
1: अल्सर एक काफ़ी गंभीर बीमारी है जो ज़्यादा पेट या छोटी आंत के शुरुआती हिस्से में पाया जाता है। इसको डायग्नोज करने के लिए केवल एंडोस्कोपी टेस्ट है।
0: अच्छा,
1: जिनको एसिड ज़्यादा बनता है उनको ये समस्या हो सकती है। एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक कीड़ा है जो इंडियंस में बहुत कॉमन है, उसकी वजह से अल्सर बन सकते हैं।
0: कीड़ा कहाँ से पहुँचता है शरीर में?
1: कीड़ा अपने खान पान से पहुंचता है,
0: कहीं सब्जियों से या कहीं फलों से, कहीं से भी आ सकता है जी।
1: तीसरा, एक जो दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग ज्यादा करते हैं बुजुर्ग, अच्छा, उनको अल्सर की समस्या अक्सर हो सकती है। हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो कई बार खून पतला करने की दवाई खाते हैं, साथ में एसिड के रोकने की दवाई नहीं खाते, उनको अल्सर हो सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, यानी कि दवाओं के कुप्रभाव से भी अल्सर हो सकता है, और यदि हद से ज्यादा एसिडिटी अम्लीयता या गैस बनती है पेट में तो उससे भी अल्सर हो सकता है।
1: हाँ।
0: और यदि अल्सर है, डायग्नोस होता है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है?
1: अल्सर का कॉज हमेशा देखना पड़ता है। जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण जो अल्सर होते हैं उनमें 14 दिन की दवाई दी जाती है, उससे वो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। बाकी जो दर्द वाली दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं उनको उसके सेवन से बचना चाहिए, या जो सेफ दवाइयाँ हैं दर्द के लिए ज़्यादा बेहतर है आप उन पर शिफ्ट करें।
0: बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह से ही दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, अपनी मन मर्जी से दवाएं ना खाएं। तो इसका इलाज के लिए क्या सर्जरी होती है या दवाओं से ठीक हो जाता है?
1: अल्सर अब अधिकतर दवाओं से ठीक हो जाते हैं। बाकी जो हम कैंसर सोचे पेट का, वो भी एंडोस्कोपी में अल्सर जैसा ही दिखता है, बस
0: अच्छा,
1: बड़ा
0: अच्छा,
1: दिखता है
0: जी।
1: यदि अल्सर कुछ ऐसी चीज के कारण हो जिसको सर्जरी की आवश्यकता पड़े तो वो अलग चीज है, बाकी सब दवाओं से ठीक हो जाते हैं।
0: और जिन्हें अल्सर डायग्नोस होता है उन्हें क्या सावधानी बरतना चाहिए, खान पान में खास क्या परहेज रखना चाहिए?
1: बहुत मिर्ची की चीज़ों से बचें, और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें एक साथ न खाएं। यदि धूम्रपान करते हो तो उससे बचें, या शराब का सेवन करते हो उन चीज़ों से बचें
0: जी।
1: और खाना बहुत चबा चबा के खाना चाहिए, बहुत जल्दी जो हम लोग आजकल खाते हैं खाने को, उससे बचें।
0: अच्छा, आंतों में कई बार सूजन जैसे बताई जाती है, वो किस वजह से हो सकती है?
1: आंतों में सूजन हम किसी चीज़ से एलर्जिक हों तो वो खाने की वजह से आ जाती है। इंडियन पॉपुलेशन में मिल्क इंटॉलरेंस कॉमन है, तो मिल्क लेते ही उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है।
0: अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों को दूध से एलर्जी भी होती है।
1: दूध को बचाने का जो लैक्टेज एंजाइम है वो धीरे धीरे एज के साथ कम होने लगता है। हमारे पास भी मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, पिछले साल तक तो दूध बहुत अच्छे से पचता था, अब इस साल से पचना बंद हो गया। तो उनमें एंजाइम धीरे धीरे कम होता है, तो ज्यादा बेहतर है कि वो मरीज दही की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। दही में भी उतना ही पौष्टिक तत्व है, कैल्शियम वगैरह, जो दूध में है।
0: मतलब दूध को छोड़कर अन्य मिल्क प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, इसमें पनीर भी शामिल है।
1: हाँ, पनीर,
0: पनीर या चीज या दही।
1: हाँ, ले सकते
0: जी। तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, यदि आपको दूध पीने से एलर्जी होती है, दूध आपको नहीं माफिक आता है, तो दूध के अन्य प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं खान पान में। और श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ, और आज हम बातचीत कर रहे हैं गैस एक प्रमुख उदर समस्या। और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जो टिप्स दे रहे हैं या जो सलाह दे रहे हैं वो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत काम की होगी, और हमारे श्रोता इसे नोट करके भी रखेंगे ताकि इस समस्या से बचा जा सके या इस समस्या से निजात मिल सके। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने श्रोताओं से वायदा किया और आपसे भी वायदा किया है कि आपकी पसंद के गीत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे ताकि श्रोताओं का मनोरंजन हो और उनको महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती रहे, तो बताइए अब कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे जो हम अपनी लाइब्रेरी से आपके लिए बजाएं?
1: तीसरा गीत मैं सुनना चाहूंगा, घुंघरू की तरह बसता ही रहा हूं मैं।
0: किशोर कुमार की आवाज में एक गीत है, हालांकि ये थोड़ा सा उदासी मूड का गीत है, लेकिन बहुत अच्छा गीत है, मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि इसे किशोर कुमार ने गाया है, और श्रोताओं उम्मीद है आपको भी बेहद पसंद आएगा। ये गीत आपको क्यों पसंद है डॉक्टर साहब?
1: गीत ऐसा नहीं, किशोर के काफी गाने पसंद है, पर कुछ कुछ गाने जो याद रह जाते हैं, कोई स्पेसिफिक बहुत रीजन नहीं है उसका।
0: अच्छा,
1: काफी कुछ चीजें आप कॉलेज लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं
0: जी। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

0: हूँ।
1: तो गीत आपने सुना, आइए अब अपनी बातचीत को हम जारी करते हैं। और आज का हमारा विषय है गैस एक प्रमुख उदर समस्या। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अंशुमान सोमानी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई जिससे कि एसिडिटी से बचा जा सकता है, गैस की समस्या से बचा जा सकता है। क्या उच्च रक्तचाप का भी गैस से कोई संबंध है?
2: उच्च रक्तचाप का गैस से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, पर यदि हम साइंटिफिकली सोचें तो जहाँ आंतों में ब्लड सप्लाई किसी कारण से कम होती है, उच्च रक्तचाप जिनमें हार्ट की वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, वैसे ही आंतों की जो अपनी धमनियां हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है धीरे धीरे। हार्ट के लिए जैसे एंजियोग्राफी होती है, वैसे ही आंतों के नसों के लिए भी एंजियोग्राफी एक जाँच होती है। यदि उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना चालू करेगा तो वो ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, उस कारण आंतों का मूवमेंट कम होगा। बस एक वही कोरिलेशन है।
1: तो उससे समस्या क्या होती है, क्या लक्षण प्रकट होते हैं?
2: आंतों का मूवमेंट नहीं होता है तो वो बोलता है कि मेरा पेट फूल रहा है या मेरे को दर्द हो रहा है बीच बीच में।
1: अच्छा, आजकल देखने में आता है डॉक्टर साहब कि बच्चे भी शिकायत करते हैं कि उन्हें पेट में

0: जलन हो रही है या एसिडिटी हो रही है, बहुत कम उम्र के बच्चे, कहीं 10 साल के, कभी 12 साल के, तो ऐसा क्यों है?
1: आजकल के बच्चे ज़्यादा इसलिए ये करते हैं क्योंकि उनके लाइफ स्टाइल में एक तो खेल कूद नियमित बचा नहीं है, पढ़ाई का स्ट्रेस उनके ऊपर ज़्यादा। आज हम लोग बच्चे थे तब हमें कोई इतना पढ़ाई की चिंता नहीं थी और बाहर आराम से खेलने जाते थे, आजकल माँ बाप भी बाहर बच्चों को नहीं खेलने जाने देते हैं।
0: कई सारे कारण होते हैं उसमें जी, मतलब इंडोर गेम्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है आउटडोर गेम्स के अलावा। तो माता पिता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, यदि बच्चा ऐसी शिकायत करता है तो ना कि उसे दवा करें, उससे पहले ये देखें कि ये कारण
1: और
0: क्या
1: है। बच्चे जिद करते हैं तो माता पिता वो खाने को दे ही देते हैं। हमारे पास भी मरीज आते हैं, बोलते हैं कि बच्चे को ये दिक्कत हो रही है, उनसे पूछें तो वो यही जवाब देते हैं कि ये तो रोज गोलगप्पे खाता है, टिक्की खाता है। जब और माता पिता से पूछे कि आपका बच्चा यदि पैसे कमाता है क्या जो रोज खा लेता है, तो बोलते नहीं, पैसे तो हम ही देते हैं खाने के लिए।
0: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं माता पिता ही इसके जिम्मेदार हैं। तो जो माता पिता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो ध्यान दें कि बच्चों की दिनचर्या पे भी ध्यान देना जरूरी है। जी हाँ, बच्चे का पढ़ना जरूरी है, प्रतियोगिता का युग है तो बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, लेकिन ये भी देखें कि बच्चे का बचपन कहीं गुम ना हो जाए। बच्चा खाने के समय पे खाना खाए और बेहतर हो कि घर का बना खाना खाए, इसमें खिचड़ी भी शामिल हो सकती है, उसमें रोटी पराठा पूड़ी सब शामिल हो सकते हैं।
1: तो बच्चा बाहर खाना चाहता है वो आप घर में बना के देते?
0: जी बिल्कुल, बाहर के खाने की आपने बात की तो आजकल बाहर का खाना चलन में बहुत ज्यादा है, खासकर स्ट्रीट फूड, तो उसका शायद पेट को खामियाजा बहुत भुगतना पड़ता है।
1: काफी आसानी से अवेलेबल है ना, आपने 10 रुपए 20 रुपए दिए, बाहर आपको एक प्लेट मिल गई, घर में बनाने में टाइम लगेगा सारी चीजों को। जो एक ही चीज बना रहा है खाने की, वो टेस्ट में तो ज्यादा अच्छी बना ही लेगा, भले ही वो क्या क्या चीजें प्रयोग कर रहा है वो बहुत लाभकारी नहीं हो।
0: इसके अलावा हाइजीनिक है या नहीं ये भी समस्या, उससे भी शायद पेट की समस्याएं पैदा होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उससे क्या क्या समस्या पैदा हो सकती है?
1: पानी दूषित आ गया या खाना इन्फेक्टेड हो तो टाइफाइड बहुत एक कॉमन है जो गर्मियों के मौसम में फैलती है। दूसरा कुछ हेपेटाइटिस ए, ई, ये पीलिया है, ये गंदे खाने पानी से फैलते हैं।
0: जी, इसके अलावा अमीबाइसिस नाम की बीमारी जो होती है वो भी क्या इसी तरह के खाने से होती है?
1: अमीबाइसिस, क्रॉनिक अमीबाइसिस करके जो भी अब टर्म्स पहले यूज होती थी, अब ये सब खत्म हो गई हैं, अब ये सब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया है।
0: अच्छा,
1: इसको IBS बोलते हैं। हालांकि IBS में जैसे ही आप 3 दिन 5 दिन एंटीबायोटिक कोई भी लेंगे तो पेशेंट को और अगले 5 दिन का रिलीफ मिल जाता है, 5 या 10 दिन का, बिकॉज जो गंदे बैक्टीरिया पनप रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं। IBS जो है ये साइकोसोमेटिक डिसीज है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है आंतों का मूवमेंट।
0: अच्छा,
1: ये उसके कारण हम बार बार एंटीबायोटिक जो लेते हैं, एंटीबायोटिक हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ यूजफुल बैक्टीरिया भी मारती है, जिससे खाना पचता नहीं है फिर। अच्छा, लंबे समय तक इसमें एंटीबायोटिक अवॉइड करें और ज्यादा बेहतर है आप खान पान और एक्सरसाइज उन पे ध्यान दें तो काफी कुछ हद तक समस्या का समाधान किया जा सकता है।
0: अच्छा, तो हमारे श्रोता इस बात को सुन रहे होंगे कि खासकर खान पान पे ध्यान दें अगर, तो जो उदर की एक प्रमुख समस्या है गैस, इससे बचा जा सकता है और इससे होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा पेट में जो संक्रमण वाली बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सकता है। श्रोताओ, आकाशवाणी ग्वालियर से इस समय आप सुन रहे हैं सेहत की बात तरानों के साथ कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन सोमानी। आपसे हम बातचीत कर रहे हैं गैस एक प्रमुख उदर समस्या। जी हाँ श्रोताओं, पेट तो एक है लेकिन सारे जतन शायद पेट के लिए ही होते हैं और इससे बीमारियां भी बहुत सारी शरीर में पहुंच सकती हैं। आगे हम कार्यक्रम में बढ़ें उससे पहले क्यों ना एक और गीत डॉक्टर साहब की पसंद का आपको सुनवाएं।
1: एक गाना था काफी पहले मैं सुनता था, कजरा मोहब्बत वाला,
0: आँखियों में ऐसा डाला लगता है किसी के कजरे ने आपको आकर्षित किया
1: बहुतों के कजरों ने आकर्षित किया
0: जी, बहरहाल चलिए जो राज की बात है उसे रहने देते हैं, गीत सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। तो लीजिए सुनिए श्रोताओं ये गीत।

श्रोताओं, ये मस्त झूमता हुआ गीत आपने सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और कार्यक्रम में आगे बढ़ें और बात करते हैं डॉक्टर अंशुमान सोमानी से। पेट में जो गैस की समस्या होती है, प्रमुख उदर समस्या है, उससे बचने के लिए आपने खानपान के बारे में बताया, दिनचर्या के बारे में बताया, व्यायाम के बारे में बताया, किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह के खाने से बचना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल करना

0: चाहूंगी कि 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो एक व्यक्ति किस तरह से अपनी दिनचर्या बनाकर रखे ताकि वो स्वस्थ रह सके और पेट की बीमारियों से बच सके।
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल है
0: जी।
1: सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम सुबह 5 से 7 के बीच में जब जैसे भी सोते उठ जाए हम लोग
0: जी, मतलब जल्दी उठें,
1: जल्दी उठें
0: जी।
1: जल्दी उठ के अपना, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा रहती है वो ज़्यादा बेहतर है कि 2 या 3 ग्लास पानी गर्म करके पी लें एक साथ, उसके बाद वो फ्रेश होके मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाएं, भले चाहे आप 1 या 2 किलोमीटर जाएं, बहुत लंबा नहीं जा सकते हो। तो सुबह की जो हवा होती है वो सबसे शुद्ध होती है हमारे बॉडी के लिए। उसके बाद आके अपना जो भी कुछ चाय वगैरह पीने की आदत हो या थोड़ा बहुत स्नैक्स ले सकते हैं, 8-8:30 के आसपास आप अपना एक ब्रेकफास्ट ले लें। ब्रेकफास्ट में हमें जो भी आसानी से डाइजेस्टेबल हो, जैसे उपमा है, इडली है, पोहा है, या अपनी ब्राउन ब्रेड है
0: जी,
1: या कुछ अंकुरित अनाज भी लोग खाते हैं नाश्ते में, या कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ये सब हल्का लें। मतलब ब्रेकफास्ट बहुत हैवी नहीं लेना चाहिए, साथ में कुछ जूस वगैरह लें एक आध ग्लास।
0: अच्छा।
1: फिर हम जैसे भी जहाँ काम पे जाते हैं वहाँ 11-12 बजे के आसपास थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लें खाने में, अपने साथ एक डब्बा ले जाए रख के।
0: अच्छा।
1: और जब हमें दोपहर के खाने का समय मिलता है 2 बजे के आसपास, तो हम प्रॉपर मील लें जिसमें दही को जो जो ले सकते हैं दही वो निश्चित लें, क्योंकि दही में इतने प्रोबायोटिक्स हैं, हेल्दी बैक्टीरिया।
0: अच्छा।
1: अब विदेशों में दही योगर्ट का ज़्यादा कंसेप्ट आ रहा है, हमारी डाइट से वो चीज़ें कम होती है
0: जी।
1: ये भी ध्यान रखें कि आराम से खाएं, मतलब कोई बहुत स्पीड में नहीं खाएं, खाने को 15 से 20 मिनट में खाएं अपने। शाम को 5 बजे किसी को चाय की आदत है तो वो चाय और कुछ स्नैक्स ले सकता है, और नहीं तो फिर आप फ्रूट्स ले लें
0: जी।
1: और रात को 7 से 8, 8:30 के बीच में आप अपना डिनर कर लें, डिनर आप अपना लाइट रखें। उसके बाद भी कोशिश करके आप 1-2 किलोमीटर, बेहतर है कि आप घूमने जाएं। रात को खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, नहीं तो खाना पेट में ही पड़ा रहेगा और वो नाइट टाइम एसिडिटी बनी रहेगी
0: और फिर सुबह समस्या होगी।
1: हाँ।
0: तो श्रोताओं, आपने सुना 24 घंटे में किस तरह की दिनचर्या हो, और कोई बहुत कठिन बात नहीं है, यदि आप इस दिनचर्या को अपना लेंगे तो ये आपके जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन जाएगी। और निश्चित रूप से आप इस दिनचर्या को अपना के देखिए, 1-2 महीने, उसके बाद आपको आराम महसूस होगा। बहरहाल कार्यक्रम में थोड़ा समय और बाकी है, तो एक गीत आपकी पसंद का और बनता है, तो बताइए कौन सा गीत चलते चलते हम आपको और श्रोताओं को सुनवाएं।
1: एक आखिरी गीत है, कौन है जो सपनों में आया,
0: कौन है जो दिल में समाया, झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत है श्रोताओं, जो डॉक्टर साहब ने पसंद किया है। तो आइए चलते चलते हम श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

0: डॉक्टर साहब, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आ पहुंचे हैं और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानी आपसे कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, नाश्ते में क्या लेना चाहिए, किस तरह की दिनचर्या होना चाहिए, व्यायाम बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। चलते चलते दो पंक्तियों में यदि कोई सलाह आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें तो बताइए।
1: हम लोग आजकल इतने तनाव में जी रहे हैं और साथ में मोबाइल का उपयोग इतना बढ़ गया है कि घर में भी लोग और उन पर लगे रहते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ज़्यादा बेहतर है कि अपना एक टाइम निर्धारित कर लें कि हम दिन में आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल छुएंगे नहीं। नींद अपनी हमेशा प्रॉपर लेनी चाहिए और नियमित व्यायाम करें। इन दो चीज करने से आप पेट की कम से कम 50% बीमारियों से बच सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आपने सुना, और एक कहावत भी है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो यदि आपका खाना सही होगा, प्रॉपर होगा, तो आपका मन भी अच्छा होगा, तन भी अच्छा होगा। इसी बात के साथ श्रोताओं, हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपको बता दें कि आज कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में हमारे मेहमान थे डॉक्टर अंशुमन सोमानी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और डॉक्टर साहब, आप समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। गैस एक प्रमुख उदर समस्या, इस विषय पर डॉक्टर अंशुमान सोमानी से बातचीत कर रही थी आभा गुप्ता। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सत्यमेव जयते से। गीत कुमार का है, संगीत रोचक कोहली का और स्वर आतिफ असलम का।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म बर्फी से। आवाज है पेपॉन और सुनिधि चौहान की, गीत नीलेश मिश्रा का है और संगीत प्रीतम का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को है। अब से लेकर सभा की समाप्ति तक शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होंगे। पहले सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को 502 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए अब तक करीब 6,80,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें 6,77,000 धान उत्पादक किसान हैं। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल विनीत माथुर ने कल भोपाल में बताया कि प्रदेश के डाकघरों में करीब 1,94,00,000 खाते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 31,00,000 से अधिक खाते खोले गए हैं, जबकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का लाभ करीब 85,00,000 लोग ले रहे हैं। और भोपाल एम्स में सहायक प्रोफेसर के 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 17 अक्टूबर तक कर दी गई है। इन पदों पर सामान्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्जरी समेत कई विभागों में संविदा आधार पर नियुक्तियां होंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। और हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि यदि आपका फोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया अगले नए श्रोताओं को समय दें उनको बात करने का। तो जो हमारे नए श्रोता हैं हम उनको अपना नंबर भी बता देते हैं 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पहले श्रोता कौन है, बात करते हैं। हेलो, कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे में स्वागत है आपका। आप कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेलुखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
1: ओम प्रकाश जी, क्या हालचाल हैं?
2: जी आप जावेद सर जी बोल रहे हैं? नमस्कार सर, बहुत देर में बात हो रही सर आपकी।
1: हाँ, और सुनाइए क्या हालचाल हैं?
2: और सब ठीक है सर।
1: अच्छा, देखिए आज हमारा जो कार्यक्रम है उसका नाम है बात आपकी, गीत हमारे।
2: जी सर, ये तो मालूम है सर हमको, हम तो पुराने श्रोता हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, आप पुराने श्रोता हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज का जो हमने विषय चुना है वो है दुनियादारी, कि आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, दुनियादारी के बारे में क्या जानते हैं?
2: दुनियादारी
1: ना?
2: जी सर, आपने तो बहुत जोरदार विषय रखा है।
1: क्या होती है दुनियादारी?
2: अब दुनियादारी में क्या है, दुनिया ये सामने ही दिख रहा है कि दुनियादारी क्या होती है।
1: जो दिख रहा है उसी को तो हम चाहते हैं कि शब्दों में कहें आप।
2: जैसे अभी नया नया जो कार्यक्रम कार्य चल रहे हैं, जो नई पीढ़ी के जो लड़के बच्चे जो काम कर रहे हैं, ये अब नई दुनियादारी है
1: जी।
2: जैसे ये अपने मोबाइल पर है, मोबाइल मारी है, और ये तुम्हारे ऑनलाइन काम जो होने लगे हैं।
1: हाँ हाँ, दुनियादारी को आप काम से जोड़ कर देखिए।
2: दुनियादारी कहेंगे कि पहले अपने माने पुराने जमाने के समय में ये तो कोई लोग जानते ही नहीं है, इसको काम करने का तरीका कुछ और था, अब तरीका कुछ और है।
1: और दुनियादारी यानी जमाने को सीखने का अंदाज, इसको दुनियादारी कहते हैं कुछ लोग। खैर, तो अब हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना, सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मेरी बात किससे हो रही है?
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी क्या हाल चाल है?
1: सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से, बढ़िया है सर। और भगवान से दुआ भी मैं यही करता हूँ कि हमारे आकाशवाणी कि जितनी भी अनाउंसर है सब भगवान सब पे कृपा बनाए रखना।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, ऐसी दुआओं की हमें सख्त जरूरत होती है। और मनोज जी अब देखिए, आज का जो हमने विषय लिया है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, कि हम अक्सर कहते हैं बच्चों से कि दुनियादारी सीखना पड़ेगी। दुनियादारी आखिर होती क्या है, दुनिया क्या है आपकी नजर में?
1: जी सर जी, हम लोग बच्चों को जिस माहौल में ढाले उस माहौल में वो ढल जाते हैं। कहते हैं कि दुनियादारी, सर जी मान लो जैसे छोटी सी बात बताना चाहते, जैसे अपन बच्चे से कहे अगर कि मान लो अपन को पढ़ने जाना है और अपन को कुछ करके दिखाना है, तो अब उनको तो पता नहीं है आगे चल के क्या करना है, तो जिस माहौल में अपन बच्चों को ढालेंगे उस माहौल बच्चे ढल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, दुनिया में जीने का तरीका है ना, बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, सुनिए।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी गंज वासोदा से।
0: भागचंद्र जी क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया है सर।
0: आज हमने जो विषय चुना है उसका नाम है कि हम अक्सर बच्चों से कहते हैं ना दुनियादारी सीखो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: तो दुनियादारी क्या होती है?
1: दुनियादारी ये है ना, देखो सर क्या है, दुनियादारी तो ठीक है, अपना अपना परिवार का अपना ख्याल रखें, हैं, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, वो भाईचारा बना कर रखें।
0: बहुत अच्छी बात है कि संबंधों पर हम दुनियादारी को जोड़ते हैं कि संबंध हमारे जो हैं बड़ों से संबंध, रिश्तेदारों से संबंध, पड़ोसियों से संबंध,
1: जरूरी है, जरूरी
0: है ना, यही दुनियादारी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए इस बात पे हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: आप सुन रहे हैं बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हमारे अगले श्रोता, हेलो
1: हेलो,
0: कौन बात कर रहे हैं? हेलो,
1: जानकी गुप्ता।
0: जानकी गुप्ता जी कहाँ से बोल रही हैं? जानकी जी
1: भगवंत नगर से।
0: ये भगवंत नगर कहाँ है?
1: जी है पलेरा के पास में, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, टीकमगढ़ से बोल रही हैं आप। और सुनाइए, क्या हाल चाल है?
1: सब बढ़िया।
0: देखिए, हाँ, कार्यक्रम जिसमें आपने हिस्सा लिया है उसका नाम है बात आपकी गीत हमारे। इसमें हम कोई एक विषय चुनते हैं जिस पर हम बात करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है दुनियादारी। हम अक्सर बच्चों से कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि दुनियादारी सीखना पड़ेगी, दुनियादारी आती है नहीं आती है, इस तरह के सवाल होते हैं। तो ये दुनियादारी क्या है?

0: अच्छा दुनियादारी।
1: हाँ
0: दुनियादारी मुझे काम वाम चलता रहता, यही है दुनियादारी।
1: जो काम वाम चलता है वो दुनियादारी है।
0: ऐसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो कि दुनियादारी में बीजे।
1: हाँ हाँ हाँ तो मतलब जो काम करते हैं वो दुनियादारी है।
0: नहीं पूछे उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है दुनियादारी में बीजे हैं और घर का काम वाम है।
1: हाँ हाँ तो वो दुनियादारी है क्या? चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं मालूम लेकिन हम आपको सुनवा रहे हैं बहुत ही अच्छा गाना, सुनिए अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद।

0: छाया पढ़ने न पाए उसने कसाया देखो बजाना।
1: अरे वाह वाह मेरे शागिर्द।
0: थैंक यू।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं सुरेश कुमार सैनी ग्राम पोस्ट अजमेर जिला महोबा से बोल रहा हूँ।
2: क्या हाल चाल
0: सुरेश?
1: बस एकदम अच्छे हैं सर जी।
2: और सुरेश,
1: आप जावेद सर जी बोल रहे हैं?
2: हाँ, जावेद खान बात कर रहा हूँ। अच्छा सुरेश जी, आज का हमने विषय जरा अलग रखा है। अक्सर हम कहते हैं ना कि दुनियादारी सीखना पड़ेगी, दुनियादारी ये होती है। क्या होती है ये दुनियादारी?
1: कुछ
2: तो बताइए कि ये दुनियादारी क्या होती है।
1: दुनियादारी जो जैसे कोई काम जैसे अपने मतलब बस का ना हो उसी को दुनियादारी बोलते हैं।
2: नहीं, अक्सर हम कहते हैं कि दुनियादारी सीखना पड़ेगी, तो ये होती क्या है?
1: जो मतलब अपनी समझ से बाहर हो जो काम,
2: हाँ हाँ,
1: उसी को दुनियादारी कहते हैं मेरी समझ से।
2: अच्छा, जो अपनी समझ में ना आए वो दुनियादारी है।
1: हाँ, दुनियादारी है।
2: अरे वाह, क्या बात है, आपने तो बिल्कुल नई डेफिनेशन, नई परिभाषा दे दी दुनियादारी की। चलिए, आपने इतनी अच्छी बात कही है तो अब हम भी आपको बहुत ही खूबसूरत गाना सुनवा रहे हैं। सुनिए अपने रेडियो सेट पर ये गाना।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार।
1: आज बहुत दिन बाद बात हो रही सर आपसे।
0: हाँ, तो देखिए वो क्या होता है कि कभी जल्दी कभी देर से, ये तो चलता रहता है, जिंदगी है।
1: हाँ जी सर, मैं कृष्णपाल परमार छाइन में ना सोनकच तहसील से बोल रहा हूँ सर।
0: सोनकच।
1: जी, सोनकच के पास गांव है छाइन में ना।
0: पूरा नाम क्या लिखते हैं आप?
1: कृष्णपाल परमार।
0: कृष्ण जी, क्या हाल चाल हैं?
1: बस बढ़िया है सर, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका और सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज हमने जो विषय लिया है थोड़ा सा अलग हट के लिया है।
1: कौन सा सर?
0: आज हमने लिया है कि अक्सर हम कहते हैं दुनियादारी सीखना पड़ेगी, दुनियादारी ऐसी, दुनियादारी ऐसी, तो आखिर ये दुनियादारी होती क्या है?
1: अब दुनियादारी क्या है सर? दुनिया में तो अपन आकलन तो नहीं कर सकता है कि डिजिटल जमाना है, पर सबका अनुभव अलग अलग है। पर
0: हाँ।
1: लेकिन अपने काम धंधे से लगे रहो, बस यही है सर। इसमें क्या है कि जैसा जिसको जैसा अनुभव है, जैसे आप अपन पहले सिलाई सीख गए, बस अपना काम चला रहे हैं,
0: जी
1: बस यही है। और अपना परिवार सही, रिश्तेदारी वगैरह में जाओ आओ,
0: अच्छा, मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं वही दुनियादारी है।
1: बस पर
0: सही।
1: अपनी जैसी जो व्यवस्था है, जैसा अनुभव है, ऐसा ही कार्य करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो किसी की तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: करने में आदमी पीछे छूट जाता है, उसका मकसद जो है ना, छोटा मकसद है मान लो, तो वो भी पूरा नहीं कर पाता है वो।
0: हाँ, सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं बहुत ही सुंदर गाना, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो,
1: हेलो, मैं भावना यादव बोल रही हूँ सुनी मत से। ठीक
0: भावना जी, क्या हाल चाल है?
1: है, आप कैसे हैं?
0: बहुत शानदार।
1: जी
0: तो भावना जी, आज का हमने जो विषय लिया है
1: जी
0: वो थोड़ा सा अलग हट कर लिया है।
1: जी
0: हमने विषय लिया है, अक्सर हम कहते हैं ना दुनियादारी, तो ये दुनियादारी क्या होती है? कहते हैं ना कि हमें दुनियादारी सीखना चाहिए, दुनियादारी ऐसी
1: जी
0: होती है, क्या होती है ये दुनियादारी?
1: ये तो मुझे नहीं पता। बहुत
0: वैसे
1: हार्ड क्वेश्चन
0: हाँ?
1: है, बहुत हार्ड क्वेश्चन
0: अच्छा, वैसे अक्सर आपने नाम तो सुना होगा ना दुनियादारी का।
1: है। हाँ सुना बहुत है, घर में भी बोलते दुनियादारी, तुमने अभी देखे नहीं हो, दुनियादारी
0: हाँ तो वो क्या,
1: देख
0: हाँ
1: तो
0: तो
1: पता चल
0: दुनियादारी,
1: जाएगा।
0: तो ये दुनियादारी क्या होती है जो देखी नहीं
1: दुनियादारी मैं नहीं बता पाऊंगी।
0: है? तो
1: जी
0: चलिए, आपने जानकारी नहीं दी लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि नहीं मालूम, ये भी अपने आप में एक जानकारी है। चलिए
1: जी
0: तो चलिए, अब
1: जी
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना, सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं खापरखेड़ा रायसेन से तुलसीराम साहू बात कर रहा हूँ।
0: तुलसी जी क्या हाल चाल है?
1: मैं सब बढ़िया, आप ही के प्रोग्राम सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अरे वाह क्या बात है, और सुनाइए रायसेन के क्या हाल चाल है?
1: बस रायसेन तो आपके बाजू में है भोपाल के।
0: आपने जिस कार्यक्रम में हिस्सा लिया उसका नाम है बात आपकी गीत हमारे। इसमें हम एक विषय चुनते हैं
1: जी,
0: उस पर हम बात करते हैं कि अक्सर हमारा जो विषय वो ये है कि अक्सर हम कहते हैं कि दुनियादारी सीखना पड़ेगी, तो आखिर ये दुनियादारी क्या होती है?
1: दुनियादारी साहब तो हर प्रकार की बातें अपन को ध्यान में रखने चाहिए, सीखने चाहिए।
0: हाँ हाँ
1: जैसे कहूँ बाहर जाते हैं हमसे कौन सा प्रकार का वातावरण करनी चाहिए, बाहर कौन सा प्रकार रख रखाव चलना चाहिए, कौन सा प्रकार मतलब चलना चाहिए।
0: हाँ
1: वो जो सब बातें हमारे लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, किससे कैसा बात करना है, कैसा बोलना है।
0: हाँ
1: रोड पर अपन जाते हैं तो अपन वाहन कैसे चलाते, तो चारों तरफ अपन को नजर घुमाना, भाई साहब पीछे वाहन नहीं आ रहा, और वाहन आ रहा तो हम कौन सी साइड वाहन चलाना है।
0: हाँ,
1: तो अपन कौन से तरीके की बात करना है, तो ये सब बात अपन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही बात है कि मतलब हमें जीने का तरीका, जीने का सलीका,
1: बिल्कुल
0: जीने की
1: सीखना
0: पद्धति
1: चाहिए
0: आना।
1: जी, कैसे मतलब सीखना चाहिए, कैसे हमको रहना चाहिए, वो सब जानकारी मतलब सब हासिल करना चाहिए।
0: और अब हम आपको सुनवा रहे हैं बहुत ही सुंदर गीत, सुनिएगा ये अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद।

0: अब हमारे अगले श्रोता कौन है, बात करते हैं। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है, आप कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ सर नमस्कार, मैं संतोष सोनी बात कर रहा हूँ।
0: संतोष सोनी साहब कहाँ से बोल रहे हैं संतोष जी?
1: सर मैं दमोह से बात कर रहा हूँ।
0: तो संतोष जी, आज का हमारा जो विषय है वो है, अक्सर हम बात करते हैं ना कि दुनियादारी,
1: जी
0: दुनियादारी सीखना चाहिए, ये करना चाहिए, ये क्या होती है दुनियादारी?
1: सर, दुनियादारी यानी कि सामाजिक जुड़ाव।
0: वाह क्या बात है, बिल्कुल सही। सामाजिक जुड़ाव, किस तरह का सामाजिक जुड़ाव?
1: जिसको अपन बोल सकते हैं सामाजिक सोशियोलॉजी। अगर मान लो आपको आ जाता है तो
0: जी
1: समझिए कि बहुत अच्छे से आप दुनियादारी सीख गए।
0: बिल्कुल, यानी कि समाज में रहकर समाज के साथ में सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने का तरीका जो होता है वो दुनियादारी होती है।
1: जी सर बिल्कुल, तौर तरीके सीखना समाज के एक पहलुओं का।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं बहुत ही सुंदर गीत, सुनिएगा ये अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद।

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं शकुर भाई मंसूरी, ग्राम चोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर, पाखड़ वाली गली, मोहल्ला नंबर 2 से बात कर रहा हूँ सर।
1: मंसूरी साहब, क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया, आप कैसे हैं सर?
1: बस बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए, आपने जिस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है उसका नाम है बात आपके गीत हमारे, और आज का जो हमारा विषय है वो है कि दुनियादारी किसे कहते हैं, दुनियादारी क्या होती है। अक्सर हम कहते हैं ना कि
0: दुनियादारी किसे कहते हैं
1: ना। अच्छा ये बताइए, दुनियादारी का नाम सुना है आपने?
0: दुनियादारी नाम तो सुना है।
1: तो अब ये बताइए कि क्या होती है जिसका नाम सुना है?
0: ये तो बात बहुत बढ़िया बताइए आपने।
1: जी बताइए, आप बताइए, अब क्या होती है दुनियादारी?
0: किसी के साथ में कोई धोखाधड़ी और किसी को छल फरेब बात नहीं करना चाहिए, इस चीज को हम दुनियादारी मानते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। श्रोताओं, आज हमने पूछा था आपसे कि दुनियादारी क्या होती है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने तरह तरह के जवाब दिए। दरअसल दुनियादारी का मतलब होता है कि हमारे आसपास के वातावरण, हमारे आसपास के जो संसार है या दुनिया है, उसके कौशल को सीखना, उस परिस्थितियों को समझना और उसके हिसाब से अपने जीवन को जीने के तरीके को दुनियादारी कहते हैं। तो आखिर में हम यही कहेंगे कि

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। श्रोताओं, यदि आप हमारे फोन इन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो हमारा फोन नंबर आपको वैसे तो याद है, फिर भी हम अपने श्रोताओं को बता दें 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हम अपने श्रोताओं से यह भी कहना चाहेंगे कि यदि आपका फोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया नए श्रोताओं को मौका दें ताकि वो इस कार्यक्रम में शामिल हों, हम उनकी बातें भी जान सकें। यदि आप फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने में हिस्सा लेना चाहते हैं या लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आप अपनी पसंद का गाने को पहले से चुन लें। और सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप कॉल करते हैं तो आसपास की पीछे की जो आवाज़ें हैं वो हम तक ना आए, कृपया कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपकी आवाज़ साफ़ आए और बातचीत अच्छी हो। तो अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त जावेद खान को। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय घर कॉलोनी मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
9: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
10: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में न्यूज पिंच के यूथ कॉन्क्लेव जिनजी पिंच में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस टॉक शो में युवाओं

विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी आकांक्षाओं, विचारों और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने वाले 2019 के कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश

0: का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को 502 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान कल भोपाल में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल विनीत माथुर ने बताया कि प्रदेश में डाक विभाग के 10,281 डाकघरों के जरिए 8 करोड़ से ज्यादा लोगों तक बचत, बैंकिंग, बीमा, आधार और पासपोर्ट जैसी सेवाएं पहुंच रही हैं। और भारत वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 दिवसीय T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आपके पत्र हमारे पास हैं और आपकी पसंद के गीत हमने चुन लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं पत्रों और गीतों का सिलसिला। कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं दो रास्ते फिल्म से। आवाज मोहम्मद रफी की है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की। रीवा से अशोक पांडे, सुमन पांडे, दिव्यानी पांडे, नीतू और दिव्य। अनुराग मिश्रा भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मोहित पांडे भी इसी गीत को सुनने के लिए तैयार हैं और इनका पत्र हमें मिला है। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी और मनन इस गीत को सुनना चाहते हैं। जयराज प्लॉट राजकोट के श्रोता हैं, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। तो आइए सुनते हैं दो रास्ते फिल्म का ये नगमा

सीता और गीता फिल्म का गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की, नया पारा बालौद के श्रोता है बसंत कुमार ठाकुर, सरोज बाई ठाकुर, ईश्वर राज ठाकुर। धमतरी के श्रोता हैं ट्यूशी ठाकुर, प्राची, देविका और चंद्रकांत ठाकुर। बरेड़ी के श्रोता हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक और प्राची के साथ तनु करमरकर। इसी गीत को पसंद किया है दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने।

और अब आपको सुनवा रहे हैं जीने की राह फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की। कवर कॉलोनी बड़वाह के हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। इसी गीत को सुनना चाहते हैं महाराष्ट्र हिंगोली के श्रोता। ये हैं शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, छत्रपति शंभाजी नगर के श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप और राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। इसी गीत के लिए पत्र लिख भेजा है हमें नांदेड़ के श्रोताओं ने। ये हैं प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। एक और पत्र हमें मिला है, ये पत्र है हरियाणा से। ये हैं जेके बकोलिया, सुनीता, संजय, मीनू बकोलिया। तो आइए सुनते हैं जीने की राह फिल्म का ये गीत।

0: अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत गीत और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है अलग अलग। पसंद करने वाले श्रोता हैं बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खट से, रक्षाताई खट से, ललिता संजना गणेश और कार्तिक खट से, मालती चौधरी और स्वाति के साथ प्रयाग चौधरी इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर के श्रोताओं ने। यह है रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी और इनके परिवार के सदस्य। यादव मोहल्ला के श्रोता हैं दिलीप मालाकर, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार के साथ योगेश मालाकार, सनावत के श्रोता हैं ये सब। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं दुर्गई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी। तो आइए सुनते हैं अलग अलग फिल्म का ये नगमा।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। मुकेश लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, पसंद आप सब श्रोताओं की। शीतल रेडियो श्रोता संघ से खरगोन से ये पत्र मिला है। डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका और अंजलि के साथ श्वेता वर्मा का। इसी गीत को पसंद किया है उज्जैन के श्रोताओं ने। यह है विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नहाटा और दीक्षा के साथ कुश मूड़त। शिवाजी चौक से पत्र मिला है। राजिम के ये श्रोता हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी और सुरक्षी देवी इस गीत को सुनना चाहती हैं अमरपुर पेंड्रा से। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म जिस देश में गंगा।

0: इस गीत के साथ पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
6: योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रति पल उसका बेनिफिट देता रहता है।
5: आइए इस 21 जून

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्त शुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति। आज सुनिए इसका 9वां भाग।

0: कॉलेज की कैंटीन का दृश्य। लड़के लड़कियां आ जा रहे हैं, कोई बैरे को आवाज दे रहा है तो कोई उससे नाश्ता मांग रहा है। कैंटीन के रेडियो से समाचार प्रसारित हो रहे हैं।
1: गांधी जी के विदेशी माल के बहिष्कार के आह्वान का देश के कई हिस्सों में गहरा असर दिखाई दे रहा है। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं। कानपुर में विदेशी कपड़ों की होली जलाने के लिए जमा भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज भी किया गया है। खासकर युवाओं में इस आंदोलन के बढ़ते असर से प्रशासन बहुत चिंतित है। और
0: तभी आनंद ने कैंटीन में प्रवेश किया।
2: अरे आनंद, आप अकेले? विशंभर को कहाँ छोड़ा है?
0: आनंद ने गद्देदार कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाया।
3: रूपमणि, तुम्हें मालूम है आज विशंभर ने कैसी हिमाकत की?
2: क्या?
3: अरे इम्तिहान करीब हैं और आप आज वॉलंटियर बने बैठे हैं।
2: अरे
3: कहीं पकड़े गए तो इम्तिहान से हाथ धोएंगे। मेरा ख्याल तो है कि वजीफा भी बंद हो जाएगा।
0: सामने दूसरी बेंच पर रूपमणि बैठी एक अखबार पढ़ रही थी। उसकी आंखें अखबार की तरफ थीं, पर कान आनंद की तरफ लगे हुए थे।
2: यह तो बुरा हुआ आनंद, तुमने समझाया नहीं।
3: जब कोई अपने को दूसरा गांधी समझने लगे तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता है। वो तो उल्टे मुझे ही समझाने लगता है।
0: रूपमणि ने अखबार समेट कर रखा और बाल सवारे।
2: तुमने मुझे भी नहीं बताया आनंद। शायद मैं उसे रोक सकती।
3: तो अभी क्या हुआ है रूपमणि? अभी तो पार्टी ऑफिस में ही होगा, जाकर रोक लो, जाओ।
0: आनंद और विशंभर दोनों ही यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। आनंद के हिस्से में लक्ष्मी भी पड़ी थी और सरस्वती भी। विशंभर फूटी तकदीर लेकर आया था। प्रोफेसरों ने दया करके एक छोटा सा वजीफा दे दिया था, बस यही उसकी जीविका थी। रूपमणि भी साल भर पहले उन्हीं की समकक्ष थी, पर इस साल उसने कॉलेज छोड़ दिया था। स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था। दोनों युवक कभी कभी उससे मिलने आते रहते थे। आनंद आता था उसका हृदय लेने के लिए, विशंभर आता था यूं ही। जी पढ़ने में नहीं लगता या घबराता तो उसके पास आ बैठता था। शायद रूपमणि से विपत्ति कथा कहकर उसका चित्त कुछ शांत हो जाता था। आनंद के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। आनंद के पास उसके लिए सहानुभूति का एक भी शब्द न था। वह उसे फटकारता था, जलील करता था और बेवकूफ बनाता था। विशंभर में उससे बहस करने की सामर्थ्य न थी। सूर्य के सामने दीपक की हस्ती ही क्या। आनंद का उस पर मानसिक आधिपत्य था। जीवन में पहली बार उसने उस आधिपत्य को अस्वीकार किया था और उसी की शिकायत लेकर आनंद रूपमणि के पास आया था। महीनों विशंभर ने आनंद के तर्क पर अपने भीतर के आग्रह को ढाला, पर तर्क से परास्त होकर भी उसका हृदय विद्रोह करता रहा। बेशक उसका यह साल खराब हो जाएगा, संभव है छात्र जीवन ही का अंत हो जाए, फिर इन 14-15 वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ना खुदा ही मिलेगा, ना सनम का विसाल ही नसीब होगा। आप में कूदने से क्या फायदा? यूनिवर्सिटी में रहकर भी तो बहुत कुछ देश का काम किया जा सकता है। आनंद महीने में कुछ ना कुछ चंदा जमा कर देता है, दूसरे छात्रों से स्वदेशी की प्रतिज्ञा भी करा ही लेता है। विशंभर को भी आनंद ने यही सलाह दी। इस तर्क ने उसकी बुद्धि को तो जीत लिया, पर उसके मन को नहीं जीत सका। आज जब आनंद कॉलेज गया तो विशंभर ने स्वराज्य भवन की राह ली। आनंद कॉलेज से लौटा तो उसे अपनी मेज पर

0: विषमभर का पत्र मिला। लिखा था,
1: प्रिय आनंद, मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूं वो मेरे लिए हितकर नहीं है, पर न जाने कौन सी शक्ति मुझे खींचे जा रही है। मैं जाना नहीं चाहता, पर जा रहा हूं, उसी तरह जैसे आदमी मरना नहीं चाहता पर मरता है, रोना नहीं चाहता पर रोता है। जब सभी लोग जिन पर हमारी भक्ति है ओखली में अपना सिर डाल चुके हैं, तो मेरे लिए भी अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं अब और अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। ये इज्जत का सवाल है और इज्जत किसी तरह का समझौता नहीं कर सकती। तुम्हारा विशंभर।
0: खत पढ़कर आनंद के जी में आया कि विशंभर को समझाकर लौटा लाए, पर उसकी हिमाकत पर गुस्सा आया और उसी तैश में वो रूपमणि के पास जा पहुंचा।
2: अच्छा ये बताओ रूपमणि, क्या मैं देशभक्त नहीं हूं?
0: क्या पता।
2: क्या मतलब, तुम्हें शक है?
0: नहीं नहीं कोई शक नहीं है, हो तुम देशभक्त पर।
2: नहीं नहीं नहीं तुम्हें लगता है कि मैं पार्टी विरोधी हूँ, देश से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है।
0: नहीं नहीं ऐसा क्यों लगेगा भला, तुम पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करते हो, विशंभर से ज्यादा चंदा। देश की आजादी, स्वदेशी के बारे में तुम्हारे सद्विचार मुझे पता है, गांधी जी के प्रति तुम्हारे मन में काफी आदर है।
2: हाँ फिर?
0: फिर क्या? कुछ नहीं।
2: देखो रूपमणि, क्या पढ़ाई छोड़कर सड़क पर आ जाना ही देशभक्ति है? अरे पढ़ते हुए भी हम पार्टी का काम कर सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं। मैं कर तो रहा हूं। जो लोग हमारे आदर्श हैं, क्या वे अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं हैं? महात्मा गांधी आज स्वदेशी का नारा दे रहे हैं, पर क्या वे खुद 40 साल की उम्र तक विदेशी कपड़े धारण नहीं करते थे? अरे वे तो विदेश में बैरिस्ट्री कर रहे थे।
0: वाह वाह, तुम तो अपनी तुलना गांधी जी से करने लगे, ये तो अति हो गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
2: नहीं नहीं मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि देश प्रेम और पढ़ाई में कोई विरोध नहीं है।
0: शायद तुम ठीक कहते हो।
2: यही बात मैं विशंभर को समझाता रहा हूं और वो मानता भी रहा है, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि
0: अब मैं मना लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम तो चलोगे नहीं। अगर रूपमणि उसकी खुशामद करके कहती जाकर उसे लौटा लाओ तो शायद वो चला जाता, पर उसका ये कहना कि मैं रोक लेती उसके लिए असह्य था। उसके जवाब में रोष था, रुखाई थी और शायद कुछ हसद भी था। रूपमणि ने गर्व से उसकी ओर देखा।
3: अच्छी बात है, तो फिर मैं चलती हूँ, तुम क्यों नहीं चलते?
0: फिर वही गलती, अगर रुक्मणि उसकी खुशामद करते हुए कहती तो आनंद जरूर उसके साथ चलता, पर उसके प्रश्न में पहले ही यह भाव था कि आनंद जाना नहीं चाहता। अभिमानी आनंद इस तरह नहीं जा सकता।
2: मेरा जाना व्यर्थ है, तुम्हारी बातों का ज्यादा असर होगा। मेरी मेज पर वो खत छोड़कर गया था, और जब वो आत्मा, कर्तव्य और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है और अपने को भी कोई ऊंचे दर्जे का आदमी समझ रहा है, तो उस पर मेरा कोई असर ना होगा।
0: उसने जेब से पत्र निकालकर रूपमणि के सामने रख दिया। इन शब्दों में जो संकेत और व्यंग था, उसने एक क्षण के लिए रूपमणि को उसकी तरफ देखने ना दिया। आनंद के इस निर्दय प्रहार ने उसे आहत सा कर दिया था, पर एक ही क्षण में विद्रोह की एक चिंगारी उसके अंदर जाग उठी। उसने स्वच्छंद भाव से पत्र को पढ़ा सिर्फ आनंद के प्रहार का जवाब देने के लिए, पर पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा तेज से कठोर हो गया, गर्दन तन गई, आंखों में उत्सर्ग की लाली आ गई। उसने मेज पर पत्र रख दिया।
3: नहीं, अब मेरा जाना भी व्यर्थ है।
2: हाँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था, इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार है, उस पर किसी के समझाने का कोई असर ना होगा। जब साल भर जेल में चक्की पीस लेंगे और वहां से तपेदिक लेकर निकलेंगे या पुलिस के डंडों से सिर और हाथ पांव तोड़वा लेंगे ना, तो बुद्धि ठिकाने लगेगी। अभी तो जय जयकार और तालियों के स्वप्न देख रहे हैं।
0: रूपमणि सामने आकाश की ओर देख रही थी। दुर्बल, सूखा और नग्न शरीर, घुटनों तक धोती, चिकना सिर, पोपला मुंह, तप, त्याग और सत्य की सजीव मूर्ति,

0: अगर मुझे मालूम हो कि मेरे रक्त से देश का उद्धार हो जाएगा तो मैं आज ही उसे देने को तैयार हूं। लेकिन मेरे जैसे 150 आदमी निकल ही आए तो क्या होगा? प्राण देने के सिवा तो और कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दिखता।
1: रूपमणि अब भी वही छाया चित्र देख रही थी, वही छाया मुस्कुरा रही थी, सरल मनोहर मुस्कान जिसने विश्व को जीत लिया है।
0: जिन महाशयों को परीक्षा का भूत सताया करता है उन्हें देश का उद्धार करने की सूझी है। पूछिए, आप अपना उद्धार तो कर नहीं सकते, देश का क्या उद्धार कीजिएगा? अरे इधर फेल होने से उधर के डंडे फिर भी हल्के हैं।
1: रूपमणि की आंखें आकाश की ओर थीं, छाया चित्र कठोर हो गया था।

0: आज बड़ी मजेदार फिल्म है, चलती हो? पहले शो में चलते हैं।
1: रूपमणि जैसे आकाश से नीचे उतर आई हो।
2: नहीं नहीं, मेरा जी नहीं चाहता।
1: आनंद ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया।
0: तबीयत तो अच्छी है?
1: रूपमणि ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा नहीं की।
2: हाँ, तबीयत को क्या हुआ है?
0: तो चलती क्यों नहीं?
2: नहीं, आज जी नहीं चाहता।
0: तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा।
2: बहुत ही उत्तम है, टिकट के रुपए पार्टी को दे दो।
0: ये तो टेढ़ी शर्त है, लेकिन मंजूर।
2: हाँ, लेकिन कल रसीद मुझे दिखा देना।
0: तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास भी नहीं है?
1: आनंद हॉस्टल चला। जरा देर बाद रूपमणि स्वराज्य भवन की ओर चली।

0: रूपमणि स्वराज्य भवन पहुंची तो स्वयं सेवकों का एक दल विलायती कपड़ों के गोदामों को पिकेट करने जा रहा था। विशंभर दल में ना था। दूसरा दल शराब की दुकानों पर जाने को तैयार था। विशंभर इसमें भी नहीं था। स्वराज्य भवन में गहमा गहमी थी। मंत्री दलों की व्यवस्था देख रहे थे।
1: देखिए, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। दलों के नायक अपने अपने स्वयं सेवकों को कतार में खड़ा करें और सुनिए, कपड़ों वाला दल सीधे क्लॉथ मार्केट की तरफ जाएगा। शराब की दुकानों वाला दल छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर शराब की हर दुकान में जाएगा। और देखिए, एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, हिंसा होने पर भी ध्यान रहे, चोट खा लें मगर अपना काम जारी रखें, किसी भी विवाद में ना पड़े। ध्यान से सुनिए और समझिए, ऊंची आवाज में बोलना भी हिंसा है। मेरी बात का ध्यान रहे, हमें हर हाल में शांति बनाए रखनी है।
2: व्यवधान के लिए क्षमा करें मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि विशंभरनाथ कहाँ है?
1: अच्छा, वही जो कल भर्ती हुए हैं।
2: जी हाँ जी हाँ, वही।
1: भाई बड़े दिलेर आदमी है, देहातों को तैयार करने का काम लिया है उन्होंने।
2: अच्छा,
1: स्टेशन पहुँच गए होंगे, 7 बजे की गाड़ी से जा रहे हैं वो।
2: तो बस अभी स्टेशन पर ही होंगे विशंभर।
0: घड़ी पर नजर डालकर सोचते हुए मंत्री जी ने कहा,
1: हाँ, अभी तो शायद स्टेशन पर मिल जाएं आपको।
0: रूपमणि ने बाहर निकलकर साइकिल तेज की। स्टेशन पर पहुंची तो देखा विशंभर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। रूपमणि को देखते ही लपक कर उसके पास आया।
3: तुम यहाँ कैसे आई रूपमणि? आज आनंद से तुम्हारी मुलाकात हुई थी क्या?
2: ये तुमने क्या सूरत बना रखी है, क्या पाँव में जूते पहनना भी देशद्रोह है?
3: आनंद बाबू ने तुमसे कुछ कहा नहीं?
2: जी हाँ, कहा है। तुम्हें क्या सूझी विशंभर, 2 साल से कम के लिए नहीं जाओगे?
3: जब ये जानती हो तो क्या तुम्हारे पास मेरी हिम्मत बताने के लिए 2 शब्द नहीं?
0: दुख के साथ मगर ऊपर से कठोर बनते हुए रूपमणि ने कहा,
2: तुम मुझे दुश्मन समझते हो या दोस्त?
3: तुम ऐसा प्रश्न क्यों करती हो रूपमणि? इसका जवाब मेरे मुंह से नहीं सुनकर भी क्या तुम समझ नहीं सकती?
2: तुम्हें कहती हूँ, तुम मत जा।

0: ये दोस्त की सलाह नहीं है रुक्मणि, मुझे विश्वास है ये बात तुम हृदय से नहीं कह रही हो। मेरे प्राणों का क्या मूल्य है जरा ये सोचो। एमए होकर भी 100 रुपये की नौकरी, बहुत बड़ा तो 300-400 तक जाऊंगा, इसके बदले यहां क्या मिलेगा? जानती हो, संपूर्ण देश का स्वराज्य, इतने महान हेतु के लिए मर जाना भी उस जिंदगी से कहीं बढ़कर है। अब जाओ, गाड़ी आ रही है, आनंद बाबू से कहना मुझसे नाराज ना हो।
1: रूपमणि ने आज तक इस मंदबुद्धि युवक पर दया की थी, इस समय उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया। त्याग में हृदय को खींचने की जो शक्ति है, उसने रूपमणि को इतने वेग से खींचा कि परिस्थितियों का अंतर मिट गया। विशंबर में जितने दोष थे वे सब अलंकार बन बनकर चमक उठे। उसके हृदय की विशालता में वो किसी पक्षी की भांति उड़ उड़कर आश्रय खोजने लगे।
2: मुझे भी अपने साथ ले चल दो विशंबर।
1: विशंबर पर जैसे घड़ों का नशा चढ़ गया।
0: तुमको आनंद बाबू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
2: मैं आनंद बाबू के हाथों बिकी हुई नहीं हूँ।
0: आनंद तो तुम्हारे हाथों बिके हुए हैं।
1: रूपमणि ने विद्रोह भरी आंखों से उसकी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं। परिस्थितियां उसे इस समय बाधाओं सी मालूम हो रही थीं। वो भी विशंबर की भांति स्वच्छंद क्यों नहीं हुई? संपन्न माँ बाप की अकेली लड़की, भोग विलास में पली हुई, इस समय अपने को कैदी समझ रही थी। उसकी आत्मा उन बंधनों को तोड़ डालने के लिए जोर लगाने लगी थी। गाड़ी आ गई थी, मुसाफिर चढ़ने उतरने लगे थे।
2: तो तुम मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे विशंबर?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: लेकिन क्यों?
0: मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता।
2: क्या तुम समझते हो कि मैं इतनी विलास आसक्त हूँ कि देहात में नहीं रह सकती?
1: विशंबर लज्जित हो गया। ये भी एक कारण था, पर उसने इनकार किया।
0: नहीं नहीं, ये बात नहीं है रूपणी।
2: फिर क्या बात है? क्या यह भ्रम है कि पिताजी मुझे त्याग देंगे, अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे?
0: अगर ये भय हो तो क्या ये विचार करने योग्य नहीं है रूपण?
2: मैं इस समय उसकी तरण बराबर भी परवाह नहीं करती।
1: विशंबर ने देखा रूपमणि के चांद से मुख पर गर्वमय संकल्प का आभास था। वो उसके संकल्प के आगे जैसे कांप गया।
0: मेरी याचना स्वीकार करो रूपमणि। मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपनी जिद त्याग दो।
1: रूपमणि सोचती रही।
0: मेरी खातिर तुम्हें ये विचार छोड़ना पड़ेगा रूपमणि।
2: अगर तुम्हारा ये आदेश है तो ही मानूंगी विशंबर। तुम दिल ही दिल में समझते हो मैं क्षणिक आवेश में आकर इस समय अपने भविष्य को गारत करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूंगी ये मेरा क्षणिक आवेश नहीं, दृढ़ संकल्प है। जाओ, मगर मेरी इतनी बात मानना कि कानून के पंजे में उसी वक्त आना जब आत्माभिमान या सिद्धांत पर चोट लगे। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूंगी।
1: विशंबर अंदर जा बैठा। गाड़ी ने फिर सीटी दी और धीमे धीमे चलना शुरू किया।

रूपणी के पास विशंभर का एक पुराना रद्दी सा फोटो अलमारी के कोने में पड़ा हुआ था। आज स्टेशन से आकर उसने उसे निकाला और उसे एक मखमली फ्रेम में लगाकर मेज पर रख दिया। उसने आनंद का फोटो वहां से हटा दिया था। विशंभर ने

0: चिट्ठियों में उसे दो चार पत्र लिखे थे। रूपमणि ने उन्हें पढ़कर एक किनारे डाल दिया था। आज उसने उन पत्रों को निकाला और उन्हें दोबारा पढ़ा। उन पत्रों में आज कितना रस था। वो बड़ी हिफाजत से राइटिंग बॉक्स में बंद कर दिए गए। दूसरे दिन समाचार पत्र आया तो रूपमणि उस पर टूट पड़ी। विशंभर का नाम देखकर वो गर्व से फूल उठी। दिन में एक बार स्वराज्य भवन जाना उसका नियम हो गया। जलसों में भी बराबर शरीक होती। विलास की चीजें एक एक करके सब फेंक दी गई थीं। रेशमी साड़ियों की जगह गाठे की साड़ियां आईं। चरखा भी आया। वो घंटों बैठी सूत काता करती। उसका सूत दिन दिन बारीक होता जाता था। इसी सूत से वो विशंभर के कुर्ते बनवाएगी। उन दिनों परीक्षा की तैयारियां थीं। आनंद को सिर उठाने की फुर्सत नहीं थी। एक महीना बीत गया। एक दिन शाम को आनंद आया। रूपमणि स्वराज्य भवन जाने को तैयार थी।
1: तुमसे तो अब बातें करना भी मुश्किल है।
2: तुम्हें भी तो किताबों से छुट्टी नहीं मिलती। आज की कुछ ताज़ा खबर नहीं मिली इसलिए स्वराज्य भवन जा रही हूँ। वहाँ रोज रोज का हाल मिल जाता है।
1: सुना है देहातों में विशंभर ने खूब शोरगुल मचा रखा है। जो काम उसके लायक था वो मिल गया। यहाँ तो उसकी जुबान बंद रहती थी, वहाँ देहातियों में खूब गरजता होगा। मगर आदमी दिलेर है।
2: आदमी में अगर ये गुण है तो फिर उसके सारे अवगुण मिट जाते हैं। तुम्हें पार्टी बुलेटिन पढ़ने की फुर्सत क्यों मिलती होगी? विशंभर ने देहातों में ऐसी जागृति फैला दी है कि विलायत का एक सूद भी नहीं बिकने पाता और नशे की दुकानों पर न ही कोई जाता है। और मजा यह है कि पिकेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो पंचायतें खोल रहे हैं।
1: तो समझ लो अब उनके चलने के दिन भी आ गए हैं।
2: इतना करके जाना भी सस्ता नहीं है। कल तो किसानों का एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला था। पूरे परगने के लोग जमा हुए होंगे। सुना है आजकल देहातों में कोई मुकदमा ही नहीं आता। वकीलों की नानी मरी जा रही है।
1: यही तो स्वराज्य का मजा है। जमींदार वकील और व्यापारी सब मिट जाएं, बस मजदूर और किसान रह जाएं।
0: रूपमणि ने समझ लिया आज आनंद शायद लड़ने का तय करके आया है। उसने भी मुकाबला करने का निश्चय कर लिया।
2: तो क्या तुम चाहते हो कि जमींदार वकील और व्यापारी गरीबों को चूस चूस कर मोटे होते जाएं? और जिन व्यवस्थाओं में ऐसा महान अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ जबान तक न खोली जाए? तुम तो समाजशास्त्र के पंडित हो, क्या किसी अर्थ में ऐसी व्यवस्था आदर्श कही जा सकती है? सभ्यता के तीन मुख्य सिद्धांतों का ऐसी दशा में किसी न्यूनतम मात्रा में ही व्यवहार हो सकता है।
1: शिक्षा और संपत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। हाँ, उनका रूप भले ही बदल जाए।
2: अगर स्वराज्य आने पर भी पैसे वालों का यही प्रभुत्व बना रहे और पढ़ा लिखा समाज अपने स्वार्थ में अंधा बना रहे तो मैं कहूंगी ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा है। अंग्रेजों महाजनों की धन लोलुपता और शिक्षितों का स्वहित ही आज हमें पीछे डाल रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसीलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम से कम मेरे लिए तो स्वराज्य का ये अर्थ कतई नहीं है कि जान की जगह गोविंद बैठ जाए। मैं समाज में ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ जहाँ कम से कम विषमता को तो आश्रय ना मिल सके।
1: ये तुम्हारी निजी कल्पना होगी।
2: तुमने अभी इस आंदोलन का साहित्य पढ़ा ही नहीं है।
1: ना पढ़ा है और ना पढ़ना चाहता हूँ।
2: इसमें राष्ट्र की कोई बड़ी हानि नहीं होगी।
1: तुम तो रूपमणि अब पहले जैसी नहीं रही। लग रहा है तुम्हारी बिल्कुल काया पलट हो गई है।
0: सहसा डाकिये ने पार्टी बुलेटिन लाकर मेज पर रख दिया। रूपमणि ने अधीर होकर उसे खोला। पहले शीर्षक पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में जैसे नशा छा गया। अज्ञात रूप से गर्दन तन गई और चेहरा एक अलौकिक तेज से दमक उठा।
2: विशंभर पकड़ लिए गए हैं। उनको 2 साल की सजा हो गई है।
1: किस मामले में सजा हुई?
2: रानीगंज में किसानों की विराट सभा थी, वहीं पुलिस ने पकड़ा है उन्हें।
1: मैंने तो पहले ही कहा था 2 साल के लिए जाएंगे। जिंदगी खराब कर डाली।
2: क्या डिग्री ले लेने से आदमी का जीवन सफल हो जाता है? सारा अनुभव सारा ज्ञान पुस्तकों में ही भरा हुआ है क्या? मैं समझती हूँ संसार और मानवीय चरित्र का जितना अनुभव विशंभर को 2 सालों में हो जाएगा उतना दर्शन और कानून की पोथियों से तुम्हें 200 वर्षों में भी ना होगा। अगर शिक्षा का उद्देश्य चरित्र बल मानो तो राष्ट्र संग्राम में मनोबल के जितने साधन हैं पेट के संग्राम में कभी नहीं हो सकते। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि हमारे लिए पेट की चिंता ही बहुत है, हमसे कुछ और हो नहीं सकता। हमें ना उतना साहस है, ना बल, ना धैर्य, ना संगठन। तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन जाति हित के लिए प्राण देने वालों को बेवकूफ बताना मुझसे

0: कितना सहा जाएगा? आज विशंभर के इशारे पर लाखों आदमी सीना खोलकर खड़े हो जाएंगे। तुम में है जनता के सामने खड़े होने का हौसला? जिन लोगों ने तुम्हें पैरों तले कुचल रखा है, जो तुम्हें कुत्तों से नीचे समझते हैं, उन्हीं की गुलामी करने के लिए तुम डिग्रियों पर जान दे रहे हो? तुम इसे अपने लिए गौरव की बात समझो, मैं तो नहीं समझती।
1: तुम तो पक्की क्रांतिकारिणी हो गई हो आजकल।
0: अगर सच्ची खरी बातों में तुम्हें क्रांति की गंध मिले तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।
1: आज विशंभर को बधाई देने के लिए जलसा जरूर होगा, क्या तुम उसमें जाओगी?
0: जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, और बोलूंगी भी। कल रानीगंज भी चली जाऊंगी। विशंभर ने जो दीपक जलाया है वो मेरे जीते जी ना बुझ पाएगा।
1: अपनी अम्मा और दादा से पूछ लिया?
0: वो भी पूछ लूंगी।
1: क्या वो तुम्हें अनुमति दे देंगे?
0: सिद्धांत के विषय में अपनी आत्मा का आदेश ही सर्वोपरि होता है।
1: अच्छा, ये नई बात मालूम हुई।
2: ये कहता हुआ आनंद उठ खड़ा हुआ और बिना हाथ मिलाए कमरे से बाहर निकल गया। उसके पैर उस तरह लड़खड़ा रहे थे कि अब गिरा तब गिरा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 9। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में न्यूज पेंच के साथ यूथ कॉन्क्लेव के जेन सी पेंच में शामिल होंगे। इस टॉक शो में वे युवाओं और विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी आकांक्षाओं, विचारों और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के 13वें दीक्षांत समारोह में आज भोपाल में 233 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जा रही हैं। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक देकर सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को 502 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति की राशि जारी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय के नए भवन का भी लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए अब तक करीब 6,80,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इनमें 6,77,000 धान उत्पादक किसान हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में गौपालन ग्रामीण परिवारों की आर्थिक मजबूती का नया आधार बन रहा है। प्रदेश की लगभग 2 लाख गोपालक दीदियां सहकारिता और पशुपालन के जरिए आत्मनिर्भरता

राह पर आगे बढ़ती जा रही है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल विनीत माथुर ने कल भोपाल में बताया कि प्रदेश में डाकघरों में करीब 1,94,00,000 खाते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 31,00,000 से अधिक खाते खोले गए हैं, जबकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का लाभ

0: खुशबुओं से कह दो फिजाओं में बिखर जाएं, मेरा रहनुमा चेहरे पर मुस्कान लिए आया है। कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों का कार्यक्रम के आज के अंक में स्वागत है। आज आपके सामने मैं अर्चना शुक्ला, स्वीकार कीजिए अभिवादन, नमस्कार। बहनों, मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना मनमोहक होता है ना। चेहरे की मुस्कुराहट मनुष्यता की पहचान होती है और यह हमारी अनूठी विशेषता है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे का खूबसूरत गहना है जो सोने चांदी के आभूषणों से कहीं ज्यादा आकर्षक और शोभनीय है। पर बहनों, आज विडंबना है, हर दूसरा इंसान जिसके चेहरे से हंसी जाती रही है। चेहरे में ज्यादातर परेशानी के भाव रहते हैं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं तनाव में दिखाई देता है। आज हर व्यक्ति अपनी अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने की लालच में भागता जा रहा है और इसी दौड़ में महिलाएं भी शामिल हैं। आज की कामकाजी महिला घर बाहर दोनों की बागडोर संभाल रही हैं और इसी कारण मानसिक शांति कम हो रही है और संतुलन बिगड़ रहा है। बहनों, महिलाओं में मानसिक तनाव, पारिवारिक और पेशेवर संतुलन, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल और नौकरी या व्यवसाय के बीच तालमेल बिठाने के कारण भी हो सकती है। हार्मोनल बदलाव के कारण जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था या रजोनिवृत्ति के दौरान भी ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। लगातार चिंतन और हर काम को खुद करने का प्रयास और अकेले निर्णय लेना या किसी भी काम की योजना बनाने में अकेले रहना भी मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। और आजकल अकेलापन, आत्मसम्मान की कमी और रिश्तों में अनबन या धोखाधड़ी एक बड़ी समस्या हो चुकी है जो मानसिक रूप से झकझोर देती है और हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है। बहनों, और भी बहुत से कारण हैं जो हमें मानसिक रूप से परेशान करते हैं, पर कारण कुछ भी हो, हमें अपने मन को कमजोर कभी नहीं करना चाहिए। हर परिस्थिति का सामना डट कर करना चाहिए। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है जो नई ऊर्जा और नई रोशनी लाती है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल हमें ही रखना है और दूसरा कोई नहीं रखेगा। इसके लिए हमारे विचार में कुछ उपाय हैं जो आपको अपनाना है और स्वस्थ रहना है। जैसे स्वयं की देखभाल करना, अपने लिए रोजाना थोड़ा समय निकालें और अपने पसंद की गतिविधियां और शौक को पूरा करें। संतुलित जीवन शैली को अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें और पूरी नींद भी लें। और आपको जब भी लगे कि हमें कुछ मानसिक तकलीफ या मानसिक तनाव है तो तुरंत किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की मदद जरूर लें। अपने मन की भावनाओं को किसी से साझा जरूर करें। मन की बातें दबाएं नहीं, क्योंकि बहनों, मन की दबी बात कभी कभी इतनी पीड़ादायक हो जाती है कि हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, हमारा स्वास्थ्य खराब कर देती है। बहनों, आज हम एक मनोवैज्ञानिक के समक्ष हैं जो जिला चिकित्सालय में पदस्थ हैं, डॉक्टर अनु मिश्रा जी। हम इनसे आज महिला और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में ही जानकारी ले रहे हैं। चलिए सुनते हैं।
1: नमस्कार सखियों, आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य और महिलाओं को लेकर। महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य आज के टाइम में काफी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। हर स्त्री कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परेशान है और ये कोई एज नहीं रह गई है कि किस एज में मानसिक समस्या आ जाएगी। 7 से 8 साल की भी बच्चियों में स्ट्रेस एंजाइटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 12 से 13 साल में थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि वहाँ पे हमारे हार्मोन्स बदलते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि शारीरिक परिवर्तन बच्चियों में होता है, उसी तरह से भी उनके मानसिक भी समस्या आने लगती है। माता पिता की बात नहीं सुनता है, बाहर दोस्ती ज्यादा रखना, बाहर वालों के ऊपर ज्यादा भरोसा करना, तो कहीं ना कहीं उसके हार्मोन्स परिवर्तन की वजह से होता है। और इसका एक ही समाधान है कि

0: ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनके विचारों को सुनने की कोशिश करें। हमें ध्यान देना है कि हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है, उसको हम सोशल इन्वायरमेंट में रखें, लोगों से मिलवाएं, अपने पड़ोसी से, दांतों से, रिश्तेदारों से मिलवाएं, तो उससे बच्चा काफ़ी अच्छे से समझना चालू कर देता है सामाजिक वातावरण को। और दूसरा वो है अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है, क्योंकि उसमें कंट्रोलिंग पावर उसी एज में लाना काफ़ी ज़रूरी होता है। 13 से लेकर 18 साल तक के उम्र में काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हमारे बच्चे का व्यवहार क्या है और हमें उसे किस रास्ते में ले जाना है। अगर आप टाइम देंगे तो आपके बच्चे में तनाव बच्चियों में नहीं आएगा। दूसरा स्टेज आता है, महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं जब हमारी शादी होती है। शादी के बाद महिलाओं में उनका घर होता है, नए लोग मिलते हैं, उनको नया परिवार मिलता है, सब कुछ बदल जाता है उनका, और फिर उनका नए वातावरण में ढलना उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी महिलाएं तनाव का सामना कर रही हैं। और उनका तनाव क्या होता है, फिर वो एंजाइटी में चला जाता है, एंजाइटी के बाद डिप्रेशन में जा रहा है। अगर तनाव ठीक है, तनाव हम मैनेज कर ले रहे हैं, अगर वो एंजाइटी में चला गया तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है, उनका जीवन का दिनचर्या होता है डिस्टर्ब होने लगता है, उसकी वजह से हमारे आसपास का भी वातावरण, परिवार का भी वातावरण बिगड़ने लगता है। तो हमें सिर्फ यहीं पर ध्यान देना है कि कोई भी महिलाएँ हमारी तनाव के वजह से एंजाइटी में ना जाए, एंजाइटी की वजह से डिप्रेशन में ना जाए। अगर वो एंजाइटी और डिप्रेशन के दहलीज पर पैर रख ली, अच्छे से एक खुशमय जीवन जीने में काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो हम आप सबको आज यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारे मन में बार बार निगेटिव विचार आना, कोई भी विचार है 2 से 3 महीने तक लगातार रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से हमारा कहीं मन नहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है मेरा, किसी कहीं भी खुशियाँ नहीं दिख रही हैं, हर जगह हमें उदासी दिख रही है, तो तत्काल आपको हमारे यहाँ हर जिले में एक सेंटर मन कक्ष बना हुआ है। आपके पास एक मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से जूझ रहे महिलाओं के लिए टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या फिर 1800891 4416 पर आप 24 घंटे फोन कर सकते हैं, वो निशुल्क सुविधा आपको रहेगी। आपको कोई भी चार्ज इस पे नहीं लगेगा, आपकी जो भी समस्याएं हैं आप खुल के उनसे बोल सकते हैं। और जब आप मेनोपॉज में पहुंचते हो, वो 99% महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है उस टाइम पे, लगभग हर लेडी को मानसिक परेशानियों से उलझना पड़ता है। तो हम सब महिलाओं को यही संदेश देना चाहेंगे, जब आपके ये हार्मोन चेंज होते हैं, आपको गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, अपनी फैमिली के ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आना, किसी से बात ना करना, कहीं मन ना लगना, 24 घंटे सिर में दर्द होना, या फिर आपको ऐसा फील होना कि मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, आप डॉक्टर से मिल रहे हैं, कोई भी जाँच हो रही है, जाँच में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इग्नोर नहीं करना है आपको कि आपको कोई समस्या नहीं है, आपको शारीरिक समस्या कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपको वो आपकी मानसिक समस्या की ओर इशारा कर रहा है, उस दहलीज पे आप जा रहे हैं, उस दहलीज का रास्ता जैसे ही आपको दिखे आपको तत्काल हमारे मानसिक स्वास्थ्य सेंटरों में आना है और अपनी समस्या बताना है, और वहाँ पे आपका 100% समाधान मिलेगा। कोई दवाई नहीं है इसमें, आपको टेंशन नहीं लेना है कि हम पागल हो गए हैं, हमारे यहाँ एक ये विचार बना हुआ है कि अगर हम मानसिक डॉक्टरों के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, परामर्शदाता के पास जा रहे हैं तो हम पागल हैं, इस धारणा को हमें दूर रखना पड़ेगा। जैसे शारीरिक समस्या है, आपको बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम हो गया, ऐसे ही मानसिक समस्याओं की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिसको हम सिर्फ एक या दो वार्तालाप से उससे हम दूर हो सकते हैं। हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, हमें समझना है, हमें खुद के लिए समझना है, हमारे अगल बगल जितनी महिलाएं हैं, आपके घर में महिलाएं हैं, आपके पड़ोस में महिलाएं हैं, आपके रिश्तेदार में महिलाएं हैं, आपको अगर समझ में आता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देना है कि ये समस्या हो सकता है कि आपको मानसिक समस्याएँ साथ आ रही हैं, इसलिए आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं।
1: बहनों, निश्चित ही आपको डॉक्टर अनु मिश्रा से हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो बहनों, सचेत हो जाइए और अपना पूरा पूरा ख्याल रखिए, और एक प्यारा सा गीत भी सुन लीजिए। गीत फिल्म अनुपमा का है और गायक हैं लता मंगेशकर।

बहनों, आज का दौर जहां महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं, चाहे वो हवाओं में उड़ने का क्षेत्र हो या पर्वत पर चढ़ने का, चांद की ऊंचाइयों को पा लेने का हो, हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है। आज हम बात करते हैं कृषि का क्षेत्र, तो आज कई स्त्रियां एक सफल किसान के रूप में अपना लोहा मनवा रही हैं। गौर करें कि भारतीय कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 40% है और ग्रामीण स्तर में लगभग 80% महिलाएं कृषि जैसी गतिविधियों में लगी हुई हैं। महिलाओं में श्रम की अधिकता देखी गई है। बुवाई, निराई, फसल की कटाई और अनाज भंडारण जैसे श्रम प्रधान कार्यों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय देती हैं। पशुपालन और डेयरी कार्यों में भी पशुओं की देखभाल, चारा संग्रहण, दूध निकालना और पशु प्रबंधन जैसे कार्यों में महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है और ग्रामीण आय का मुख्य साधन भी यही है। बहनों, हमारे देश में कई ऐसी किसान महिला हैं जिनका नाम हमेशा लिया जाता है, जैसे राजकुमारी देवी, बीना देवी।

भावना नीलकंठ, गुरविंदर कौर, लीना शर्मा और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है। वे न केवल अपने घर परिवार की देखभाल करती हैं, बल्कि अपने व अपने परिवार के लिए बराबरी से कमाई भी करती हैं। बहनों, एक समर्पित और महत्वाकांक्षी महिला से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं। चलिए एक गीत और सुनते हैं। फिल्म है दो कलियां, गायक मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।

बहनों अब कुछ चटपटा बनाते हैं। नवरात्रि आ गई है बहनों, कल से शक्तिदात्री माँ दुर्गा की नवरात्रि का प्रारंभ है और हमारी कई बहनें पूजा आराधना के साथ साथ व्रत उपवास भी करती हैं। कई बहनें तो पूरे 9 दिन का उपवास रखती हैं। ऐसे में दिन भर व्रत करने के बाद शाम को कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है और कई बार ज्यादा तेल घी की चीजें खाने से हमारी सेहत में नुकसान होता है। तो चलिए आज हम आपको कम तेल में पकी सिंघाड़े के आटा की और आलू की टिक्की बनाना बताते हैं। सामग्री चाहिए बहनों, सिंघाड़े का आटा, उबला हुआ आलू, जीरा साबुत, सेंधा नमक, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चटनी के लिए टमाटर। अब यदि सिंघाड़ा का आटा आपका 1 पाव है तो उसमें 1 पाव उबला हुआ आलू मैश कर लीजिए और सभी मसाले मिला दीजिए। तवे में थोड़ा सा घी डालकर तैयार मिश्रण की छोटी छोटी टिक्कियां बनाकर तवे में ढककर पका लीजिए। कुरकुरी हो जाने तक पकाइए और टमाटर की चटनी के साथ सिंघाड़े की टिक्की का स्वाद लीजिए। साथ में ये गीत भी सुनिए। फिल्म है हम है राही प्यार के, गायक है अलका याज्ञिक और साथी।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

संगीत आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति है। लोक संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं बसंती सिंह। इनके स्वर में सबसे पहले सुनते हैं ये नचनहाई गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं बसंती सिंह। इनके स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये विकास गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं बसंती सिंह। इनके स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये भगत गीत। आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति है। सुगम संगीत में हमारी आज की कलाकार हैं ज्योत्सना दुबे। इनके स्वर में आप सुनेंगे ये भजन।

सुगम संगीत में हमारी आज की कलाकार हैं ज्योत्सना दुबे। इनके स्वर में अब आप सुनेंगे ये गीत जिसे लिखा है क्षितिज आलोक ने।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत सुनेंगे सुनीति चौहान की आवाज़ में फिल्म द डर्टी पिक्चर से। गीतकार हैं रजत अरोड़ा, संगीतकार हैं विशाल शेखर।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। बिना नाम लिए उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी पर भी तंज कसा। श्री चौहान ने कहा कि एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष निराश और हताश है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए

0: सड़कों पर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को भी कमजोर कर रहा है।
1: विपक्ष मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बैठाएं और विरोध प्रदर्शन के लिए राजधानी की तरफ आ रहे सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाएं। ये प्रस्तावित प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए किया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों से बिना अनुमति के दिल्ली में घुसने की सीजेपी समर्थकों की कथित कोशिशों को देखते हुए तत्काल एहतियाती कार्रवाई पर जोर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे शांति और व्यवस्था बिगड़ने का भी खतरा हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने से जुड़े प्रकरण में वर्ष 2019-20 के बीच की गई नियुक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार न्यायालय के इस निर्णय का विधिक परीक्षण कर आगामी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। डॉ. यादव ने एक्स पर कहा कि माननीय न्यायालय ने 13% अतिरिक्त नियुक्तियों को संरक्षित करते हुए आगामी भर्ती में समायोजित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से लागू 27% आरक्षण का नोटिफिकेशन लचर और त्रुटिपूर्ण था, ये माननीय न्यायालय के इस निर्णय से सिद्ध हो गया है। सर्वपित्र अमावस्या पर आज प्रदेश की पवित्र क्षिप्रा और नर्मदा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में गजछाया योग सहित तीन विशेष संयोगों के बीच श्रद्धालुओं ने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पूजन किया। सिद्धवट घाट पर रात से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर में शनिश्चर्य अमावस्या के चलते आधी रात से दर्शन के लिए कतारें लग गई थी। नर्मदापुरम के सेठानी घाट सहित नर्मदा के दूसरे घाटों पर भी शुक्रवार रात से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। उधर सतना के चित्रकूट में आज पितृ अमावस्या पर सुबह से ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और श्रद्धालु मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामतगिरि पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। खंडवा के ओंकारेश्वर में भी करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में डुबकी लगाई। मुरैना में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी शनिश्चर्य अमावस्या पर शनि मंदिर में अभिषेक किया। बात मौसम की करते हैं। मानसून की विदाई के बाद भी मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन के असर से आज रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में धूप खिली रहेगी। बाकी अगले 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शोभापुर कृषि उपज मंडी परिसर में एक शिविर आयोजित किया गया, जहां 137 आवेदनों में से 118 का मौके पर निराकरण किया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आज जबलपुर में सेवा के रंग माना रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और शिवपुरी जिले में डाक संभाग द्वारा उपभोक्ताओं की लंबित शिकायतों और समस्याओं के निराकरण के लिए 12 अक्टूबर को डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा

0: सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
4: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको

0: चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
4: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
5: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
1: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन

0: में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
2: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्यौहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहला गीत सुनेंगे फिल्म तोहफा से। स्वर आशा भोसले किशोर कुमार के हैं, गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं बप्पी लहरी। फरमाइश हमें आई है सुलाई माता नगर चालूस गांव से। श्रोता हैं पांडुरंग सूर्यवंशी, रेखा सूर्यवंशी, नीरज ठाकुर, आरती ठाकुर, कुमारी नव्या। इनके साथ ही हैं प्रियदर्शनी संघ से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र, रविंद्र सोनार।

सनी मुन्ना रथ चौक ज़िला जलगांव से हैं। इनके साथ घंटाघर चौक से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, खंडवा से गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को शाम 7:30 बजे से रात 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए

है खरीफ फसलों में कटाई उपरांत कार्य एवं फसल अवशेष प्रबंधन। विषय है खरीफ फसलों में कटाई उपरांत कार्य एवं फसल अवशेष प्रबंधन। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को शाम 7:30 बजे से रात 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को शाम 7:30 बजे से रात 8 बजे के मध्य। फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड 0755 है। सूचना समाप्त हुई।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत सुनेंगे अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी, गीत लिखा समीर ने, संगीतकार है नदीम श्रवण। फरमाइश हमें आई है जिला बुरहानपुर ग्राम मोहत से, श्रोता हैं मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर, रीना, रोजुबाई, सनी, परू। और इन्हीं के साथ अगले श्रोता सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत सुनेंगे फिल्म तीसरी मंजिल से। गीत को सुरों से सजाया आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार मजरू, संगीतकार आरडी बर्मन। और फरमाइश हमें आई है मोर टका जिला खंडवा से। श्रोता है जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। अगले श्रोता सनावद मध्य प्रदेश से हैं, दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान, योगेश। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

हर दिल जो प्यार करेगा, इस फिल्म से अगला गीत सुनेंगे पिंकी, प्रीति और प्रशांत की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अनु मलिक। फरमाइश हमें आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। अगले श्रोता धामड़ी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अंध डेरे। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे फिल्म कलंक से। गीत को आवाज़ दी श्रेया घोषाल और वैशाली माणे ने। गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीतकार हैं प्रीतम। फरमाइश हमें आई है सिंहपुर बड़ा से। श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। अगली श्रोता पालदाना का इंदौर से, हसीना बी मंजूरी, अमीना मोहम्मद रफ़ी और बबलू मंसूरी। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बैठाएं और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी की तरफ आ रहे सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने को लेकर एहतियाती कदम उठाएं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। श्री चौहान ने कहा है कि एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है तो दूसरी तरफ विपक्ष निराश और हताश है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण पर उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में कहा है कि राज्य सरकार आगामी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति के प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सर्वपित्र अमावस्या पर आज प्रदेश की पवित्र नदियों शिप्रा और नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में श्रद्धालुओं ने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध और पूजन किया। मानसून की विदाई के बाद भी इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन के असर से आज रीवा मऊगंज सीधी और सिंगरौली में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम विवरण का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में शाम के ठीक 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी के रीवा केंद्र की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, 6:00, 6:45 पर और रात 8:45 पर। 5:40 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। विषय रहे

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम के 5 बजे सभा पुनः आरंभ होगी। तब तक के लिए हमारा प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति है। लोक संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं बसंती सिंह। इनके स्वर में सबसे पहले आप सुनेंगे नचनहाई गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान था। डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति है। सुगम संगीत में हमारी आज की कलाकार हैं ज्योत्सना दुबे। इनके स्वर में भजन और गीत आप सुनेंगे। सबसे पहला भजन सुनते हैं जिसे लिखा है कबीर ने।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान था। डीटीएच पर यह आकाशवाणी भोपाल है। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। फिल्म हीरो नंबर 1 से गीत सुनेंगे उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार आनंद मिलिंद।

चित्रपट संगीत में अगला गीत सुनेंगे फिल्म राजा से। गीत को सुरों से सजाया उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है समीर ने, संगीतकार है नदीम श्रवण।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत TTH पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की सहयोगी टीम CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया गठबंधन और CJP पर तंज कसते हुए कहा है कि एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है तो दूसरी तरफ विपक्ष निराश और हताश है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बैठाएं और CJP के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने OBC आरक्षण पर उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में कहा है कि राज्य सरकार आगामी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को अपनी बधाइयां दी हैं। मानसून की विदाई के बाद भी इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन के असर से आज रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बरहम में विश्व बॉल चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक सुनिश्चित कर इतिहास रचा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: DTH पर ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें आज आप सुनेंगे वरिष्ठ शायर डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी से महताब आलम की बातचीत।
2: आकाशवाणी के सभी दोस्तों को महताब आलम का आदाब। दोस्तों, आकाशवाणी के खास प्रोग्राम इनसे मिलिए में आज एक ऐसी शख्सियत को लेकर हाजिर हुए हैं जिस पर उर्दू अदब को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अदब को फख्र है। जब हम हिंदुस्तानी अदब की बात करते हैं तो उसकी तहरीरों में न सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि हिंदुस्तान की वो ज़बानें जो बोली और लिखी जा रही हैं उसमें उसकी तहरीरें दर्ज की जा रही हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उसके कलाम को एतबार हासिल है। अहले नज़र में उसकी तहरीरों के इस्तेनाद हासिल है। उसका नाम डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी है जिनके 7 शेरी मजमू अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं। इसके अलावा कुमार बारा बंकवी पर, डॉक्टर बशीर बद्र पर उनका जो काम है वो अहमियत का हामिल है। डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी साहब, आकाशवाणी के खास प्रोग्राम इनसे मिलिए में आपका इस्तकबाल।
3: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहताब साहब, बड़ी मेहरबानी। और आकाशवाणी का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद किया।
2: जी देखिए, आज आपने कहा कि याद किया, याद उन्हें ही किया जाता है जिनकी तहरीरों में इतना दम होता है कि अवाम उसको

0: ये है। तो खुमार साहब पर हमारा रिजर्वेशन ये था कि वो जो हमारी क्लासिकल गज़ल जिसके वो लोग वर्षादार थे जिगर मुरादाबादी के बाद, ये एक तरह से स्कूल ऑफ थॉट था उस वक्त के नौजवानों के आइडियल थे जिगर साहब। तो ये मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, ये खुमार बारा बंकवी, इस तरह के जितने लोग भी राज इलाहाबादी, ये सारे लोग उनको फना निज़ामी, ये जिगर साहब को ही फॉलो करते थे, उन्हीं को अपना मजाजी उस्ताद तसव्वुर करते थे। तो उनकी गज़ल में वही सब घूम फिर के वही अलामत, वही चीज़ें सब थीं उस वक्त की नई शायरी, जिसको आप 64 के बाद जिसने वो मौजूआत गज़ल में जिनका गज़ल का से कोई वास्ता नहीं, घरेलू मामलात का जिक्र होना कि संकट जाते हैं बारिश की जहां धार गिरे, इस तरह के मिसरे जैसे शकीब ने लिखे या सलीम अहमद इम्पॉर्टेंट शायर हैं गज़ल के, तो ये जो शायरी कर रहे थे उसका इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं था।
1: नहीं, आपने जो अभी जिक्र किया है, आप असरी आगही की बात कर रहे हैं, असरी मौजूआत की बात कर रहे हैं, असरी एहसास की बात कर रहे हैं, गज़ल में नई इमेजिनरी आज भी हो रही है, तो आप जो उसको देख रहे हैं 45 साल पीछे को जब देख रहे हैं और नई गज़ल को जब देख रहे हैं, तो उसमें क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं?
0: बहुत फ़र्क है। जो मौजूआत आज की तारीख में गज़ल में डिस्कस हो रहे हैं, ये 50 साल पहले नहीं होते थे। 50 साल पहले भी ये तफरीक तो थी, रसाइल के शोरा अलग और मुशायरे के अलग। मुशायरा जिसको एक्नॉलेज करता था उसी का कलाम सुनता था, मुशायरे में हर कोई कलाम। आप देखिए कि हमारे आज़मगढ़ के बहुत अहम शायर थे फ़ज़ा इब्न फैज़ी, दुनिया का कोई उर्दू मैगज़ीन ऐसा नहीं जहाँ उनका कलाम नहीं छपता, मगर वो मुशायरे के आदमी नहीं थे, उनका मुशायरे से कोई ताल्लुक नहीं। तो एक दुनिया जो है वो भूल जाती है, पढ़ने लिखने वाले तो याद रखते हैं मगर अवामी मकबूलियत जिसको कहना चाहिए वो उनके हिस्से में नहीं है।
1: जिस तरह से वो मकबूलियत को कि डॉक्टर बशीर बद्र को जब हम पढ़ते हैं तो ये पहले रिसालों में आए, उसके बाद जो है मुशायरे के स्टेज पर आए, लेकिन बड़ी दमदारी के साथ।
0: बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, उनको बनाने में ये जहाँ आप बैठे हुए हैं इसी इदारे का हाथ है
1: जी, आकाशवाणी
0: का। आकाशवाणी का उस जमाने में आकाशवाणी नहीं, ऑल इंडिया रेडियो था। ऑल इंडिया रेडियो साल में एक मुशायरा करता था, वो उस साल लखनऊ में हुआ मुशायरा, और दो गज़लें पढ़ने की सिर्फ इजाज़त थी हर आदमी को, और उसकी निज़ामत की थी सागर निज़ामी ने। सागर निज़ामी हमारे यहाँ बड़े अहम आदमी थे और पद्म विभूषण थे वो, तो उन्होंने निज़ामत की थी। और उस साल चार नए शायर शामिल हुए थे, उसमें एक बशीर बद्र थे, और वो जब मुशायरे ब्रॉडकास्ट हुआ तो रातों रात वो स्टार हो गए। वो गज़ल उन्होंने पढ़ी थी, पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है, एक गज़ल ये, और एक गज़ल वो पढ़ी थी, आंखें आंसू भरी पलके भोजल गनी, जैसे झीलें भी हों नर्म साए भी हों, वो तो कहिए उन्हें कुछ हंसी आ गई, बच गए आज हम डूबते डूबते, ये दो गज़लें पढ़ी थी। और फिर पब्लिक ने बड़ा फरमाइश की तो उनको माजरत करना पड़ी कि आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो में पहले से तय होता है कि कौन सा कलाम पढ़ा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आकाशवाणी जो है हमेशा से ये ऐसा मजबूत जरिया रहा है शोहरत के लिए, जिसको ऑल इंडिया रेडियो ने सरबुलंद किया, वो फिर वो सरबुलंद ही रहा जी। मैं हमेशा आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो, तो आज की तारीख में आकाशवाणी जो है वो अब भी बहुत मुस्तहकम और बहुत मजबूत इदारा है।
1: तहकम मजबूत इदारा इसलिए कि आकाशवाणी ने अपनी जड़ों को अब तक रिश्ता उससे बरकरार रखा।
0: बेशक बेशक बेशक।
1: और फिर हम जड़ों की बात करते हैं, जिस तरह अभी आपने खुमार साहब का जिक्र किया, खुमार साहब पर आपने एमए में डिसर्टेशन लिखा, पीएचडी में आपका मौजू का इंतखाब दूसरा हो चुका था, फिर आप जब भोपाल आते हैं तो भोपाल में बहुत सारे शायर थे, तो डॉक्टर बशीर बद्र की फिक्र फन पर आपने पीएचडी।
0: नई नज़्म के मौजूआत व असालीब पर लखनऊ में काम कर रहा था प्रोफेसर अनीस अशफाक साहब,
1: एक बड़ा नाम जी,
0: अंडर में, मगर वो बेरोज़गारी भोपाल लाई और फिर हम भोपाल गए हो गए। तो यहाँ मैंने 94 में नए सिरे से बशीर बद्र मेरे पसंदीदा शायर थे, और उनसे मिलने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी तालीमी सलाहियतों के बारे में पता चला, तो दिल हुआ कि इन पर काम करना चाहिए।
1: हालांकि बहुत सारे लोग पहले से ही बशीर बद्र के पर पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को लिख कर दिया था कि अंजुम बाराबंकी के खिलाफ पीएचडी नहीं करेगा।
0: बशीर बद्र साहब बेसिकली बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, अल्लाह उनको रहमत करे, چونکہ وہ ایک طرح

0: से फिराक गोरखपुरी की परवरदा थे
1: जी,
0: तो अंग्रेजी वंग्रेजी भी उनकी अच्छी खासी अच्छी थी। तो वो कोई आदमी भी ख्वाहिश का इजहार करता था कि हम आप पर काम करना चाहते हैं, तो वो एक शेर सुनाते थे। वो शेर ये होता था कि नारियल के दरख्तों की पागल हवा खुल गए बादबां, लौट जा सांवली सरजमी पर, मैं अगले बरस फूल खिलने से पहले ही आ जाऊँगा। तो वो सिर्फ इस शेर के मतलब पूछते थे अगले से, तो वो जाहिर है कि मामूली सलाहियत वाला इस शेर का मतलब नहीं बता सकता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बड़ी सलाहियतों वाला आदमी था।
1: देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि बशीर बद जहाँ दीदा शख्स थे, मगर यहाँ पर आकाशवाणी के जो हमारे श्रोता हैं, जो सुनने वाले, उनको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बशीर बद्र वो फनकार थे कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए गए एमए में, तो उससे पहले उनकी गज़लें सिलेबस का निसाब का हिस्सा बन चुकी थी। और ऐसे फनकार पर पीएचडी करके नई जहाद को तलाश करना आसान नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर अंजुम अरबी साहब, जब हम बात कर रहे हैं, जो वहाँ से शुरू की कि जब आपने कदम रखा आसमान ने गज़ल पे, जो है बहुत सारे आफ्ताब महताब चमक मर रहे थे, तो ऐसे में आपको अपना असलूब, अपना लहजा बनाने में और इनके बीच एतबार हासिल करने में, आपकी शेरी मजमुआ भी है, तो कितना वक्त लगा?
0: एक बात की मैं हमेशा अपने हक में समझता हूँ कि ऊपर वाले का फैसला है, कि हमारे जो पेशरो लोग थे, जो असातज़ा थे, पहले दिन से हमारी किस्मत में ये ऊपर वाले ने शायद लिख दिया था कि उन लोगों ने हमको शायर मान लिया।
1: जी,
0: आम तौर से होता है कि 20-25 साल की रियाजत के बाद भी आप एक्नॉलेज नहीं किए जाते हैं कि आपको कोई फ़नकार मान ले।
1: जी,
0: वो लोग ऐसे थे कि वो बड़ी मशाखियों के बाद आए थे डाइस पर, और वो किसी अपने जूनियर को, अपने बहुत छोटे को ये जान जाएं कि ये शायर है, तो उसकी बड़ी कद्र करते थे। और उसका सबब यह था कि उस ज़माने में जो ये अहम शोरा होते थे, ये जब सफ़र करते थे, एक दूसरे को ख़बर करते थे कि मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ, आप इस मुशायरे में मदू हूँ, तो आप इसी गाड़ी से आइए, तो साथ रहेगा सफ़र में। तो अब सफ़र में बातें हो रही हैं, और फिर उन्होंने एक मिसरा पकड़ा दिया गया, अच्छा बहुत शेर कह रहे हो आजकल, लो इस पे दो शेर कहो। अब आपने शेर कह के उनको सुना दिया उन्हीं के सामने, तो अब आप पर ये तो कोई इल्ज़ाम लगा नहीं सकता कि भाई आप शायर नहीं हैं, उनके सामने तो और भी नहीं, चूँकि वो इम्तहान उन्होंने लिया है। तो इस तरह उनकी नज़र में एक कद्र थी।
1: यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए अपनी गुफ्तगु को रुख मोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जब हम गुफ्तगु कर रहे हैं और आकाशवाणी का प्रोग्राम ही है कि इनसे मिलिए, तो इनसे मिलिए, मैं अपने श्रोताओं के बता दूं कि डॉक्टर अंजुम बाराबंकी वो फ़नकार हैं जिनकी गज़लों को एतबार भी हासिल है, इस्तेनाद भी हासिल है, और उन पर कई जगह से, चाहे हम रिसाला इंसानियत की बात करें तो उसने खसूसी नंबर अपना निकाला, और फिर हिंदुस्तान के एक मशहूर रिसाला जिसे सहमाई आलम इंतसाब हम कहते हैं, उसने अपना एक ख़ास शुमारा निकाला, जो तकरीबन जो 550 सफात पर जो मुश्तमिल है, उसको पढ़ने से ताल्लुक़ रखता, और फिर हर्फ मोतबर एक किताब इनकी मंजरियाम पर आई है, और हर्फ मोतबर को जब हम पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उर्दू दुनिया के जो अजीम फ़नकार हैं, उन्होंने डॉक्टर अंजुम बाराबंकी की फ़िक्र फ़न का, उनकी शेरी सलाहियतों का जिस तरह से जायज़ा लिया है, वो अहमियत का हामिल है। और मुझे खुशी है कि आकाशवाणी ने इनसे मिलिए प्रोग्राम में उस फ़नकार का जो इंतखाब किया है जो हर्फ मोतबर रखता है अपने बीच में। तो हर्फ मोतबर इतना अहम है, और जब ये किताब मंजरियाम पर आई तो क्या कुछ लोगों ने इस पर जो है कुछ उंगली उठाने की कोशिश की कि हर्फ मोतबर कैसे नाम दिया गया?
0: नहीं, एक आध लोगों ने इस पर सवाल मुझे फ़ोन करके कहा भी कि हर्फ मोतबर से क्या मुराद है, आपने जो कुछ लिखा है वो सब मोतबर है। तो मैंने कहा नहीं, आपने उसके मतलब गलत निकाल लिया, कि हम हर्फ मोतबर की तायीद में खड़े हैं, हमारे पर जिन लोगों ने लिखा है वो लोग चूँकि हर्फ व लफ्ज़ के माहिर हैं, पारख हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें परखी हैं, उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये निशानदही की है कि मुस्तकबिल में ये आदमी, इसके यहाँ ऐसी स्पार्किंग है, ऐसी चमक है कि ये हर्फ़ मोतबर के ज़ुमरे में
1: जी शामिल हो
0: सकता है। ये एक तरह से सनद है उसके टाइटल पर, उसके नाम पर से ऊपर का इतलाक नहीं होता। उसमें जिन लोगों ने अपने तौर पर हमारे शेरी सरोकार पर लिखा है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि कुछ अशार ऐसे हैं जो आम रविश से हट के हैं, वो चाहे ज़बान व बयान की सतह हो या मौजू की सतह हो, उस पर अलाहदा हैं। इसलिए मुस्तकबिल में ये कहा जा सकता है, पेशिनगोई की जा सकती है कि ये हर्फ मोतबर के زمرے میں ہوں گے.
1: نہیں اس میں جو ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس کی وضاحت کی ہے, کیونکہ حرف معتبر کو میں نے پڑھا ہے کہ ایک لفظ کو اور آپ کے جو شعری مجموعے ساتھ آئے ہیں وہ بھی میری نظر سے گزرے ہیں. حرف معتبر اتنی آسانی سے نہیں ملتا, اور اعتبار جو ہے کسی

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 9।

0: कॉलेज की कैंटीन का दृश्य। लड़के लड़कियां आ जा रहे हैं, कोई बैरे को आवाज दे रहा है तो कोई उससे नाश्ता मांग रहा है। कैंटीन के रेडियो से समाचार प्रसारित हो रहे हैं।
1: गांधी जी के विदेशी माल के बहिष्कार के आह्वान का देश के कई हिस्सों में गहरा असर दिखाई दे रहा है। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं। कानपुर में विदेशी कपड़ों की होली जलाने के लिए जमा भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज भी किया गया है। खासकर युवाओं में इस आंदोलन के बढ़ते असर से प्रशासन बहुत चिंतित है। और
0: तभी आनंद ने कैंटीन में प्रवेश किया।
2: अरे आनंद, आप अकेले? विशंभर को कहाँ छोड़ा है?
0: आनंद ने गद्देदार कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाया।
3: रूपमणि, तुम्हें मालूम है आज विशंभर ने कैसी हिमाकत की?
2: क्या?
3: अरे इम्तिहान करीब हैं और आप आज वॉलंटियर बने बैठे हैं।
2: अरे
3: कहीं पकड़े गए तो इम्तिहान से हाथ धोएंगे। मेरा ख्याल तो है कि वजीफा भी बंद हो जाएगा।
0: सामने दूसरी बेंच पर रूपमणि बैठी एक अखबार पढ़ रही थी। उसकी आंखें अखबार की तरफ थीं, पर कान आनंद की तरफ।

0: लगे हुए थे।
1: यह तो बुरा हुआ आनंद, तुमने समझाया नहीं।
2: जब कोई अपने को दूसरा गांधी समझने लगे तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता है, वो तो उल्टे मुझे ही समझाने लगता है।
0: रूपमणि ने अखबार समेट कर रखा और बाल सवारे।
1: तुमने मुझे भी नहीं बताया आनंद, शायद मैं उसे रोक सकती।
2: तो अभी क्या हुआ है रूपमणि? अभी तो पार्टी ऑफिस में ही होगा, जाकर रोक लो, जाओ।
0: आनंद और विशंभर दोनों ही यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। आनंद के हिस्से में लक्ष्मी भी पड़ी थी और सरस्वती भी। विशंभर फूटी तकदीर लेकर आया था। प्रोफेसरों ने दया करके एक छोटा सा वजीफा दे दिया था, बस यही उसकी जीविका थी। रूपमणि भी साल भर पहले उन्हीं की समकक्ष थी, पर इस साल उसने कॉलेज छोड़ दिया था, स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था। दोनों युवक कभी कभी उससे मिलने आते रहते थे। आनंद आता था उसका हृदय लेने के लिए, विशंभर आता था यूं ही, जी पढ़ने में नहीं लगता या घबराता तो उसके पास आ बैठता था। शायद रूपमणि से विपत्ति कथा कहकर उसका चित कुछ शांत हो जाता था। आनंद के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। आनंद के पास उसके लिए सहानुभूति का एक भी शब्द न था। वह उसे फटकारता था, जलील करता था और बेवकूफ बनाता था। विशंभर में उससे बहस करने की सामर्थ्य न थी। सूर्य के सामने दीपक की हस्ती ही क्या। आनंद का उस पर मानसिक आधिपत्य था। जीवन में पहली बार उसने उस आधिपत्य को अस्वीकार किया था और उसी की शिकायत लेकर आनंद रूपमणि के पास आया था। महीनों विशंभर ने आनंद के तर्क पर अपने भीतर के आग्रह को ढाला, पर तर्क से परास्त होकर भी उसका हृदय विद्रोह करता रहा। बेशक उसका यह साल खराब हो जाएगा, संभव है छात्र जीवन ही का अंत हो जाए, फिर इन 14-15 वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ना खुदा ही मिलेगा, ना सनम का विसाल ही नसीब होगा। आप में कूदने से क्या फायदा, यूनिवर्सिटी में रहकर भी तो बहुत कुछ देश का काम किया जा सकता है। आनंद महीने में कुछ ना कुछ चंदा जमा कर देता है, दूसरे छात्रों से स्वदेशी की प्रतिज्ञा भी करा ही लेता है। विशंभर को भी आनंद ने यही सलाह दी। इस तर्क ने उसकी बुद्धि को तो जीत लिया, पर उसके मन को नहीं जीत सका। आज जब आनंद कॉलेज गया तो विशंभर ने स्वराज्य भवन की राह ली। आनंद कॉलेज से लौटा तो उसे अपनी मेज पर विशंभर का पत्र मिला। लिखा था,
3: प्रिय आनंद, मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूं वो मेरे लिए हितकर नहीं है, पर न जाने कौन सी शक्ति मुझे खींचे जा रही है। मैं जाना नहीं चाहता पर जा रहा हूं, उसी तरह जैसे आदमी मरना नहीं चाहता पर मरता है, रोना नहीं चाहता पर रोता है। जब सभी लोग जिन पर हमारी भक्ति है ओखली में अपना सिर डाल चुके हैं तो मेरे लिए भी अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं अब और अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। ये इज्जत का सवाल है और इज्जत किसी तरह का समझौता नहीं कर सकती। तुम्हारा विशंभर।
0: खत पढ़कर आनंद के जी में आया कि विशंभर को समझाकर लौटा लाए, पर उसकी हिमाकत पर गुस्सा आया और उसी तैश में वो रूपमणि के पास जा पहुंचा।
2: अच्छा ये बताओ रूपमणि, क्या मैं देशभक्त नहीं हूं?
1: क्या पता।
2: क्या मतलब, तुम्हें शक है?
1: नहीं नहीं, कोई शक नहीं है। हो तुम देशभक्त पर?
2: नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं पार्टी विरोधी हूँ, देश से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है।
1: नहीं नहीं, ऐसा क्यों लगेगा भला, तुम पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करते हो, विशंभर से ज्यादा चंदा। देश की आजादी, स्वदेशी के बारे में तुम्हारे सद्विचार मुझे पता है, गांधी जी के प्रति तुम्हारे मन में काफी आदर है।
2: हाँ फिर?
1: फिर क्या? कुछ नहीं।
2: देखो रूपमणि, क्या पढ़ाई छोड़कर सड़क पर आ जाना ही देशभक्ति है? अरे पढ़ते हुए भी हम पार्टी का काम कर सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं। मैं कर तो रहा हूं। जो लोग हमारे आदर्श हैं क्या वे अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं हैं? महात्मा गांधी आज स्वदेशी का नारा दे रहे हैं, पर क्या वे खुद 40 साल की उम्र तक विदेशी कपड़े धारण नहीं करते थे? अरे वे तो विदेश में बैरिस्ट्री कर रहे थे।
1: वाह वाह, तुम तो अपनी तुलना गांधी जी से करने लगे, ये तो अति हो गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
2: नहीं नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि देश प्रेम और पढ़ाई में कोई विरोध नहीं है।
1: हाँ,

0: शायद तुम ठीक कहते हो।
1: यही बात मैं विशंभर को समझाता रहा हूं और वो मानता भी रहा है, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि
0: अब मैं मना लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम तो चलोगे नहीं।
2: अगर रूपमणि उसकी खुशामद करके कहती जाकर उसे लौटा लाओ तो शायद वो चला जाता, पर उसका ये कहना कि मैं रोक लेती उसके लिए असह्य था। उसके जवाब में रोष था, रुखाई थी और शायद कुछ हसद भी था। रूपमणि ने गर्व से उसकी ओर देखा।
0: अच्छी बात है, तो फिर मैं चलती हूँ। तुम क्यों नहीं चलते?
2: फिर वही गलती। अगर रुक्मणी उसकी खुशामद करते हुए कहती तो आनंद जरूर उसके साथ चलता, पर उसके प्रश्न में पहले ही यह भाव था कि आनंद जाना नहीं चाहता। अभिमानी आनंद इस तरह नहीं जा सकता।
1: मेरा जाना व्यर्थ है, तुम्हारी बातों का ज्यादा असर होगा। मेरी मेज पर वो खत छोड़कर गया था, और जब वो आत्मा, कर्तव्य और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है और अपने को भी कोई ऊंचे दर्जे का आदमी समझ रहा है, तो उस पर मेरा कोई असर ना होगा।
2: उसने जेब से पत्र निकालकर रूपमणि के सामने रख दिया। इन शब्दों में जो संकेत और व्यंग था, उसने एक क्षण के लिए रूपमणि को उसकी तरफ देखने ना दिया। आनंद के इस निर्दय प्रहार ने उसे आहत सा कर दिया था, पर एक ही क्षण में विद्रोह की एक चिंगारी उसके अंदर जाग उठी। उसने स्वच्छंद भाव से पत्र को पढ़ा सिर्फ आनंद के प्रहार का जवाब देने के लिए, पर पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा तेज से कठोर हो गया, गर्दन तन गई, आंखों में उत्सर्ग की लाली आ गई। उसने मेज पर पत्र रख दिया।
0: नहीं, अब मेरा जाना भी व्यर्थ है।
1: हाँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था, इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार है, उस पर किसी के समझाने का कोई असर ना होगा। जब साल भर जेल में चक्की पीस लेंगे और वहां से तपेदिक लेकर निकलेंगे या पुलिस के डंडों से सिर और हाथ पांव तोड़वा लेंगे ना, तो बुद्धि ठिकाने लगेगी। अभी तो जय जयकार और तालियों के स्वप्न देख रहे हैं।
2: रूपमणि सामने आकाश की ओर देख रही थी। दुर्बल, सूखा और नग्न शरीर, घुटनों तक धोती, चिकना सिर, पोपला मुंह, तप, त्याग और सत्य की सजीव मूर्ति।
1: अगर मुझे मालूम हो कि मेरे रक्त से देश का उद्धार हो जाएगा तो मैं आज ही उसे देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे जैसे 150 आदमी निकल ही आए तो क्या होगा? प्राण देने के सिवा तो और कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दिखता।
2: रूपमणि अब भी वही छाया चित्र देख रही थी, वही छाया मुस्कुरा रही थी, सरल मनोहर मुस्कान जिसने विश्व को जीत लिया है।
1: जिन महाशयों को परीक्षा का भूत सताया करता है उन्हें देश का उद्धार करने की सूझी है। पूछिए, आप अपना उद्धार तो कर नहीं सकते, देश का क्या उद्धार कीजिएगा? अरे, इधर फेल होने से उधर के डंडे फिर भी हल्के हैं।
2: रूपमणि की आंखें आकाश की ओर थीं, छायाचित्र कठोर हो गया था।

0: आज बड़ी मजेदार फिल्म है, चलती हो? पहले शो में चलते हैं?
1: रूपमणि जैसे आकाश से नीचे उतर आई हो।
2: नहीं नहीं मेरा जी नहीं चाहता।
1: आनंद ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया।
0: तबीयत तो अच्छी है।
1: रूपमणि ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा नहीं की।
2: हाँ तबीयत को क्या हुआ है?
0: तो चलती क्यों नहीं?
2: नहीं आज जी नहीं चाहता।
0: तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा।
2: बहुत ही उत्तम है, टिकट के रुपये पार्टी को दे दो।
0: ये तो टेढ़ी शर्त है लेकिन मंजूर।
2: हाँ लेकिन कल रसीद मुझे दिखा देना।
0: तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास भी नहीं है?
1: आनंद हॉस्टल चला। जरा देर बाद रूपमणि स्वराज्य भवन की ओर चली।

0: विलायती कपड़ों के गोदामों को पिकेट करने जा रहा था। विशंभर दल में ना था। दूसरा दल शराब की दुकानों पर जाने को तैयार था। विशंभर इसमें भी नहीं था। स्वराज्य भवन में गहमा गहमी थी। मंत्री दलों की व्यवस्था देख रहे थे।
1: देखिए, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। दलों के नायक अपने अपने स्वयं सेवकों को कतार में खड़ा करें, और सुनिए, कपड़ों वाला दल सीधे क्लॉथ मार्केट की तरफ जाएगा। शराब की दुकानों वाला दल छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर शराब की हर दुकान में जाएगा। और देखिए, एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, हिंसा होने पर भी ध्यान रहे, चोट खा लें मगर अपना काम जारी रखें, किसी भी विवाद में ना पड़े। ध्यान से सुनिए और समझिए, ऊंची आवाज में बोलना भी हिंसा है। मेरी बात का ध्यान रहे, हमें हर हाल में शांति बनाए रखनी है।
2: व्यवधान के लिए क्षमा करें मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि विशंभरनाथ कहाँ हैं?
1: अच्छा, वही जो कल भर्ती हुए हैं।
2: जी हाँ, जी हाँ, वही।
1: भाई बड़े दिलेर आदमी है, देहातों को तैयार करने का काम लिया है उन्होंने।
2: अच्छा,
1: स्टेशन पहुँच गए होंगे, 7 बजे की गाड़ी से जा रहे हैं वो।
2: तो बस अभी स्टेशन पर ही होंगे विशंभर।
0: घड़ी पर नजर डालकर सोचते हुए मंत्री जी ने कहा,
1: हाँ, अभी तो शायद स्टेशन पर मिल जाए आपको।
0: रूपमणि ने बाहर निकलकर साइकिल तेज की। स्टेशन पर पहुंची तो देखा विशंभर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। रूपमणि को देखते ही लपक कर उसके पास आया।
3: तुम यहाँ कैसे आई रूपमणि? आज आनंद से तुम्हारी मुलाकात हुई थी क्या?
2: ये तुमने क्या सूरत बना रखी है, क्या पाँव में जूते पहनना भी देशद्रोह है?
3: आनंद बाबू ने तुमसे कुछ कहा नहीं?
2: जी हाँ, कहा है। तुम्हें क्या सूझी विशंभर, 2 साल से कम के लिए नहीं जाओगे?
3: जब ये जानती हो तो क्या तुम्हारे पास मेरी हिम्मत बताने के लिए 2 शब्द नहीं है?
0: दुख के साथ मगर ऊपर से कठोर बनते हुए रूपमणि ने कहा,
2: तुम मुझे दुश्मन समझते हो या दोस्त?
3: तुम ऐसा प्रश्न क्यों करती हो रूपमणि? इसका जवाब मेरे मुंह से नहीं सुनकर भी क्या तुम समझ नहीं सकती?
2: तुम्हें कहती हूँ, तुम मत जाओ।
3: ये दोस्त की सलाह नहीं है रूपमणि, मुझे विश्वास है ये बात तुम हृदय से नहीं कह रही हो। मेरे प्राणों का क्या मूल्य है जरा ये सोचो। एमए होकर भी 100 रुपए की नौकरी, बहुत बड़ा तो 300-400 तक जाऊंगा, इसके बदले यहां क्या मिलेगा? जानती हो, संपूर्ण देश का स्वराज्य, इतने महान हेतु के लिए मर जाना भी उस जिंदगी से कहीं बढ़कर है। अब जाओ, गाड़ी आ रही है, आनंद बाबू से कहना मुझसे नाराज ना हो।
0: रूपमणि ने आज तक इस मंदबुद्धि युवक पर दया की थी, इस समय उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया। त्याग में हृदय को खींचने की जो शक्ति है, उसने रूपमणि को इतने वेग से खींचा कि परिस्थितियों का अंतर मिट गया। विशंभर में जितने दोष थे वे सब अलंकार बन बनकर चमक उठे। उसके हृदय की विशालता में वो किसी पक्षी की भांति उड़ उड़कर आश्रय खोजने लगे।
2: मुझे भी अपने साथ ले चल दो विशंभर।
0: विशंभर पर जैसे घड़ों का नशा चढ़ गया।
3: तुमको आनंद बाबू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
2: मैं आनंद बाबू के हाथों बिकी हुई नहीं हूँ।
3: आनंद तो तुम्हारे हाथों बिके हुए हैं।
0: रूपमणि ने विद्रोह भरी आंखों से उसकी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं। परिस्थितियां उसे इस समय बाधाओं सी मालूम हो रही थीं। वो भी विशंभर की भांति स्वच्छंद क्यों नहीं हुई? संपन्न माँ बाप की अकेली लड़की, भोग विलास में पली हुई, इस समय अपने को कैदी समझ रही थी। उसकी आत्मा उन बंधनों को तोड़ डालने के लिए जोर लगाने लगी थी। गाड़ी आ गई थी, मुसाफिर चढ़ने उतरने लगे थे।
2: तो तुम मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे विशंभर?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: लेकिन क्यों?
3: मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता।
2: क्या तुम समझते हो कि मैं इतनी विलास आसक्त हूँ कि देहात में नहीं रह सकती?
0: विशंभर लज्जित हो गया। ये भी एक कारण था पर उसने इनकार किया।
3: नहीं नहीं, ये बात नहीं है रूपमणि।
2: फिर क्या बात है? क्या यह भ्रम है कि पिताजी मुझे त्याग देंगे, अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे?

0: अगर ये भय हो तो क्या ये विचार करने योग्य नहीं है रुक्मण?
1: मैं इस समय उसकी तरण बराबर भी परवाह नहीं करती।
2: विशंभर ने देखा रूपमणि के चांद से मुख पर गर्वमय संकल्प का आभास था। वो उसके संकल्प के आगे जैसे कांप गया।
0: मेरी याचना स्वीकार करो रूपमणि। मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपनी जिद त्याग दो।
2: रूपमणि सोचती रही,
0: मेरी खातिर तुम्हें ये विचार छोड़ना पड़ेगा रूपमणि।
1: अगर तुम्हारा ये आदेश है तो ही मानूंगी विशंभर। तुम दिल ही दिल में समझते हो मैं क्षणिक आवेश में आकर इस समय अपने भविष्य को गारत करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूंगी ये मेरा क्षणिक आवेश नहीं दृढ़ संकल्प है। जाओ, मगर मेरी इतनी बात मानना कि कानून के पंजे में उसी वक्त आना जब आत्माभिमान या सिद्धांत पर चोट लगे। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूंगी।
2: विशंभर अंदर जा बैठा। गाड़ी ने फिर सीटी दी और धीमे धीमे चलना शुरू किया।
3: वाला।

0: रूपणी के पास विशंभर का एक पुराना रद्दी सा फोटो अलमारी के कोने में पड़ा हुआ था। आज स्टेशन से आकर उसने उसे निकाला और उसे एक मखमली फ्रेम में लगाकर मेज पर रख दिया। उसने आनंद का फोटो वहां से हटा दिया था। विशंभर ने छुट्टियों में उसे 2-4 पत्र लिखे थे। रूपमणि ने उन्हें पढ़कर एक किनारे डाल दिया था। आज उसने उन पत्रों को निकाला और उन्हें दोबारा पढ़ा। उन पत्रों में आज कितना रस था। वो बड़ी हिफाजत से राइटिंग बॉक्स में बंद कर दिए गए। दूसरे दिन समाचार पत्र आया तो रूपमणि उस पर टूट पड़ी। विशंभर का नाम देखकर वो गर्व से फूल उठी। दिन में एक बार स्वराज भवन जाना उसका नियम हो गया। जलसों में भी बराबर शरीक होती। विलास की चीजें एक एक करके सब फेंक दी गई थीं। रेशमी साड़ियों की जगह गाठे की साड़ियां आईं। चरखा भी आया। वो घंटों बैठी सूत काता करती। उसका सूत दिन दिन बारीक होता जाता था। इसी सूत से वो विशंभर के कुर्ते बनवाएगी। उन दिनों परीक्षा की तैयारियां थीं। आनंद को सिर उठाने की फुर्सत नहीं थी। एक महीना बीत गया। एक दिन शाम को आनंद आया। रूपणी स्वराज भवन जाने को तैयार थी।
1: तुमसे तो अब बातें करना भी मुश्किल है।
2: तुम्हें भी तो किताबों से छुट्टी नहीं मिलती। आज की कुछ ताज़ा खबर नहीं मिली इसलिए स्वराज भवन जा रही हूँ। वहाँ रोज़ रोज़ का हाल मिल जाता है।
1: सुना है देहातों में विशंभर ने खूब शोरगुल मचा रखा है। जो काम उसके लायक था वो मिल गया। यहाँ तो उसकी ज़ुबान बंद रहती थी, वहाँ देहातियों में खूब गरजता होगा। मगर आदमी दिलेर है।
2: आदमी में अगर ये गुण है तो फिर उसके सारे अवगुण मिट जाते हैं। तुम्हें पार्टी बुलेटिन पढ़ने की फुर्सत क्यों मिलती होगी? विशंभर ने देहातों में ऐसी जागृति फैला दी है कि विलायत का एक सूद भी नहीं बिकने पाता और नशे की दुकानों पर ना ही कोई जाता है। और मजा यह है कि पिकेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो पंचायतें खोल रहे हैं।
1: तो समझ लो अब उनके चलने के दिन भी आ गए हैं।
2: इतना करके जाना भी सस्ता नहीं है। कल तो किसानों का एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला था। पूरे परगने के लोग जमा हुए होंगे। सुना है आजकल देहातों में कोई मुकदमा ही नहीं आता। वकीलों की नानी मरी जा रही है।
1: यही तो स्वराज्य का मजा है। जमींदार वकील और व्यापारी सब मिट जाएं, बस मजदूर और किसान रह जाएं।
0: रूपमणि ने समझ लिया आज आनंद शायद लड़ने का तय करके आया है। उसने भी मुकाबला करने का निश्चय कर लिया।
2: तो क्या तुम चाहते हो कि

0: जमींदार, वकील और व्यापारी गरीबों को चूस चूस कर मोटे होते जाएं, और जिन व्यवस्थाओं में ऐसा महान अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ जबान तक न खोली जाए। तुम तो समाजशास्त्र के पंडित हो, क्या किसी अर्थ में ऐसी व्यवस्था आदर्श कही जा सकती है? सभ्यता के 3 मुख्य सिद्धांतों का ऐसी दशा में किसी न्यूनतम मात्रा में ही व्यवहार हो सकता है।
1: शिक्षा और संपत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। हाँ, उनका रूप भले ही बदल जाए।
0: अगर स्वराज्य आने पर भी पैसे वालों का यही प्रभुत्व बना रहे और पढ़ा लिखा समाज अपने स्वार्थ में अंधा बना रहे, तो मैं कहूंगी ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा है। अंग्रेजों महाजनों की धन लोलुपता और शिक्षितों का स्वहित ही आज हमें पीछे डाल रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसीलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम से कम मेरे लिए तो स्वराज्य का ये अर्थ कतई नहीं है कि जान की जगह गोविंद बैठ जाए। मैं समाज में ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ जहाँ कम से कम विषमता को तो आश्रय ना मिल सके।
1: ये तुम्हारी निजी कल्पना होगी।
0: तुमने अभी इस आंदोलन का साहित्य पढ़ा ही नहीं है।
1: ना पढ़ा है और ना पढ़ना चाहता हूँ।
0: इसमें राष्ट्र की कोई बड़ी हानि नहीं होगी।
1: तुम तो रूपमणियाँ पहले जैसी नहीं रही, लग रहा है तुम्हारी बिल्कुल काया पलट हो गई है।
2: सहसा डाकिये ने पार्टी बुलेटिन लाकर मेज पर रख दिया। रूपमणि ने अधीर होकर उसे खोला। पहले शीर्षक पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में जैसे नशा छा गया। अज्ञात रूप से गर्दन तन गई और चेहरा एक अलौकिक तेज से दमक उठा।
0: विशंबर पकड़ लिए गए हैं, उनको 2 साल की सजा हो गई है।
1: किस मामले में सजा हुई?
0: रानीगंज में किसानों की विराट सभा थी, वहीं पुलिस ने पकड़ा है उन्हें।
1: मैंने तो पहले ही कहा था 2 साल के लिए जाएंगे, जिंदगी खराब कर डाली।
0: क्या डिग्री ले लेने से आदमी का जीवन सफल हो जाता है? सारा अनुभव सारा ज्ञान पुस्तकों में ही भरा हुआ है क्या? मैं समझती हूँ संसार और मानवीय चरित्र का जितना अनुभव विशंभर को 2 सालों में हो जाएगा, उतना दर्शन और कानून की पोथियों से तुम्हें 200 वर्षों में भी ना होगा। अगर शिक्षा का उद्देश्य चरित्र बल मानो तो राष्ट्र संग्राम में मनोबल के जितने साधन हैं पेट के संग्राम में कभी नहीं हो सकते। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि हमारे लिए पेट की चिंता ही बहुत है, हमसे कुछ और हो नहीं सकता, हम में ना उतना साहस है, ना बल, ना धैर्य, ना संगठन, तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन जाति हित के लिए प्राण देने वालों को बेवकूफ बताना मुझसे ना सहा जाएगा। आज विशंभर के इशारे पर लाखों आदमी सीना खोलकर खड़े हो जाएंगे। तुम में है जनता के सामने खड़े होने का हौसला? जिन लोगों ने तुम्हें पैरों तले कुचल रखा है, जो तुम्हें कुत्तों से नीचे समझते हैं, उन्हीं की गुलामी करने के लिए तुम डिग्रियों पर जान दे रहे हो, तुम इसे अपने लिए गौरव की बात समझो? मैं तो नहीं समझती।
1: तुम तो पक्की क्रांतिकारिणी हो गई हो आजकल।
0: अगर सच्ची खरी बातों में तुम्हें क्रांति की गंध मिले तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।
1: आज विशंभर को बधाई देने के लिए जलसा जरूर होगा, क्या तुम उसमें जाओगी?
0: जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, और बोलूंगी भी। कल रानीगंज भी चली जाऊंगी। विशंभर ने जो दीपक जलाया है वो मेरे जीते जी ना बुझ पाएगा।
1: अपनी अम्मा और दादा से पूछ लिया?
0: वो भी पूछ लूंगी।
1: क्या वो तुम्हें अनुमति दे देंगे?
0: सिद्धांत के विषय में अपनी आत्मा का आदेश ही सर्वोपरि होता है।
1: अच्छा, ये नई बात मालूम हुई।
2: ये कहता हुआ आनंद उठ खड़ा हुआ और बिना हाथ मिलाए कमरे से बाहर निकल गया। उसके पैर उस तरह लड़खड़ा रहे थे कि अब गिरा तब गिरा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 9। DTH पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच की ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में बलराम कृषि महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के एक समर्पित अधिकारी श्री शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के स्तंभ थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर पर नागरिकों से अपील की है कि सभी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग हों और तनाव मुक्त मध्यप्रदेश, स्वस्थ मन, स्वस्थ समाज और सशक्त मध्यप्रदेश के निर्माण की दिशा में एक सामाजिक और सामूहिक संकल्प लें। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा केंद्र का योगदान है।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के युवाओं, विद्यार्थियों और हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तरह तरह के सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कुछ ही सेकंड में देश दुनिया की खबरें, मनोरंजन और नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया के कई फायदे हैं, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सकारात्मक प्रभावों की। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकते हैं। इससे हमें नई चीजें सीखने, अपनी प्रतिभा दिखाने और अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कई युवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हुनर को पहचान दिला रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया पर हम अक्सर दूसरे लोगों की अच्छी और खूबसूरत जिंदगी देखते हैं। इससे हमें लगने लगता है कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा खुश और सफल हैं। कई बार लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने पर आत्मविश्वास कम हो सकता है और तनाव बढ़ सकता है। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल चिंता, अकेलापन, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या का कारण बन सकता है। बार बार मोबाइल चेक करने की आदत हमारा ध्यान पढ़ाई और जरूरी कामों से भी हटा सकती है। कई बार सोशल मीडिया पर मिलने वाली नकारात्मक टिप्पणियां या साइबर बुलिंग भी मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। इसलिए हमें सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका सही और संतुलित उपयोग करना जरूरी है। हमें स्क्रीन टाइम सीमित रखना चाहिए, सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक जीवन में भी समय बिताना चाहिए। अगर सोशल मीडिया के कारण हमें लगातार तनाव, उदासी या चिंता महसूस हो रही है, तो हमें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारा पूरा जीवन नहीं। इसलिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल अपनी खुशी और विकास के लिए करें, अपनी मानसिक शांति की कीमत पर कभी नहीं। और अब आपको सुनवाते हैं आर को तुलसी कुमार और नेहा कक्कड़ की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक बेटी शिक्षित और सशक्त होती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। बेटियां आज भी किसी क्षेत्रों में बेटों से पीछे नहीं है। शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीक, कला, प्रशासन और सेना जैसे क्षेत्रों में बेटियां अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी कई बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अपने सपनों को पूरा करने के समान अवसर नहीं मिल पाते। ऐसे में बेटियों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में किए जाने वाले बहुत से प्रयास महत्वपूर्ण हैं। सशक्त बेटी परियोजना इनमें से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। एक सशक्त बेटी वो है जो अपने फैसले लेने का आत्मविश्वास रखती है, अपने अधिकारों को समझती है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। दोस्तों, सशक्त बेटी परियोजना के अंतर्गत बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि ये हमें सही और गलत को समझने, अपने अधिकारों को जानने और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की क्षमता देती है। इसलिए किसी भी बेटी की पढ़ाई केवल आर्थिक समस्या या सामाजिक सोच के कारण कभी नहीं रुकनी चाहिए। बेटियों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने शरीर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में सही जानकारी मिलनी चाहिए। उन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि किसी गलत व्यवहार या परेशानी की स्थिति में वो चुप न रहें, बल्कि अपने माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात जरूर करें। सशक्त बनने के लिए बेटियों में आत्मविश्वास और कौशल विकसित करना भी जरूरी है। कंप्यूटर, डिजिटल शिक्षा, खेल, कला, सिलाई, हस्तकला या अन्य व्यावसायिक कौशल सीखकर बेटियां भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना उन्हें अपने जीवन के फैसले लेने में और अधिक सक्षम बनाता है। लेकिन बेटियों को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी एक संस्था की नहीं है। परिवार, विद्यालय और समाज सभी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे जरूरी बात, हमें बेटियों और बेटों के बीच भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें समान शिक्षा, समान अवसर और अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमें बेटियों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनकी आवाज महत्वपूर्ण है, उनके सपने महत्वपूर्ण हैं और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार रखती हैं। इसलिए बेटी को केवल सुरक्षित रखना ही नहीं, बल्कि उसे इतना सक्षम बनाना है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सके और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बेटी को शिक्षा मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और अपने सपनों को उड़ान देने का अवसर मिले। और अब आपको सुनवाते हैं भावीन धनक की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

0: दोस्तों आज हमारे साथ हैं दीपांजलि त्रिपाठी, जिनसे हम जानेंगे सोशल मीडिया के हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। साथ ही सशक्त बेटी परियोजना के बारे में भी हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। दीपांजलि, आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और इसका प्रभाव हमारी सोच, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है।
0: बिल्कुल, लेकिन पहली नजर में सोशल मीडिया और सशक्त बेटी परियोजना दो अलग अलग विषय लगते हैं, तो क्या आप बता सकती हैं इन दोनों के बीच में क्या संबंध है?
1: इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। आज की बेटियां भी सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। इंटरनेट उनके लिए सीखने, आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा माध्यम है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं।

0: इसलिए बेटी को केवल पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे मानसिक रूप से मजबूत और डिजिटल रूप से जागरूक बनाना भी जरूरी है।
1: सोशल मीडिया बेटियों को किस तरह आगे बढ़ने का अवसर देता है?
0: सोशल मीडिया के माध्यम से बेटियां घर बैठे नई चीजें सीख सकती हैं, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और अपनी प्रतिभा लोगों तक पहुंचा सकती हैं। कोई लड़की कला में अच्छी है, कोई खेल में, कोई पढ़ाई में या किसी तकनीकी क्षेत्र में, वह अपने हुनर को दुनिया के सामने रख सकती है। इससे उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा मिल सकता है।
1: लेकिन सोशल मीडिया का दूसरा पहलू भी है, इसका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है?
0: जब हम लगातार दूसरों की तस्वीरें, सफलता और खूबसूरत जिंदगी देखते हैं, तो कई बार अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। विशेष रूप से लड़कियों पर सुंदर दिखने, लोकप्रिय होने और दूसरों की तरह सफल होने का दबाव महसूस हो सकता है। इससे आत्मविश्वास कम हो सकता है और तनाव या निराशा बढ़ सकती है।
1: आजकल लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स को लेकर भी बहुत दबाव रहता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है?
0: हमें यह समझना होगा कि हमारी कीमत लाइक्स और फॉलोवर से तय नहीं होती। सोशल मीडिया पर मिलने वाली प्रतिक्रिया हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय हमें अपनी प्रतिभा और अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए।
1: अगर किसी बेटी को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग या साइबर बुलिंग का सामना करना पड़े तो उसे क्या करना चाहिए?
0: सबसे जरूरी बात है कि वह डरकर चुप ना रहे। गलत संदेश या टिप्पणी का जवाब देने के बजाय उसे ब्लॉक और रिपोर्ट किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखना चाहिए और माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताना चाहिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है।
1: बहुत ही अच्छी बात कही दीपांजलि आपने। मतलब हमें बेटियों को सोशल मीडिया से दूर करने के बजाय उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए।
0: जी हाँ, हमें ऐसी बेटियाँ चाहिए जो तकनीक से डरे नहीं बल्कि उसका समझदारी से उपयोग करें, जो अपनी भावनाओं को समझें, अपनी बात कहें और अपने भविष्य के फैसले आत्मविश्वास के साथ लें।
1: दीपांजलि, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने सोशल मीडिया का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव और सशक्त बेटी के बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं हम जैसे युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य और सशक्त बेटी के विषय में सकारात्मक संदेश देना चाहती थी और आपने मुझे उसका मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनाली। और आपके कार्यक्रम से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप दीपांजलि त्रिपाठी को सुन पा रहे थे और अब आपको सुनवाते हैं तनिष्क सांघवी की आवाज में ये गीत।

अब समय हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर का। आज हमारी धरोहर में हम भारत की एक अनोखी और सुंदर कला के बारे में बात करेंगे। मोर के बारे में आप सभी जानते हैं कि मोर हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सुंदर और रंग बिरंगे पंख हमेशा से हमारे आकर्षण का केंद्र रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में भी मोर का विशेष स्थान माना जाता है। इसलिए मोर पंख केवल सुंदरता का प्रतीक ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोर पंख से कपड़ा भी बनाया जा सकता है? जी हाँ, मोर के पंखों में पाए जाने वाले बहुत बारीक रेशों को अलग करके उनसे धागा तैयार करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। इस काम में बहुत मेहनत, धैर्य और कुशलता की आवश्यकता होती है। पंखों को इकट्ठा करने के बाद उनसे उपयोगी रेशे अलग किए जाते हैं, फिर इन रेशों को साफ करके और उन्हें बारीकी से तैयार करके धागे का रूप दिया जाता है। इसके बाद इस विशेष धागे से कपड़ा बुना जाता है और इस तरह से तैयार किया गया कपड़ा देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। इसमें मोर पंख की प्राकृतिक चमक और रंगों की झलक दिखाई देती है। यही इसकी सबसे खास बात है। इस तरह की कला हमें सिखाती है कि प्रकृति में उपलब्ध चीजों का सही तरीके से उपयोग करके हम सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण को बचाने और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की बात कर रही है, तब हमारी पारंपरिक कलाएं और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमारे देश में ऐसी अनेक पारंपरिक कलाएं हैं जिन्हें हमारे कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आए हैं। ये केवल एक काम या व्यवसाय नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का हिस्सा है। मोर पंख से धागा और फिर उस धागे से कपड़ा तैयार करने की कला हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि नई सोच के साथ अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित रखिए। हमें ऐसी कलाओं को केवल देखकर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए बल्कि इनके बारे में जानना और इन्हें आगे बढ़ाने वाले कारीगरों का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी असली धरोहर केवल हमारी पुरानी इमारतें या ऐतिहासिक वस्तुएं नहीं है। हमारी धरोहर में हमारे हुनर, हमारी कला, हमारी परंपराएं और हमारे कारीगरों की मेहनत भी शामिल है। तो आइए हम सभी मिलकर अपनी ऐसी अनोखी कलाओं को पहचानें और उनका सम्मान करें और आने वाली पीढ़ियों तक उन्हें पहुंचाएं। हमारी धरोहर में आज इतना ही। दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल एड्रेस। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए आपके रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

ये आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
4: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
5: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
4: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
5: कहाँ से पता चलेगा?
4: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ग्यारह दस 2026 को शाम
2: समंदर के आर पार छनती रही। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से

0: संपर्क के कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

अभी आपने सुना झूम बराबर झूम फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में। शब्द रचना थी गुलजार की और संगीत शंकर एहसान लॉय का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, कार्यक्रम है फिल्म संगीत। अब सुनिए साथिया फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज़ में। शब्द रचना एक बार फिर गुलजार की है और संगीत ए आर रहमान का।

0: सोनू निगम के गाए साथिया फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है विशेष कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश का। विषय है नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
1: नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। देश के लोकतांत्रिक विकास में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, उद्यमिता और सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीति और नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये कानून महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर राजनीति और नीति निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी क्यों जरूरी है, इस कानून की पृष्ठभूमि क्या है और इससे भारतीय लोकतंत्र में किस तरह के बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अजय सर, पहला सवाल, आखिर लोकतंत्र में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
2: देखिए दीपा जी, ऐसा है कि महिलाएं बाकी क्षेत्रों में तो पुरुषों को बड़ी कड़ी चुनौती दे रही हैं।
1: जी जी।
2: अभी जो एशियाई खेल हुए उसमें हमने देखा कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए।
1: जी जी।
2: तो केवल एक राजनीति का क्षेत्र ही ऐसा है कि जहां पर अभी तुलनात्मक रूप से उनका प्रतिनिधित्व उनकी संख्या और अपेक्षा की तुलना में कम है। तो सरकार ने इस बात को बहुत गंभीरता से समझा है कि राजनीतिक प्रतिनिधि भी लगभग महिलाओं का उतना होना चाहिए जिसकी वो हकदार हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो इसी उद्देश्य लाया गया था कि कम से कम 33% जो है वो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। हालांकि अभी भी महिलाओं को टिकट दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि उसका कोई संवैधानिक बाध्यता उसकी नहीं है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से टिकट बांटे जाते हैं। लेकिन अब यह है इस अधिनियम के बाद सभी राजनीतिक दलों को 33% जो है वो टिकट महिलाओं को ही देने पड़ेंगे और इस तरह से पूरी संसद के अंदर उनका 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाएगा। तो वहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, जो देश विदेश देश भर की समस्याएं हैं या उस पर अपने विचार प्रकट करने हो, उनको सुलझाना हो, तो महिलाओं की आवाज़ ज़्यादा मुखर होकर

0: सामने आएगी, इसका उद्देश्य यही है।
1: बिल्कुल सही सर, आपने अधिनियम को बहुत ही अच्छे से हमारे श्रोताओं को समझाने की कोशिश की है। सर बात करें तो इस कानून की चर्चा 2023 में ज़रूर व्यापक हुई थी, लेकिन महिला आरक्षण का विचार नया नहीं है, इसके पीछे लगभग 3 दशक की राजनीतिक यात्रा रही है, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए कोशिशें तो लंबे समय से हो रही हैं
1: जी,
0: लेकिन राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति का अभाव था
1: जी,
0: उनके अपने छोटे छोटे स्वार्थ इस पर हावी होते चले गए
1: जी, जी।
0: इसके पहले भी पहले की सरकारों ने भी कोशिश की, विधेयक भी लाया गया संसद में, उसके बाद कुछ लोगों ने उसको फाड़ फाड़ के फेंक दिया संसद के अंदर ही
1: जी, जी, जी।
0: तो उनके अपने जातिगत कह लें या जो व्यक्तिगत या जो भी स्वार्थ रहे होंगे, दलगत स्वार्थ रहे होंगे, तो उन्होंने जो है इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। शायद उनको ये भी डर लगा होगा कि अगर महिलाओं को इतना आरक्षण मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा
1: जी, जी।
0: तो जो भी कारण जो भी रहा हो, कोशिशें पहले से होती रहीं लेकिन इच्छा शक्ति की कमी की वजह से सफल नहीं हो पाई। 2023 में ये विधेयक लाया गया और विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ
1: जी।
0: तो अब ये है कि सरकार की बाध्यता हो गई है एक तरह से कि भाई इसको लागू करें, और ये लागू करना जरूरी है भी, क्योंकि ये सारी महिलाओं की भी अपेक्षा है देश भर की कि भाई अगर बाकी क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो फिर राजनीतिक क्षेत्र में क्यों नहीं।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरे ख्याल से ये विधेयक जो है उनको पूरे अधिनियम उनको पूरा मौका देगा और संसद के अंदर महिलाओं की आवाज ज्यादा ताकत से उभरेगी, मुखर होगी
1: जी। जी सर, महिलाओं को अगर बात किया जाए तो लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटों का प्रतिनिधित्व मिलता है, तो इसका भारतीय राजनीति पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या हो सकता है?
0: देखिए सबसे बड़ी बात यह, अगर 1/3 सीट अगर महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी तो मंत्रिमंडल पर भी उसका असर होगा
1: जी।
0: अभी भी महिलाएं मंत्री होती हैं ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, लेकिन जब इस तो 1/3 मंत्रिमंडल में भी महिलाएं सदस्य उसका हिस्सा बनेंगी
1: जी, जी, जी।
0: तो निश्चित रूप से उनके पास महत्वपूर्ण विभाग भी होंगे, अभी तो खैर वैसे भी निर्मला सीतारमण जैसे महिलाएं वित्त मंत्रालय बहुत बड़ा संभाल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही हैं, तो ये भागीदारी और बढ़ेगी। और अगर मध्यप्रदेश जैसी राज्य की हम बात करें तो यहाँ तो सरकार ने पहले ही पंचायतों और नगरीय निकायों में 50% आरक्षण पहले से कर दिया है
1: जी, जी, जी।
0: तो मध्यप्रदेश तो इस मामले में पहले ही आगे है, लेकिन अभी यह है कि बाकी जगह भी विधानमंडलों के अंदर खासकर लोकसभा और विधानसभाओं में भी 33% महिलाएं की उपस्थिति होगी और उनकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी।
1: बिल्कुल सर, आपने ग्राम पंचायतों की बात की है, तो भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को समझने के लिए पंचायतों स्थानीय निकायों की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और आपने बताया कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं को 50% आरक्षण मिला हुआ, क्या स्थानीय स्तर पर आरक्षण का अनुभव आगे की राजनीति के लिए आधार बन सकता है?
0: हाँ निश्चित रूप से मोटे तौर पर कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये अनुभव अच्छा ही रहा है। हालांकि अभी इसको मैं मानूंगा कि अभी ये एक तरह से प्रशिक्षण के दौर में है
1: जी, जी, जी।
0: क्योंकि एकदम इतनी सारी महिलाएं जब आ गई चुन करके तो उतनी प्रशासन पर उनकी पकड़ सबकी बन जाए ये जरूरी नहीं होता है।
1: बिल्कुल सही,
0: लेकिन ये है कि ये शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे महिलाएं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगी हैं, वरना अभी तक तो ये ऐसी शिकायतें भी आई थी कि उनके घर वाले भी हस्तक्षेप करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन धीरे धीरे ये हो रहा है कि वो महिलाएं स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही हैं और कहीं तो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। तो अब ये एक धीरे धीरे प्रशिक्षण का दौर
1: है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है,
0: प्रशिक्षण का दौर है, और जब इसकी अंतिम परिणति जो है 33% आरक्षण में होगी, और हो सकता है कि आगे चल करके जो है हम जैसे देश ने एक प्रधानमंत्री अगर देखे तो हो सकता है आने वाले समय में कोई महिला प्रधानमंत्री देश की हो, राष्ट्रपति तो वहीं है आज की तारीख में, मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये जिम्मेदारी का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे इससे।
1: सर एक और सवाल बनता है, क्या सिर्फ सीटों का आरक्षण महिलाओं की राजनीतिक सशक्तता सुनिश्चित कर देगा या इसके लिए कुछ और भी बदलाव जरूरी है?
0: नहीं देखिए ये तो शुरुआत है, क्योंकि केवल आंकड़ों से या केवल आप एक कानून बना देने से तो चीजें नहीं बदलती,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब कानून नहीं था महिलाएं तो तब से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है ना
1: जी, जी।
0: समाज और न सिर्फ इसमें बल्कि हर क्षेत्र में धीरे धीरे चुनौती दे रही हैं, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में हो, चाहे अब तो सेना में भी हैं और सेना में भी अब फाइटिंग कैडर में भी आ गई हैं
1: जी, जी।
0: विमान उड़ा रही हैं, जो लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, लड़ाई में भी वो भाग लेने के लिए तैयार हैं, तब मेरे ख्याल से इससे और बेहतर बात क्या हो सकती है। और खेलों में का उदाहरण मैंने आपको दिया ही दिया, और उद्योगों के क्षेत्र में भी आ रही हैं
1: जी,
0: तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर से महिलाएं तो पहले से आगे बढ़ रही हैं, वहां तो कोई कानून लागू नहीं है ना,
1: नहीं नहीं,
0: तो वो उनकी बढ़ने की इच्छा शक्ति है और बराबर कॉम्पीट करने का एक जिद है आगे बढ़ने की, एक जुनून है वाला, तो ये ही सबसे बड़ा कारण है। हाँ बस ये कि राजनीतिक आरक्षण से एक फायदा जरूर होगा कि

0: महिलाओं के हक में ज्यादा कानून बन सकेंगे और उन कानून का पालन कराया जा सकेगा सही ढंग से, ये उसका सबसे बड़ा फायदा हो सकता है।
1: जी सर, जो चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एक शब्द आ रहा है महिला नेतृत्व वाला विकास, आप इसे कैसे समझते हैं?
0: देखिए, मैंने पहले कहा कि भाई धीरे धीरे नेतृत्व तो अपने आप ही बढ़ रहा है ना, जैसे मध्य प्रदेश की हमने बात की कि 50% अगर आरक्षण मिल गया है तो जाहिर है कि कई जगह नगर पालिका अध्यक्ष महिलाएं हैं, महापौर महिलाएं हैं, नगर पंचायतों में महिलाएं सरपंच बनी हुई हैं, तो यही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, ये नेतृत्व आगे बढ़ेगा और बड़े जिम्मेदारियों की तरफ जाएगा, तो उसकी शुरुआत हो चुकी और जैसे जैसे ये और आगे बढ़ता जाएगा तो मेरे ख्याल से महिलाओं को के प्रति पुरुषों का नजरिया भी बदल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, समाज का नजरिया भी बदल रहा है।
1: बिल्कुल सही
0: कि पहले उनको भाई उनका काम तो ये घर में चूल्हा जलाना और बच्चे खिलाना यही माना जाता रहा अभी वर्षों तक, अब वो उस दृष्टि से उसको नहीं देखा जा रहा है, महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है और जिम्मेदारियां कई महिलाएं बहुत अच्छी तरह से निभा रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये जो एक बहुत गुणात्मक बदलाव है समाज के अंदर, मेरे ख्याल से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये जैसे जैसे चीजें आगे समय आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 का विकसित भारत, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आगे 50% तक भी हमको 2047 में प्रतिनिधित्व मिले राजनीतिक रूप से, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो सर, क्या राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है उसका प्रभाव महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर भी पड़ सकता है?
0: निश्चित रूप से पड़ता ही है वो, तो
1: जी
0: वो जब राजनीतिक रूप से सशक्त होंगी तो वो बाकी समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी उनका असर दिखेगा
1: जी,
0: और दिख भी रहा है, वो ज्यादा दमदारी से अपना काम कर सकती हैं, ज्यादा ज्यादा स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकती हैं, और महिलाओं को वैसे भी घर परिवार की समझ होती है तो समाज की समझ तो स्वयं होती है
1: जी जी जी,
0: तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही बेहतर ढंग से निर्णय ले पाती है कई मामले में पुरुषों की तुलना में
1: जी जी जी,
0: तो इससे उनको आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होने वाला है और वो भी रहा है किसी हद तक।
1: सर, अगर आज की युवा पीढ़ी के संदर्भ में देखें तो महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का क्या महत्व है?
0: देखिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मैंने पहले भी कहा कि भाई उनको एक संवैधानिक आपने दर्जा दे दिया है, जो कि अभी बाकी क्षेत्रों में भी महिलाएं आगे आ रही हैं, तो बल्कि वो संवैधानिक रूप से नहीं है, इतना ही फर्क है
1: जी,
0: लेकिन यहाँ पर यह है कि उनका संवैधानिक अधिकार है, भाई अगर आबादी की अगर 50% है, वो आधी आबादी अगर महिलाओं की देश के अंदर है, तो उनको उसी आबादी के अनुपात में उनको अधिकार और वो क्यों नहीं मिलने चाहिए?
1: जी जी, मिलने चाहिए।
0: हाँ, तो वो राजनीतिक क्षेत्र में भी उसका उतना उनका दावा बराबर है और बाकी जितना पहले दूसरे क्षेत्रों के अंदर है जी। तो इससे अंततः देश को लाभ ही होना है और खुद महिलाओं को भी लाभ होना और अंततः समाज को लाभ होना है
1: जी। सर, हाल ही के महीनों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े हुए कुछ संवैधानिक और परिसीमन संबंधी मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई है, हालांकि हमारी चर्चा का केंद्र व्यापक महिला प्रतिनिधित्व है, लेकिन क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि ये बहस महत्वपूर्ण क्यों है?
0: देखिए, सरकार परिसीमन इसलिए करना चाहती है कि भाई सीटों की संख्या सरकार को बढ़ाना है और इसमें ये प्रस्ताव दिया गया था कि 50% सीटें हम सीधे बढ़ा देते हैं
1: जी जी,
0: उसको लेकर के, तो उसके लेकिन तभी हो सकता है कि जब परिसीमन नहीं होगा तब सीटें बढ़ाएंगे कैसे,
1: बिल्कुल
0: किस आधार पर बढ़ाएंगे? हालांकि उसमें ये मांग हो रही है कि साहब पुराने हिसाब से बढ़ा दीजिए, लेकिन उसमें कोई सहमति बन नहीं पा रही है
1: जी जी।
0: हो सकता है कि सरकार इसी सत्र के अंदर फिर से ये विधेयक, क्योंकि अब सत्रावसान नहीं हुआ है इस लोकसभा का अभी तक, तो हो सकता है कि वो अधिनियम फिर से लेकर के आए, क्योंकि परिसीमन करना इसलिए जरूरी है कि महिलाओं के लिए कौन सी सीटें आरक्षित होंगी ये तो उसी से तय होगा ना
1: जी जी,
0: तो इसलिए वो जरूरी है।
1: एक और महत्वपूर्ण बात आपने कही कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्या राजनीतिक दलों की भूमिका यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नहीं हो जाती?
0: निश्चित रूप से ये तो राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि अगर मतदाताओं में भी अगर महिलाओं की संख्या आधी है तो टिकट आधे महिलाओं क्यों नहीं दिए जा सकते
1: जी जी जी।
0: तो लेकिन ये अभी धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है और आगे जैसे अब ये विधेयक आएगा या अधिनियम लागू होगा तो उसके बाद फिर स्थितियाँ और बदलेंगी, अभी भी राजनीति में पुरुष प्रधान राजनीति हमारे यहाँ ज्यादा है
1: जी जी जी,
0: लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये स्थिति मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है एक स्थिति ऐसी आए कि 50% टिकट भी महिलाओं को दिए जाए आने वाले समय में।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब देश में 50% महिलाओं की संख्या है तो उनको आरक्षण तो 50% मिलना ही चाहिए। सर, महिलाओं का जो कॉन्फिडेंस है देखा जाए तो सार्वजनिक जीवन में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए?
0: देखिए, आत्मविश्वास बढ़ने के कई कारण होते हैं
1: जी,
0: इसमें सबसे पहला तो मैं मानता हूँ कि साक्षरता है, पढ़ने लिखने लगी हैं महिलाएं, आज महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 70% से ऊपर चला गया है
1: जी जी,
0: और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, इवन यहाँ तक कि जो मेहनत के कामकाज हैं उसमें

0: भी महिलाओं की भागीदारी पहले की तुलना में लगभग आधी के आसपास पहुंचने लगी है।
1: जी जी,
0: तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो धीरे धीरे महिलाओं के महत्व को बढ़ा रही हैं, समाज में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ा रही हैं, और जब ये सब चीजें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से उसका असर तो दिखना ही है।
1: जी जी बिल्कुल। सर, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। विषय था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनामल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स में फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में बलराम कृषि महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के एक समर्पित अधिकारी श्री शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के स्तंभ थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज नागरिकों से अपील की है कि सभी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग हों और तनाव मुक्त मध्यप्रदेश, स्वस्थ मन, स्वस्थ समाज और सशक्त मध्यप्रदेश के निर्माण की दिशा में एक सामाजिक सामूहिक संकल्प लें। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत।

बंटी और बबली, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आलिशा चिनाय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज़ में। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म एजेंट विनोद से। आवाज़ अरिजीत सिंह की, शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत दिया है प्रीतम ने।

एजेंट विनोद, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत था प्रीतम का। अब सुनिए, लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ में सुर फिल्म का गीत, शब्द रचना निदा फाजली की और संगीत MM करीम का।

सुर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीत लिखा था निदा फाजली ने और संगीत MM करीम का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन

कार्यक्रम फिल्म संगीत। पंडित बिरजू महाराज और कविता सुब्रमण्यम और माधुरी दीक्षित, इनकी आवाज में आप सुनते हैं पंडित बिरजू महाराज का लिखा और संगीतबद्ध किया हुआ गीत। फिल्म है देवदास।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर

भरी मटकी दधकी भरी मटकी दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच आहट सुन आहट सुन आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क

पंडित बिरजू महाराज, कविता कृष्णमूर्ति, इसे दोबारा सुन लीजिए, पंडित बिरजू महाराज, कविता सुब्रमण्यम और माधुरी दीक्षित की आवाज़ में अभी आपने सुना देवदास फिल्म का गीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए क्रिमिनल फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत एम एम करीम का।

0: क्रिमिनल फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
2: प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जो शुरुआत में आनंद का साधन लगती है, वही धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी जंजीर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शराब की लत की। शराब पहले इंसान को नहीं पकड़ती, इंसान शराब को पकड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वही शराब इंसान के जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और भविष्य को पकड़ लेती है। एक गिलास से शुरू हुई कहानी कभी कभी एक टूटे हुए परिवार पर खत्म होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपनी समस्या को स्वीकार करता है और सही सहायता की ओर कदम बढ़ाता है। दोस्तों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो शराब की लत से जूझ रहे हैं, या आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो शराब के आदी हो गए हैं? यदि ऐसे लोगों को अपने आसपास में ढूंढा जाए तो शराब की लत से जूझ रहे या शराब के आदी हो गए लोगों को ढूंढ पाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। शराब की लत आज केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या है। जब कोई व्यक्ति बार बार शराब का सेवन करता है और धीरे धीरे शराब उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है, तो वह अपनी इच्छा और नियंत्रण को खोने लगता है। इसका प्रभाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, पारिवारिक आर्थिक जीवन, सामाजिक संबंधों और आत्मिक जीवन पर भी पड़ सकता है। कैसे एक व्यक्ति शराब की लत में पड़ जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है? जी हाँ श्रोताओं, इन सभी पहलुओं पर हम विचार करने वाले हैं। आज का कार्यक्रम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर है, जिसमें हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे और शराब की लत से कैसे छुटकारा पाएं इसके विषय में भी चर्चा करेंगे।
1: हेलो नमस्कार, मैं एनकर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ श्रोताओं, आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 886008 8827। जी हाँ, 886008 8827। और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
2: आज का कार्यक्रम शराब की लत से कैसे छुटकारा पाए इसके विषय में चर्चा करेंगे।
3: एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। रमेश एक कंपनी में काम करता था।

0: था और अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन दफ्तर के दोस्तों के दबाव में रमेश ने पहली बार थोड़ी सी शराब चखी। उसे यह अजीब लगा, लेकिन दोस्तों की देखा देखी उसने इसे शान की बात मान लिया। धीरे धीरे कभी कभी की जाने वाली यह पार्टी हर हफ्ते की आदत बन गई। हर दिन पूरे मन से रमेश पास की शराब की दुकान पर जाता था, चाहे सुबह का समय हो या शाम का, या दुकान बंद होने का समय हो। रमेश हमेशा उसी दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ता रहता था। उसके मन में बस एक ही विचार बार बार घूमता रहता था, हे भगवान काश दुकान बंद हो। लेकिन फिर दुकान खुलते ही चमकती बोतल उसे अपनी ओर खींच लेती। कुछ ही मिनटों में एक प्लास्टिक की थैली में बोतल लिए रमेश वहां से निकला। कभी खरीदारी से खुश होता तो कभी खुद को कोसता।
1: दरवाजा खोलो।
2: अरे रमेश तुझे क्या हुआ? तू तो पहचानने में भी नहीं आ रहा। ये क्या हाल बना रखा है भाई, तू तो बहुत कमजोर हो गया है।
1: हाँ भाई कमल, थोड़ा बीमार हो गया हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और तू सुना, तू कैसा है?
2: और तेरी नौकरी कैसी चल रही है? पिछली बार तो तूने बताया था कि तेरी प्रमोशन हो गई है और तनख्वाह भी डबल हो गई है।
1: क्या बताऊँ भाई, शराब के कारण नौकरी भी चली गई और बच्चे का नाम भी स्कूल से कट गया, बीमार और हो गया।
2: यार जितना मैं तुझे जानता हूँ तू तो शराब सिगरेट पान तम्बाकू जैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाता था।
1: हाँ भाई कमल, था तो ऐसा ही, लेकिन दोस्तों की संगति के कारण एक दो बार शराब पी फिर लत लग गई। अब शराब छोड़ना चाहता हूँ ताकि सब ठीक हो जाए।
2: भाई अपना ख्याल रख, और मैं तो चाहूंगा कि तू जल्दी ठीक हो जाए।

0: इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और दोनों लीवर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इनको बचाना मुश्किल होगा।
1: कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, किसी भी तरह इन्हें बचाने की कोशिश कीजिए।
0: देखिए, हमने अपनी ओर से सारी कोशिश कर ली है, लेकिन अब स्थिति हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते।
2: सुनीता, मुझसे बड़ी भूल हो गई। जो मैंने केवल शौक के लिए शराब पीना शुरू किया, अब मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर देना। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता और शराब छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान देता।

प्रिय श्रोताओं, शराब की लत अचानक नहीं लगती। कई बार व्यक्ति मजे में या फिर तनाव में आकर या फिर दोस्तों के साथ बैठकर या परिवार के वातावरण में बहुत सी समस्याओं का सामना करते हुए अपने जीवन में परेशान होकर शराब पीना शुरू कर देता है। शराब में उसे लगता है कि वह जब चाहे शराब छोड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसका यह सेवन आदत और फिर निर्भरता में बदल सकता है। किसी भी व्यक्ति के शराबी होने के कई कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के शराब का आदि होने का एक बड़ा कारण उसका वातावरण भी हो सकता है, परिवार, समाज या वो स्थान जहां वह रहता है, और बुरी संगति उसके जीवन को प्रभावित कर सकती है। जो बच्चे शराब पीने वाले परिवारों में बड़े होते हैं, उनमें ये डर हो सकता है कि वे भी अपने माता पिता जैसे बन जाएंगे। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे पिता शराब पीते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरह संस्कृति और समाज का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। कुछ संस्कृतियों या समाजों में शराब पीना बहुत बड़ी बात मानी जाती है और इसे बहुत सामान्य रूप से देखा भी जाता है। इससे विशेषकर युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और बाद में वे इसके आदि बन

जाते हैं। कई बार वर्तमान में तनाव के कारण व्यक्ति शराब की लत में पड़ जाता है। बहुत से लोग किशोरावस्था में शराब पीना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में व्यक्ति के जीवन में चिंताएं, डर, अपराध, निराशा और कई अन्य समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी परिवार में तनाव होने के कारण भी व्यक्ति शराब का सेवन करना शुरू कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में वह शराब को तनाव से बचने या खुशी पाने का एक साधन समझ लेता है। कई बार टेलीविजन और फिल्मों में भी लोग ये देखते हैं कि कुछ पात्र शराब पीकर अपना तनाव कम करते हैं। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति अपने दोस्तों को शराब पीते हुए आनंद लेते देखता है तो वह भी उनके साथ शामिल हो जाता है। इसी प्रकार मानसिक तनाव के कारण विशेषकर कुछ युवा खुशी पाने या तनाव से राहत पाने के लिए शराब पीना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में वे उसे केवल आराम या तनाव कम करने के लिए लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इसके आदि हो जाते हैं और उनका जीवन प्रभावित होने लगता है। लेकिन ये शराब की लत कैसे छूट सकती है, ये एक सबसे बड़ा विषय है। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी बहुत से लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के शराब छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अचानक शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे कमजोरी, अधिक पसीना आना, घबराहट, बेचैनी और निराशा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में शराब छोड़ना गंभीर और खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए ताकि वो अपनी समस्याओं को उसे बता सके और वो उसका इलाज सही तरीके से कर सके। कई बार जब शराब का आदी व्यक्ति घर पर शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो वह कुछ दिनों तक अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब वो फिर उसी वातावरण में जाता है या पुराने दोस्तों से मिलता है तो उसे दोबारा शराब पीने की इच्छा हो सकती है। पुनर्वास केंद्र यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर, उस स्थान पर ऐसे लोग एक साथ रहते हैं जो शराब छोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसमें वह एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। वहां प्रशिक्षित काउंसलर भी होते हैं जो उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। शराब छोड़ना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। लंबे समय से अधिक मात्रा में शराब पीने वाले व्यक्ति को अचानक शराब बंद करने पर गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और ऐसे समय में उन्हें पुनर्वास केंद्र जाकर अपना इलाज कराना जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग तनाव, अकेलापन या जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण शराब का सहारा लेने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है उसे केवल डांटना या उससे दूरी बनाना पर्याप्त नहीं है। हमें उसके करीब जाना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और भावनात्मक सहायता देनी चाहिए। हर क्षेत्र में लोगों को शराब और नशीले पदार्थों के प्रभाव और उनके नुकसान के बारे में उचित शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। कई बार लोग शराब के वास्तविक प्रभावों को जाने बिना इसे पीना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है उसके लिए भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही उसे यह भी जानना चाहिए कि शराब की निर्भरता से बाहर आने के लिए कहां से सहायता प्राप्त की जा सकती है और किन परिस्थितियों से उसे बचना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, एक बहुत पुरानी कहावत है और इस कहावत में कहा गया है कि शराब ठट्टा करने वाली और हुल्लड़ मचाने वाली है। जो कोई इसके कारण भटक जाता है वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। शराब व्यक्ति के निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करती है। जो व्यक्ति शराब के कारण अपने विवेक और नियंत्रण को खो देता है वह व्यक्ति बुद्धिमानी से काम नहीं कर रहा। कई बार शराब पीने वाला व्यक्ति सोचता है कि वो शराब को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन असल में जब शराब उस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण करने लग जाती है तब वह उसके जीवन की आदत नहीं बल्कि वो उसके जीवन की जंजीर बन जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब जिस चीज को हम नियंत्रण करने की सोचते हैं वही हमें धीरे धीरे नियंत्रित करने लगती है। प्रिय श्रोताओं, इसके कई बुरे परिणाम होते हैं। दुख, झगड़ा, शिकायत, चोट, गलत निर्णय, शराब की लालसा, शराब को छोड़ने में कठिनाई उत्पन्न होना, ये तमाम चीजें व्यक्ति को अपने जीवन में सहनी पड़ती है। यहाँ तक कि वो आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। बहुत सारे लोग शराब पीने के लिए चोरी करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, घर से पैसा चुराने लगते हैं। ये तमाम चीजें उनकी डिग्निटी यानी कि उनके गौरव पर भी प्रभाव डालती है और साथ ही साथ समाज में उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। हर व्यक्ति को समाज में एक अच्छी पहचान बनानी चाहिए। परिवार में उसे आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि बच्चे भी उसके जीवन को देखकर प्रभावित हों और उसके जैसे बनने का प्रयास करें जो अच्छे काम अपने जीवन में करता है।
पेश होता हूँ शराब।

0: आपकी लत छोड़ी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना जरूरी होता है। जब आप अपने जीवन में दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आपको इस काम को नहीं करना, तो अवश्य ही आप उस पर विजय पा सकते हैं और आप शराब जैसी बड़ी लत जो लोगों के जीवन और उनके परिवारों को बर्बाद करती है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप भी अपने विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमें लिख सकते हैं।
1: आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत।

डार्लिंग डार्लिंग, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म अजनबी से। आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत आर डी बर्मन का। तो आइए सुनते हैं अजनबी फिल्म का ये गीत।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ।
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना, कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ।
0: फिर ना कभी कहना।

अजनबी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। इस बीच नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक और कड़े प्रबंध किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती जाँच की जा रही है। यातायात पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाने दिया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया है। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम तथा राजनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अधिस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के

0: कर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब सुनिए आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रम समाचारों के बाद रात 7:25 पर सुनिए बुंदेली समाचार और 7:30 पर आप सुनेंगे किसान वाणी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत रात 8 विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। फिल्म संगीत 8:35 पर, 9:30 पर सुनिए संस्कृति भारती और रात 10 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए कर्नाटक गायन। कलाकार हैं अर्चना जी उपाध्याय। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब हम आपको बता रहे हैं कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत हमारे नियमित कार्यक्रमों में आप सुनेंगे 6:05 पर वंदना, 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान, 6:40 पर चिंतन और कृषि चर्चा 6:45 पर। दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का प्रसारण होगा 7:20 पर। 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। कार्यक्रम लोक संगीत प्रसारित किया जाएगा 9:15 पर। सिंधियत ची सुरहान सुनिए 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे सिंधी वार्ता, रंगमंच की चुनौतियां और सिंधी गीत। जिले की चिट्ठी का प्रसारण समय है 10:00। सामुदायिक शिक्षण पाठ के अंतर्गत कल सुनिए संस्कृत गीत, रचना डीवी कृष्णा शास्त्री की। फिल्म संगीत 10:30 पर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण होगा। इसके अंतर्गत कल सुनिए 7:30 से 8:00 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय है खरीफ फसलों में कटाई उपरांत कार्य एवं फसल अवशेष प्रबंधन। विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत कल सुबह 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है दोपहर 12 बजे। 12:30 पर संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिए प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 10वां भाग। दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान होगा। लोक संगीत 1:30 पर और 1:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत का प्रसारण होगा। ये दोनों कार्यक्रम भी आकाशवाणी शिवपुरी की ही प्रस्तुति होंगी। फिल्मी गीतों का आनंद श्रोता ले सकेंगे दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत में। 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत युववाणी सुनिए शाम 5:02 पर, ये आकाशवाणी शिवपुरी की ही प्रस्तुति होगी। सांधकालीन सभा में फिल्म संगीत शाम 5:33 पर, 6 बजे, रात 8 बजे

8:30 पर और 10:35 पर। डगर विकास की सुनिए रात 8:15 पर। विषय है जल जीवन मिशन, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की। 9:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात 10:00 विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। 9:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी देर में।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में प्रसारित किए जाएंगे।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर रख रहा है कड़ी नजर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर में आयोजित बलराम महोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए, कहा किसानों की समृद्धि है हमारा लक्ष्य। भाजपा ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। और इंदौर में कल खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20I, क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोस और उससे परे के घटनाक्रमों के साथ साथ उनके रणनीतिक प्रभावों पर भी बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभियान को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
3: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
2: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में बलराम कृषि महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार हर

0: संभव कदम उठा रही है। बिहार के बोधगया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाजापुर जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागिता करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कृषि को लाभकारी बनाने, नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहित करने तथा अन्नदाताओं की खुशहाली सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष 15 जुलाई 2026 से शुरू हुए बलराम कृषि महोत्सव आयोजन की श्रृंखला में अब तक हजारों किसान इस महोत्सव से लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के अंतर्गत सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहां शहर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल संचय के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रंगोली, चित्रकला, कबाड़ से कला और जुगाड़ प्रतियोगिता, स्वच्छता की पाठशाला और स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। सतना में सांसद गणेश सिंह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत धावरी में आयोजित मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम के प्रमाण पत्र एवं पुस्तक वितरण समारोह में सहभागिता की। वहीं शिवपुरी में सेवा संकल्प अभियान के तहत खानिया धाना में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। अनूपपुर में सेवा मेरा योगदान अंतर्गत 11 रक्तदान शिविरों के माध्यम से 317 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। इसी क्रम में खंडवा में सेवा संकल्प अभियान के तहत स्थानीय महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पर भोपाल के शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय में एक शिविर का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि मानसिक समस्याओं में परामर्श के लिए भारत सरकार ने टेली मानस सेवा आरंभ की है, जिसका महत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार किया है। इस सेवा का लाभ 14416 और 1800891 4416 नंबरों पर 24/7 यानी 24 घंटे कॉल कर परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। आकाशवाणी से चर्चा करते हुए विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर श्रोताओं को जागरूक किया।
1: आज पूरी दुनिया में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है और जैसे शरीर का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही मन का स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक मन को स्वस्थ रखने के उपाय की बात है तो रोज समय पर और पूरी नींद लें, नींद का विशेष ध्यान रखें, रोज टहलें, व्यायाम करें, योग करें, अपनों से खुलकर बात करें, मन की बात करें, दवाएं नहीं और दूसरों की बात भी सुने, शराब, तम्बाकू और हर तरह के नशे से दूर रहें, मोबाइल और स्क्रीन का समय सीमित रखें क्योंकि ये आजकल बहुत तरह की मानसिक समस्याओं का मूल कारण बन रहा है। तनाव अगर होता है तो बहुत गहरी गहरी सांस लें, बॉक्स ब्रीदिंग हम जिसको बोलते हैं, 4 सेकंड तक सांस लेना है, 4 सेकंड रोक कर रखना है, 4 सेकंड सांस छोड़ना है और 4 सेकंड फिर रोक। कोई अपनी पसंद का काम अवश्य करें, कोई अपनी हॉबी बनाए, उस हॉबी में डूबने की कोशिश करें।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। बिना नाम लिए उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पर भी तंज कसा। श्री चौहान ने कहा कि एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है तो दूसरी तरफ विपक्ष निराश और हताश है।
2: विपक्ष मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: आकाशवाणी रायपुर के उप निदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के एक समर्पित अधिकारी श्री शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के स्तंभ थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान रहा है। 1993 बैच के अधिकारी श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय में हुई थी। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का एक प्रमुख चेहरा रहे। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। सर्वपित्र अमावस्या पर आज प्रदेश की पवित्र नदियों शिप्रा और नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी। उज्जैन में गजछाया योग सहित 3 विशेष संयोगों के बीच श्रद्धालुओं ने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पूजन किया। नर्मदापुरम के सेठानी घाट सहित नर्मदा के दूसरे घाटों पर भी शुक्रवार रात से श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहा। उधर देवास जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों धाराजी और नेमावर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। सतना के चित्रकूट में भी आज पितृ अमावस्या पर सुबह से ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उधर मुरैना में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शनिश्चरी अमावस्या

व्यापार शनि मंदिर में अभिषेक किया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में कल भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा क्रिकेट T20I मुकाबला खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और करीब 27,500 दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए स्टेडियम में करीब 160 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और फैंस रिकग्निशन तकनीक से निगरानी की जाएगी आयोजकों ने बारिश की स्थिति से निपटने के लिए ग्राउंड को कवर करने की व्यवस्था भी तैयार रखी है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आगामी 12 से 14 अक्टूबर तक विद्यार्थियों और युवाओं के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मुरैना के जौरा शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शहडोल में देवी अहिल्याबाई बुनकर मेला लगाया गया है। इस मेले में रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया और उज्जैन सहित कई अन्य जिलों के स्वसहायता समूह के महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। और जबलपुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस शासकीय महाकौशल कॉलेज में 25 दिव्यांग विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: बुंदेली समाचार।
1: आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
2: किसान वाणी सुबह वाले हमारे सभी श्रोता भैया बहनों को पहुँच जाए हमारी नई और इस नई भरी राम राम। आज की किसान वाणी आप और उनके लाने लेके आई है आपकी अपनी बहन अंशु तलेठे। भैया आरो, किसान वाणी कार्यक्रम को उद्देश्य है कि कृषि से संबंधित सभी जानकारियां आप और उन तक सही समय पे पहुंचाई जाए। सो आकाशवाणी भोपाल पूरा प्रयास करत है सरकार की योजनाएं उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया जानकारी जागरूकता आप तक पहुंचाई जावे। भैया हरो, आज की किसान वाणी में हम आज एक योजना से संबंधित आपसे बातें कर हैं जिको कहते हैं गोवर्धन योजना। भैया हरो, गोवर्धन योजना को मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रन में पशुअन के गोबर और जैविक कचरा को कंप्रेस्ड बायोगैस ये CBG और जैविक खाद में बदल के गांवन को स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनावो है। एक कछु मुख्य बातें हम आपोरण से साझा करन चाहू थे। कचरा से कंचन बनावे की प्रक्रिया को भी गोवर्धन योजना के अंतर्गत जानो जात है। कैसे? खेती के अवशेष जैसे पराली गोबर और गीले कचरा को उपयोग करके बायोगैस और खाद में बदलो जात है। ई संगे संगे किसानों और पशुपालकों को गोबर और कृषि अपशिष्ट बेच के अतिरिक्त कमाई को साधन उपलब्ध कराते जा गोवर्धन योजना। भैया हरो, स्वच्छ ऊर्जा को निर्माण होते ई योजना के तहत आयतित ईंधन पे निर्भरता कम होते माने जो हम ईंधन आयात करते हैं दूसरे अन्य देशों से ऊपर हमारे देश की निर्भरता कम होते माने हम अपने देश की

0: मुद्रा की बचत करत है और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा मिलत है वो अलग। और भैया बिन्नहरो, पर्यावरण सुरक्षा में एक और महत्वपूर्ण योगदान जो होत है कि गांवन में स्वच्छता को बढ़ावा देवे के अलावा पराली जलावे को भी कम करत है जा योजना। संगई प्रदूषण की समस्या रोकत है बा अलग है। तो भैया बिन्नहरो, हम तो जई कहे कि सरकार की ई गोवर्धन योजना से जुड़ो, पर्यावरण को संरक्षण करो। तो जा तो हो गई सरकार की गोवर्धन योजना की बारे में जानकारी। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके लाने लेके आए हैं एक विशेष भेंट वार्ता, जिसकी विशेषज्ञ हैं लक्ष्मी जुड़ा और हमारी भेंट वार्ता को विषय है दुग्ध प्रसंस्करण तकनीक एवं लाभ। इनसे बातचीत करी है रीता बहन ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, दूध एक ऐसा उत्पाद है जिसका अगर सही तरीके से रखरखाव किया जाए तो उससे कई गुना लाभ कमाया जा सकता है। दूध प्रसंस्करण करके दूध अधिक मूल्यवान बनाया जा सकता है। दुग्ध प्रसंस्करण तकनीक एवं लाभ, इसी विषय पर आज की भेंट वार्ता है, जिसमें जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ हैं लक्ष्मी जुड़ा, जो कि ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद प्रसंस्करण विभाग से हैं। नमस्कार मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि दुग्ध प्रसंस्करण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है?
2: मैडम देखिए, दूध जो है वो बहुत जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए दूध को सही समय पर ठंडा और सुरक्षित अगर हम नहीं करते तो उससे नुकसान होता है, दूध खराब होता है। दूध प्रसंस्करण का सही अगर सरल अर्थ हम देखें तो वो होता है कच्चे दूध को सुरक्षित और अधिक गुणवत्तापूर्ण, अधिक मूल्य वाले उत्पादों में बदलना। तो इसमें दूध को हम सही और वैज्ञानिक तरीके से इसका संग्रहण करते हैं, शीतलीकरण जिसको कहते हैं, ठंडा करना दूध को, कूलिंग करना, फिर उसका पाश्चराइजेशन करते हैं, पाश्चुरीकरण, जिसमें एक नियमित तापमान पर दूध को गर्म किया जाता है जिससे कि वो दूध जल्दी से खराब ना हो, और उसके बाद फिर दूध से दही, पनीर, मक्खन, खोया, इस तरह के उत्पाद जो है वो तैयार करते हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है इसी को हम दुग्ध प्रसंस्करण कहते हैं।
1: मैम, ये दूध जो है, दूध से और हम क्या बना सकते हैं? वैसे तो आपने अभी बताया है, इसके अलावा भी हम क्या कुछ और उत्पाद बना सकते
2: हैं? जी बिल्कुल, दूध से बहुत सारे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिसमें दही, पनीर, घी, मक्खन, खोया, मावा, ये सारे उत्पाद वैसे हम अपने घरों में भी बनाते हैं, छोटे स्तर पर बनाते हैं। इसी को जब हम बड़े स्तर पर बनाते हैं मशीनों के प्रयोग के द्वारा तो वो फिर उद्यम में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा फ्लेवर्ड मिल्क, मिल्क शेक, आइसक्रीम, ये उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। तो दूध एक ऐसा उत्पाद है जिससे बहुत सारे वाइड रेंज में जो उत्पाद हैं वो बनाए जा सकते हैं। मिल्क पाउडर जो है वो बड़े उद्यमों में आता है, स्किम मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क, ये सारे उत्पाद थोड़े बड़े उद्यमों में आता है और ये उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं।
1: मैम, दूध प्रसंस्करण से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है?
2: दूध प्रसंस्करण से देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जब कोई उद्यम किसी गांव में या किसी भी क्षेत्र में स्थापित होता है तो हमको लगता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा उद्यम है, वहां पर जो काम करने वाले लोगों को हम देखते हैं, हमको लगता है बस इनको ही रोजगार मिला। लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे रोजगार किसी भी उद्यम के उस क्षेत्र में स्थापित होने से जनरेट होते हैं। जैसे कि अब दूध का अगर आप लें तो दूध को मवेशियों के पालने से लेकर के फिर जो दूध को जो संग्रह करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोसेसिंग प्रसंस्करण की बात करते हैं तो बहुत सारे दूध की जरूरत पड़ती है, तो उनके संग्रह केंद्र होते हैं, तो संग्रहकर्ता जो होता है दूध का, वो फिर वो मशीनों को जो ऑपरेट करते हैं लेबर्स, उनको रोजगार मिलता है, प्रसंस्करण के कर्मचारी, पैकेजिंग लेबलिंग वाले जो कर्मचारी होते हैं, इसके अलावा दूध को प्रसंस्करण के पहले और बाद जो परिवहन होता है उससे भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो पूरी मार्केटिंग और सप्लाई चेन को मिला करके बहुत सारे जो रोजगार हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं यहाँ पर।
1: जी, दुग्ध प्रसंस्करण इकाई के लिए कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता होती है?
2: देखिए, दुग्ध प्रसंस्करण के लिए जो मशीनें हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा उत्पाद बना रहे हैं। अगर आप खोआ, मावा, ये सब डेयरी के उत्पाद बना रहे हैं तो इसके लिए अलग मशीनों की जरूरत पड़ेगी। आइसक्रीम बना रहे हैं, अलग मशीन की जरूरत पड़ेगी। मैं अगर ऐसे व्यवहारिक रूप से बताऊं तो दूध को संग्रह करने, मतलब कलेक्ट करने और उसको ठंडा करने के लिए बल्क मिल्क कूलर का प्रयोग किया जाता है, पाश्चुरीकरण करने के लिए पाश्चुराइजेशन यूनिट का प्रयोग किया जाता है, दही बनाने के लिए सेटलिंग चैम्बर या इंक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है, पनीर के लिए पनीर को प्रेस करने के लिए पनीर प्रेस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो भी आप उत्पाद बना रहे हैं तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग लाइन है और मशीनें हैं वो अलग अलग होती हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डीप फ्रीजर और कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, क्योंकि दूध से निर्मित जो उत्पाद हैं वो भी उनकी लाइफ जरूर बढ़ती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, तो उनको हमको कोल्ड चेन में रखने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीजर भी उतना ही आवश्यक है।
1: मैम, जब मशीनों की बात चली है तो क्या मशीन जो है कस्टम हायरिंग की जा सकती है?
2: जी बिल्कुल की जा सकती है, बहुत सारी सर्विसेज हैं।

0: ये डिपेंड करता है कि उस गांव में है या नहीं, लेकिन शहरों में कस्टम हायरिंग के लिए मशीनें बिल्कुल उपलब्ध है। देखिए ऐसे कुछ कस्टम हायरिंग के लिए शासकीय स्तर पर भी योजनाएं आने वाली हैं जल्दी ही।
1: जी, PMFME योजना दुग्ध प्रसंस्करण में किस प्रकार सहायता करती
0: है? PMFME जो योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, ये केंद्र सरकार की एक योजना है और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम जो होते हैं बहुत छोटे स्तर पर गाँव में, उनको सपोर्ट करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। तो इसमें जो दुग्ध व्यवसाय में कार्यरत है वो इस योजना का लाभ लेकर छोटे छोटे स्तर पर अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए उनको उद्यानिकी विभाग का जो जिला कार्यालय है वहाँ पर उनके अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके और उनसे बात करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा और छोटे स्तर पर इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए फॉर्म आवेदन करते हैं। 35% तक का अनुदान लाभ मिलता है इसमें।
1: मैम, इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण
0: ब्रांडिंग
1: की भी सहायता मिल सकती है?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशिक्षण तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मैडम, क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता है कि करना कैसे है, क्योंकि जब हम प्रसंस्करण की बात करते हैं और दुग्ध प्रसंस्करण की बात करते हैं तो हमें हाइजीन मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पशु से आने से लेकर के जो पूरी पूरी जो वैल्यू चेन जिसको हम कहते हैं, हर स्तर पर हमको साफ सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उस साफ सफाई को कैसे मेंटेन करना है, मशीनों को कैसे साफ करना है, कैसे योजना में आवेदन करना है और फिर हम कैसे उसकी मार्केटिंग करें, क्योंकि मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब अगर आपने उत्पाद बना लिया लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसको बेचना कैसे है, किस स्तर पर बेचना है, कैसे बेचना है, क्या मूल्य होना चाहिए उस उत्पाद का, कितना मूल्य उसका बढ़ गया, ये सबके लाइसेंस जो होते हैं, उद्यम पंजीयन कैसे होता है, अगर ये सब चीजों का प्रशिक्षण ना दिया जाए तो उद्यम स्थापित करने वाले के लिए कठिनाई होगी। तो इसी चीज में सहायता देने के लिए उद्यानिकी विभाग जो है प्रशिक्षण देता है।
1: और ब्रांडिंग भी इसी का एक पार्ट हो जाता
0: है? ब्रांडिंग और मार्केटिंग, जी इसी का एक पार्ट है। ब्रांडिंग करके और फिर उस उत्पाद का विपणन करना यानी कि मार्केट तक पहुंचाना, इसका प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इस योजना के माध्यम से दिया जाता है।
1: क्या FPO और महिला SSG मिलकर दुग्ध प्रसंस्करण कर सकते हैं?
0: PMFME योजना में ही जो समूह है, स्व सहायता समूह है और FPOs हैं, FPC हैं, ये इसमें जो महिलाएं हैं ये दुग्ध को संग्रहित करके और उसका उत्पाद बना सकती हैं और इसके लिए योजना में आवेदन करके एज अ समूह वो इसका लाभ ले सकती हैं।
1: MSME विभाग से क्या सहायता इसमें मिल सकती है?
0: देखिए जैसे हमारे जो उद्यानिकी विभाग है वहाँ पर जो PMFME स्कीम है वो बहुत छोटे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता देती है, वैसे ही MSME जो विभाग है उस विभाग में भी योजनाएं संचालित है जिसमें दुग्ध प्रसंस्करण के लिए लाभ लिया जा सकता है विभागीय योजनाओं का। वो थोड़े बड़े स्तर पर अगर आप लघु उद्योग जो स्थापित करना चाहते हैं, जो हमारे किसान भाई या हमारे ग्रामीण भाई और बहन, उनके लिए ये लाभदायक योजना है।
1: अब मैम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि यदि कोई युवा या महिला आज के समय में दुग्ध प्रसंस्करण का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: जी, अगर कोई युवा और महिला दुग्ध प्रसंस्करण का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसको बाजार का सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे करने में आप ये देखना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में जो आप उत्पाद बनाना चाहते हैं, दही, पनीर, घी, मावा, उन उत्पादों की मांग है क्या। अगर लोकल स्तर पर मांग नहीं है, स्थानीय स्तर पर, तो बाहर किसी शहर में अगर बेचना चाहते हैं तो आप उसको कैसे वहां तक परिवहन करेंगे और कैसे आप उसको बेचेंगे, क्या वो खरीदने को तैयार है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बाजार का सर्वेक्षण करें। और आप उससे भी इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको बनाना क्या है। तो आप सबसे पहले तो आप उत्पाद का निर्धारण करें, फिर बाजार का सर्वे करें, फिर दूध की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जैसे आपने उद्यम स्थापित कर लिया लेकिन पता चला कि जो मवेशी थे उस टाइम पर तो दूध आपके स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था लेकिन बाद में उपलब्धता कम पड़ गई, तो आपको दूध की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी है। फिर तीसरा पार्ट है परियोजना तैयार करना। परियोजना तैयार करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें कोई हम परियोजना रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें कौन सी मशीन होगी, कहाँ पर आप काम करेंगे, बिजली की उपलब्धता कितनी है, पानी की उपलब्धता है या नहीं है, वहाँ पर लेबर उपलब्ध है या नहीं है, पैकेजिंग कैसे करेंगे, परिवहन कैसे करेंगे आप अपने उत्पाद का बनने के बाद, और आखिर में आप उसको मार्केटिंग के कैसे करेंगे। तो ये पूरा जो वैल्यू चेन है, ये पूरा जो प्रोसेसिंग की जो पूरी प्रक्रिया मैंने बताई, इसके खर्चे को हम जोड़ते हैं और उसके आधार पे ही परियोजना रिपोर्ट आपकी बनती है, तैयार होती है। और इसके बाद ये बना लिया आपने, फिर आपको ये देखना होगा कि आपको कौन से विभाग की किन योजनाओं का आपको लाभ लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि उद्यानिकी विभाग की PMFME योजना, MSME विभाग की योजनाएं हैं, इसके अलावा पशुपालन क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ पशुपालन ही करते हैं, दुग्ध का उत्पादन करते हैं, उनके लिए पशुपालन विभाग की योजनाएं संचालित है। तो उन सभी योजनाओं की उन विभागों में जाकर के जानकारी लें और उसके बाद अपनी निर्धारण करें कि आपको कौन सा उत्पाद बनाना है, कौन सी योजनाओं का लाभ लेना है और उसके बाद ही आप क्षेत्र में आप आगे बढ़े।
1: क्योंकि मैम हर एक उत्पाद की कीमत कीमत या कॉस्ट भी अलग अलग तरीके से बढ़ घट सकती है।
0: जी बिल्कुल बढ़ सकती है।
1: अंत में मैम ये जानना चाहेंगे कि श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
0: श्रोताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अब जो समय आ गया है

0: जैसे हमारे वोकल फॉर लोकल और ऐसे सारे स्लोगन सुनते रहते हैं
1: कि
0: हमें सिर्फ उत्पादन नहीं करना है, उसका प्रसंस्करण भी करना है। किसी चीज का उत्पादन जब हम करते हैं, चाहे वो सब्जी फल हो या फिर दूध हो, उसको हम ज्यादा समय तक नहीं रख पाते हैं सुरक्षित, और वो खराब होता है और फिर उसमें नुकसान होता है। तो इसलिए मेरे श्रोताओं को यही मेरा संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण के क्षेत्र में आए, ताकि उस उत्पाद को आप नष्ट होने से भी बचाएं और उसका मूल्य वर्धन करके आप अधिक से अधिक आय भी ले सकें। लेकिन ये निर्धारित करने के पहले कि आप कौन सा आपको प्रसंस्करण करना है, आप विभागीय योजनाओं का सही तरीके से विभागों में जाकर के जानकारी जरूर ले लें
1: जी, ताकि जानकारी के बाद फिर आप सही ढंग से उस व्यवसाय
0: सही तरीके से व्यवसाय को शुरू करें और आप उसका लाभ ले सकें।
1: जी मैम, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली। आपने इतना अच्छा अमूल समय हमारे लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद। धन्यवाद
2: भैयारो। अब अपन ने जब बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता सुनी और जानो दुग्ध प्रसंस्करण तकनीक और लाभ के बारे में, भैयारो कार्यक्रम में आगे बढ़त है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से मनोरंजन सोई करत है। काल से नौ दुर्गा लग रही हैं, देवी जी विराज रही हैं और हम सभी भक्ति भाव में डूबे बारे हैं देवी की आराधना में। सो कायना एक बढ़िया सो जस सुन ले, ये गाँव है माया पंडरे ने।

0: अभय पन्न ने जो मधुर सो माया पंडरे की आवाज में देवी जस सुनो। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक लघु वार्ता आपरण के लाने लेके आए हैं। देखो भैया हरो, रासायनिक खेती कौ ना कौ माटी की सेहत, हम इंसानन की सेहत और पर्यावरण की सेहत को बिगाड़ रही है। तो हमारे कछु प्रगतिशील किसान भैया आ रहे हैं जो आगे आ रहे हैं और प्राकृतिक खेती को महत्व दे रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान से हमने बातचीत करी जिनने जैविक खेती को अपनाओ, कौ ना कौ एक छोटो सो कदम उठाओ पर्यावरण की सुरक्षा के लाने और माटी की सुरक्षा के लाने।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे कृषक से जो कि प्राकृतिक खेती करने के लिए जाने जाते हैं, जैविक कृषक हैं।
2: जय श्री राम। मैं ग्राम राजोदा का छोटा सा किसान हूँ। मेरा नाम विष्णु पंचाल, ग्राम राजोदा, जिला देवास।
1: प्राकृतिक खेती को कैसे समझाएंगे, ये प्राकृतिक खेती होती क्या है?
2: सर, इसमें प्राकृतिक खेती में क्या है कि सादा जो भी रासायनिक चीज है वो नहीं डाल के अपने घर पे गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से खाद बनाना है और दवा बनाना है। और जो अपने हरे पौधे

0: जो गाय भैंस जिस पौधे के पत्ते नहीं खाते उससे कीटनाशक बनाना है और अच्छा। वो मैं बनाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अपन ले ले अपना आंकड़ा, आंकड़े के बाद में बेसरम, क्योंकि बेसरम तो आजकल बहुत कम हो गई सर, बहुत कम जगह मिलते। उसके बाद धतूरा, उसके बाद में हो गया अपना रामफल, सीताफल, भूरलीम, करंज और अपना देसी लीम। ये से 10 प्रकार के झाड़ के पत्ते हम लेते हैं, इनको सबको तोड़ के लाते हैं हम। उसके बाद में इनको हम जो गाय भैंस की कुटी बनाने की मशीन है हमारे पास, मेरे पास जानवर भी है डेयरी फार्म मेरा, तो उसमें कुटी मशीन में इसको हम घुमा काट के बारीक करते हैं। बारीक करने के बाद जो 200 लीटर वाला ड्रम रहता है उसमें सबको हम डालते हैं। पत्ते उन डालने के बाद में हम उसमें 10 से 15 लीटर देसी गाय की पेशाब डालते हैं। उसके बाद में उसको हम पानी से पूरा 200 लीटर भर देते हैं। उसके बाद में सूती कपड़े से छांव में उसका मुंह बांध के छांव में रख देते हैं, तो 10 से 12 दिन में वो तैयार हो जाता हमारा कीटनाशक। तो जो 15 से 16 लीटर वाला जो अभी हाथ वाला पंप आ रहा है इसमें हम 250 ग्राम डालते हैं कीटनाशक के रूप में। वो जो कंडे रहते हैं हमारे गाय के गोबर से उपले बोलते हैं बहुत सारे, हम गांव के लोग कंडा बोलते हैं उसको, उसको गला के जो हेमो एसिड बनता है टैनिक, जो उस टैनिक की कीमत आज मार्केट में 600 रुपया से लगा के 2600 रुपये तक, तो हम उसको घर पे बनाते हैं। तो 8 दिन में उसको भी गलाते हैं 200 लीटर पानी में, तो उसका पानी एक टंकी में 15 लीटर पंप में मिनिमम 1 लीटर डालते हैं, तो वो टॉनिक हो गया। अब जीवामृत बनाते हैं हम, जीवामृत में 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 2 किलो देसी गाय का गोबर, 5 लीटर देसी गाय की पेशाब और पानी, और 1 किलो बड़ या पीपल जो पुराना झाड़ है उनके नीचे कोई कीटनाशक नहीं डालता, उसके जड़ की मिट्टी, इसी का सबका मिश्रण तैयार करके उसमें हम 200 लीटर पानी में डाल के उसका जीवामृत तैयार करते हैं। वो भी छांव में रखना पड़ता है, तो वो भी 10 से 15 दिन में ऐसी गर्मी, जो आज की जो गर्मी है कुमार महीने वाली, ऐसी गर्मी वो 10 से 15 दिन में तैयार हो जाए, मौसम ठंडा रहेगा तो उसमें 1 महीना से 20 दिन लगेगा तैयार।
1: हमारे जो किसान हैं जब उन्होंने ये सारी बात सुनी तो उनको लगा होगा कि पत्तियों से, गोबर से, गोमूत्र से जो आप ये बना रहे हैं और इसको हम प्राकृतिक खेती का नाम दे रहे हैं, फिर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर होता है?
0: जैविक में से जीवाणु डलता है। अब जो अच्छा। मेरा जीवामृत बना है इसमें बारीक बारीक बहुत सारे जीवाणु, अगर जो इसको हम थोड़ी सी मात्रा बना दें तो जो आपने सफेद वाले कीड़े देखे होंगे वो बन जाते हैं, तो इसमें अनमोल जीवाणु है जीवामृत में, तो वो पौधे पे भी काम करेगा, वो जब जमीन पे गिरेगा तो जमीन को भुरभुरी करेगा, जो अपना सल्फर खाद डालते हैं ना सुपर सल्फर उसका काम करता है। तो ये जो जीवामृत है दोनों प्रकार से काम करेगा, पौधे पे डालेंगे तो उसकी ग्रोथ बढ़ाएगा, जमीन पे जाएगा तो जमीन को खाद का काम करेगा।
1: अच्छा, आप कितने वर्षों से ये कर रहे हैं?
0: मैं ये 8वां साल है सर मेरा,
1: 8वां साल। जैविक प्रमाणित संस्था से
0: नहीं, अभी नहीं मिला।
1: उसके प्रयास आप कर रहे हैं?
0: प्रयास कंप्लीट है सर मेरा, अभी 14 अगस्त को हमारे उज्जैन संभाग से कमिश्नर साहब आए थे अचानक, तो उनने भी सारी मेरी फसल देखी, उसके बाद में जो मैं बना रहा हूँ वो सारा सिस्टम देखा, तो उन्होंने बोला है कि आपको 2 से 3 महीने में बन जाएगा।
1: अब हम फसलों की बात करते हैं, आप कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं?
0: अभी सर मैं सोयाबीन ले रहा हूँ,
1: जैविक
0: सोयाबीन, उसमें रासायनिक कुछ भी नहीं। अच्छा। तो 10 पत्ते यार कीटनाशक के रूप में झाड़ की पत्ते से, टैनिक के रूप में कंडा टैनिक जो कंडा का पानी बनाया, और खाद के रूप में जीवामृत और पौधे को सुरक्षित रखने के लिए उसमें अपना लीम तेल, 15 लीटर पानी में 50 ग्राम हम लीम तेल डालते हैं कच्चे घाने का।
1: अब रबी जो सीजन आ रहा है
0: अभी, इसके बाद हम गेहूं लगाएंगे
1: जैविक तरीके से।
0: जैविक तरीके से उसमें हम पहले खाद डालेंगे वर्मी कम्पोस्ट जो केचुए खाद से तैयार होता है, 1 बीघा में 3 क्विंटल से 5 क्विंटल के करीब, और बेट वाली गेहूं लगाएंगे। अभी सोयाबीन भी मेरा बेट वाला है।
1: क्या जैविक खेती या प्राकृतिक तरीके से खेती करने पर पानी की खपत कम होती है? ज्यादा
0: कम होती है, पानी कम लगता है सर, क्योंकि जो बेट पे लगाएंगे ना,
1: हाँ।
0: तो बेट में क्या है कि नाली में पानी चलेगा, और जो क्यारी वाले लगाएंगे पूरी 5 फीट की क्यारी भर के जाएगी, वो इसमें एक नाली में पानी जाएगा तो दोनों साइड पानी चूसेगा। अच्छा, और बेट पे रहेगा तो उसकी मोटाई 1 फीट की रहती है बेट की, तो पानी जब मिट्टी चूसेगी तो उसमें नमी ज्यादा रहेगी।
1: वैसे भी वैज्ञानिक कहते हैं कि जैविक खेती करें तो मिट्टी में नमी ज्यादा रहे, प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो इतना गोबर गौमूत्र ये सब लाते कहाँ से?
0: मेरे पास है ना गाय भैंस।
1: कितनी गाय?
0: मेरे पास 8 गाय है और 4 भैंस है।
1: किसान भाई इस समय आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ज्यादा नहीं, एक बीघा का करके ट्राई करो। मैं सर 12 बीघा का कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 बीघा जमीन है उसमें कर रहा हूँ। और रासायनिक में सर आज एक बीघा का जो सोयाबीन का खर्च है 18,000 रूपए खर्च है, 15 से 18,000 रूपए, और मेरा एक बीघा का मात्र 800 या 900 रूपए खर्च है। अब आप देखो कहाँ 800-900 रूपए है मेरा और कहाँ 18।

0: 1000 रुपये तो मेरे को तो ऐसे ही बचत हो रही ना, मेरा माल प्रमाणित नहीं हुआ फिर भी तो उसी भाव में बिक रहा है, मेरे को तो उधर उधर ही बच रहा है।
1: बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आप ये सोचते हैं कि हम प्रमाणित तो 3 साल बाद होंगे, आज अगर हम जैविक खेती करते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, तो आपको ये बहुत बड़ा प्रमाण है। पांचाल जी आपके सामने है जो खुद ये अपना प्लस माइनस पूरा जोड़ घटा कर गणित उन्होंने बता दिया कि मैं फिर भी फायदे में हूँ, उनके लिए लागत कम लग रही है और भरपूर उत्पादन भी उनको मिल रहा है। पांचाल जी आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे लिए दी है, हमारे किसानों को दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जय श्री राम सर।
2: तो भैया ये है थे हमारे प्रगतिशील किसान जिनसे अब हमने जब महत्वपूर्ण जानकारी ली। अब हम एक और बहुत जरूरी चर्चा आपके लाने लेके आए हैं। अब माटी को स्वस्थ हुई है तो हम और हैं बचे, माटी स्वस्थ हुई है तो जब प्रकृति बचे, माटी स्वस्थ हुई है तो जो जीवन बचे, तो वही जीवन बचावे के लाने हम आज आप और उनसे बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य के बारे में। भैया हरो, फसल को अच्छो उत्पादन लेवे के लाने और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखवे के लाने माटी को स्वस्थ हो वो बहुत जरूरी है। कैसे? स्वस्थ माटी पौधन को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे 17 आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में देत है, जिसे फसल मजबूत होते है। अच्छी माटी में पानी को रोकवे और छानवे की क्षमता होते है, जो सूखा से लड़वे में मदद तो करता ही है, संगे संगे जड़न में नमी बनाए रखत है, जिसे हमारे पौधन को हमारी फसलन को पानी मिलत रहत है। एक और बात बहुत जरूरी भैया, स्वस्थ माटी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखत है, जिसे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को असर कम हो जाते है। जब माटी स्वस्थ होते है तो उनमें सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या जाकों के पनप जाते हैं। केंचुआ और लाभदायक बैक्टीरिया माटी की उपजाऊ क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। माटी के स्वास्थ्य को सुधारवे के लाने हमारे भैया हरे कछु उपाय अपना सकते हैं, जैसे माटी की हर 2-3 साल में जांच जरूर करवा लेवे। इके लाने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सुई शासन चलाते हैं, इको लाभ लेके माटी को परीक्षण करवा लें। खेतन में रासायनिक उर्वरकन की जगह जैविक खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद को अधिक मात्रा में उपयोग करवे। माटी को पीएच संतुलन बनाए रखवे के लाने पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में रखें। अम्लीय माटी होवे पे उमें चूना और क्षारीय होवे पे सोडियम वाली माटी में जिप्सम को प्रयोग करवे। सबसे बड़ी बात माटी की सेहत के लाने भैया हरो, फसल चक्र जरूर अपनावे। हमारे किसान भैया हरे अगर फसल चक्र अपनाते हैं और हर मौसम में बदल बदल के फसलें बोते हैं तो जो एक बहुत बड़ो योगदान हो सकत है हमारी माटी की सेहत की सुरक्षा के लाने। तो आखिरी में हम तो यही कहें भैया हरो के जे उपाय अपना के तनक जागरूकता और समझदारी बना के अपनी माटी की सेहत को सुधार सकत है, वे खूब उपजाऊ बना सकत है। तो भैया हरो जा हो गई हमारी आज की चर्चा जो कि माटी के स्वास्थ्य के बारे में हती। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़त है और आपको मंडी के भाव बता देते हैं। दिनांक 8 अक्टूबर के अनुसार इंदौर कृषि मंडी के भाव हम आप को बता रहे हैं। गेहूं को न्यूनतम मूल्य रहो 2501 और अधिकतम रहो 3138, सोयाबीन 4500 से 6510 गौ, चना 5655 से 8700 तक गौ और मटर 4055 पे स्थिर रहो। मूंग 7900 से 8105 तक रहो और मक्का 1600 से 2400 तक गौ। तो जी हते इंदौर कृषि मंडी के दिनांक 8 अक्टूबर के भाव। भैया हरो जा हती आज की हमारी किसान वाणी। हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारे भैया हरे हमारे द्वारा दी गई जानकारियों को भरपूर लाभ उठा है और अपने आप को कुवें जागरूक और सफल बना है। तो आज की किसान वाणी अब इतना ही समाप्त होते है। आज्ञा दो अंशु तिलैठे को और स्वीकारो हमारी नेह और स्नेह भरी राम राम।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँ।

0: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसानवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
3: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा भारत की विरासत संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशिबाला। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
4: नमस्कार और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज की जो चर्चा है वो है भारत की विरासत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और भारत के आत्मविश्वास के बारे में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार निहारिका और हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशिबाला सीनियर इंडोलॉजिस्ट डीन सेंटर ऑफ इंडोलॉजी भारतीय विद्या भवन और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी मेंबर सेक्रेटरी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। पहले हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। हम अक्सर किसी भी सभ्यता को किताबों से तारीखों से इतिहास के माध्यम से या स्मारकों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन संग्रहालय उत्सव या विश्वविद्यालय एक नया तरीका है हमारी विरासत के करीब आने का, उसे समझने का और उसे वास्तव में अनुभव करने का। आज के जमाने में अगर मैं बात करूं तो भारत की विरासत के प्रति दृष्टिकोण किस तरह बदल रहा है और ये आम नागरिक के और करीब किस तरह आ रही है। डॉक्टर सच्चिदानंद, पहले आपसे शुरुआत करते हैं।
5: देखिए, क्या है संस्कृति को हमारे देश में जो समझने का तरीका रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि संस्कृति हमारी जीवन का ऐसा एक अविभाज्य अंग रहा है प्रारंभ से ही, जो लगातार समय के साथ साथ अपने आप को और परिष्कृत करती गई है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है नित्य नूतन चिर पुरातन, इस बात को कहा जाता है। तो हर बार उसमें एक न एक परिष्कार होता है, एवोल्यूशन होता है। तो अभी जैसे ही पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि संस्कृति को जानने और समझने का एक जो पूरा का पूरा नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो बदल गया है और किस तरह से संस्कृति हमारे चिंतन की मुख्य धारा में आ रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में भी संस्कृति को लेकर जो जागृति है, जो प्रेरणा है, वो और अधिक बढ़ गई है। चाहे फिर वो हमारे सिर्फ म्यूजियम्स ही नहीं है, म्यूजियम्स हैं, आर्काइव्स हैं, हमारी लाइब्रेरीज हैं, हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इतना ही नहीं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको सबको भी देखने का एक नज़रिया अभी पिछले कुछ समय में एकदम बदला है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत लोग आजकल, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो सोशल मीडिया पर संस्कृति की बात कर रहे हैं, अपने ग्रंथों की बात कर रहे हैं, अपनी परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो एक अलग तरह के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
4: और शायद मनोरंजन के तौर पे भी लोग और तरीके ढूंढने लगे हैं अपनी सभ्यता के और करीब आने के।
5: जी जी, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए हम देखते हैं कि जहां भी कहीं संस्कृति पर कोई कुठाराघात होता है या हमारी शाश्वत मान्यताओं पर जब कभी कोई कुठाराघात होता है तो लोग ही इसका प्रतिकार करते हैं, समाज ही इसका प्रतिकार करता है। इसलिए देखा गया कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, फिर वो चाहे हमारी परंपराओं की हों, हमारे मेलों की हों, व्रत की हों, त्योहारों की हो, अनुष्ठानों की हो, उनको लेकर एक सकारात्मक भाव, क्योंकि लोगों ने ये भी समझा कि इनके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, और इसकी

0: पीछे फैक्ट्स कैसे रहे, तो हमारे ग्रंथों से कैसे वो सारी चीजें आई। तो ये कुल मिला के संस्कृति को देखने का एक नया नजरिया, नवोन्मेष एक तरह से कहा जा सकता है।
1: डॉक्टर शशि, इसमें मैं एक विचार और जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल OTT के माध्यम से कई कहानियां हमारी सभ्यता

0: ये आप निश्चित समझ लीजिए कि क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। हम कहते हैं प्रतिक्षण जो एक नए नए वस्तुओं को अपने में संजो रही है, परिवर्तित भी हो रही है, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी अस्मिता, भारत की आत्मा, भारत की पहचान उसकी संस्कृति है। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है, और भारत की संस्कृति विलक्षण इसलिए है, क्यों? क्योंकि वो ऋषियों मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर है। जो उसकी अंतरधारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो आप बाह्य देखते हैं उसमें परिवर्तन होता है। पिछले दिनों हमारे विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में कुछ ये चर्चाएं, कुछ बच्चों को शिक्षण में कुछ ये ऐड किया गया कि आप इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर आइए, आप भारतीय ज्ञान परंपराओं की ओर ध्यान दीजिए। तो दूसरी ओर मैं ये देख रही हूँ कि जब हमारे देश के लोग बाहर अब अधिक जाने लगे, पहले भी जाते थे परंतु अब अधिक जाने लगे, वे देखने लगे भारत का कितना सम्मान है, क्यों है, कहाँ कहाँ हमारी संस्कृति बिखरी पड़ी है। लोग छोटी छोटी बातें भी देखते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। अरे इंडोनेशिया में रामायण है,
1: जी
0: अरे इंडोनेशिया में, थाईलैंड में रामायण है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जब उन्हें पता चलती हैं तो उनको एक स्वाभिमान जागृत होता है। दूसरा, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री गए यूरोप यात्रा पे, तो जब आइसलैंड आदि में गए वो लोग, तो वहां पर एक शब्द आया संबंध, कि
1: जी
0: आपकी भाषा में भी है, हमारी भाषा में भी है। तो लोगों में एक चेतना आई, जैसे कि हजारों शब्द सारी यूरोपियन भाषाओं में संस्कृत के बिखरे पड़े हैं, तो जब ये चर्चा के विषय बनते हैं। दूसरा, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर इतिहास के विषय में बहुत सी कहानियां आपने सुननी होंगी, तो युवा वर्ग उस ओर आकर्षित होने लगा, जाने लगा, तो एक उनमें क्रांति आ रही है। फिर भारतीयों ने बहुत अपमान सहा, जहां भी जाते थे हम, क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉलोनाइज्ड है, इतनी दास मानसिकता हो गई थी कि हम लोग सोचते थे जो बाहर है, जो विदेश में है,
1: वही
0: वही
1: अच्छा
0: अच्छा है।
1: है
0: परंतु जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ा पिछले 10-12 वर्षों में, जो भारत का सम्मान बढ़ा, वैसे वैसे भारतीयता का सम्मान बढ़ा, भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ा, और जैसे जैसे भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ता है तो हमारी युवा पीढ़ी को स्वाभिमान की अनुभूति होती है, आत्मविश्वास जागता है। फिर
1: बिल्कुल
0: उनको पता चलता है कि अच्छा, ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने विश्व को इतना ज्ञान दिया, तो उनके और आत्मगौरव की अनुभूति होती है। तो बहुत सारे कारण है, मैं कहना चाहूंगी, जिनके कारण से आज भारत में एक आपको क्रांति का सा, क्रांति नहीं कह सकते परंतु उसके जैसा,
1: उसके जैसा
0: क्योंकि
1: अनुभव।
0: मन बदले हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, क्योंकि केवल मटेरियलिस्टिक अप्रोच में आप कितना रहेंगे। उनको इतने मन ठीक करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए इतनी टेंशन है, उससे रिलैक्सेशन के लिए तो वो योग पर जाते हैं, ध्यान पर जाते हैं,
1: जी
0: मंदिरों में जाते हैं, उनको कहीं उसकी अनुभूति होती है, तो उन्हें शांति मिलती है। आज का व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है, पैसा बहुत हो गया लोगों के पास, पर शांति कहीं खो गई।
1: यानी संस्कृति और सभ्यता एक नया कारण बन गई है आत्मविश्वास और शांति के लिए। आत्मविश्वास की बात करेंगे, इन दोनों उत्तरों में बहुत ही खूबसूरत बातें निकल के आई, लेकिन पहले हम आत्मविश्वास की चर्चा कर लेते हैं। हम अक्सर सांस्कृतिक आत्मविश्वास की जब बात करते हैं तो उसकी क्या परिभाषा होती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो परिभाषा किस तरह आपको बदलती हुई नजर आ रही है? और इसमें एक विचार हम और ये जोड़ सकते हैं कि जितना सम्मान हम अपनी सभ्यता संस्कृति को देंगे, शायद वैश्विक स्तर पर उतना ही सम्मान और लोग भी इसे देंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद, आपका क्या कहना है इस
2: ये
1: बारे
2: देखिए,
1: में?
2: आपने बड़ी अच्छी बात कही, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, इसकी जड़ें कहाँ हैं। आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब ब्रिटिश आए थे और ब्रिटिश हुकूमत ने ये सोचा कि हम भारत पर कैसे हम पूरा राज कर सकते हैं, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से महसूस हुई कि यहाँ इस देश की सांस्कृतिक जड़ें, जैसा भी प्रोफेसर शशिवाला जी भी बता रही थी कि सांस्कृतिक जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उनका, लोगों का विश्वास डिगाना बहुत कठिन है। संस्कृति की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, इसलिए बार बार हम किसका नाम लेते हैं, लॉर्ड मैकाले का नाम लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने इस बात को समझा, और इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लाया। उसमें उन्होंने कहा ही ये कि भारतीयों को अगर किसी तरह से जीतना है तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमें उनकी सांस्कृतिक जड़ों को खोखला करें, उनके सांस्कृतिक आत्मविश्वास को डिगाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में तो उर्दू और संस्कृत में जो ग्रंथ हैं वो तो ब्रिटेन में, यूरोप की किसी भी एक बड़ी लाइब्रेरी की एक कोने में समा जाएं, इतनी उनकी वर्थ है, इतना ही उनका मूल्य है। इस तरह के न्यूनता बोध से शुरू किया। फिर उन्होंने जो हमारी हर एक चीज़ में कहा कि भाई इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ना आपके मान्यताओं में कोई लॉजिक है, ना आपकी परंपराओं में लॉजिक है, ना आपके शास्त्रों में लॉजिक,

0: ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी पीढ़ी के अंदर, तत्कालीन पीढ़ी के अंदर डालना शुरू किया, वहाँ से न्यूनता बोध प्रारंभ हुआ। तो ये जो इस समय का काल है, जब हमने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की, आपने देखा होगा आज़ादी के बाद भी कई वर्षों तक भारतीय ज्ञान परंपरा की उस तरह से बात नहीं की गई।
1: बिल्कुल
0: ये आप देख रहे हैं कि पिछले 12-14 साल में लगातार ऐसा हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शोध हो रहे हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से बातें लोगों के सामने ला रहे हैं। तो यानी क्या हुआ कि ये समझ में आया कि जो बातें हमको न्यूनता बोध दिलाती थी अनावश्यक रूप से, ये समझ में आया कि नहीं, उन सबके पीछे तर्क था, उन सबके पीछे शास्त्र था, उन सबके पीछे विज्ञान था, और इसलिए ये सारी बातें फिर से लौट के आई। यही है जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास जिसकी आप बात कर रहे हैं।
1: यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगी कि किसी भी संस्कृति की पहचान होती है उसकी भाषा और उसकी कहानियां, और कहानियों को सामने लाने का एक माध्यम होता है संग्रहालय। पिछले कुछ सालों में जैसे आपने जिक्र किया कि कई तरीके से कई सारी कहानियां, कई सारे शास्त्रों की बातें सामने आई हैं, और उसमें से दो महत्वपूर्ण ऐसे संग्रहालय हैं जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय यानी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। और संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कहानियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो संग्रहालय एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कितना महत्वपूर्ण जरिया है आपके नजरिए से?
0: पहले तो इस बात को समझना होगा कि भारतीय संस्कृति एक अलग तरह की संस्कृति थी। हमारे जैसे मंदिर हैं, मठ हैं या और भी सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ पर भी हम समाज की जो एक कलेक्टिव मेमोरी है उसको हम संग्रहित करके रखते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी कई बार उत्कीर्ण बहुत सारे शिलालेख होते थे, बहुत सुंदर से म्यूरल्स बनाए जाते थे, ये भी एक तरह का संग्रहालय था। लेकिन जब ये संग्रहालय शास्त्र हमारे समाज में आया, तब से हमने संग्रहालय को भी बहुत अच्छी तरह से अंगीकृत किया। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई जिसमें हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की। भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका जीवन कैसा था, उनका संघर्ष कैसा था, उन्होंने अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया, इसका पूरा का पूरा दस्तावेज उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिलता है। न सिर्फ दस्तावेज मिलता है, आपको उसके साथ अपने आप को इंटरेक्ट करने का, संवाद करने का भी अवसर मिलता है,
1: और शायद इतिहास को एक नए नजरिए से परखने का।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और आप उनके साथ जब संवाद करते हैं तो आप उनके साथ एक अपना एक जीवंत संपर्क बनाते हैं। तो कई लोग उससे अचंभित भी होते हैं कि अरे इनके बारे में तो मुझे ये मालूम ही नहीं था, इनके बारे में तो मैंने ये जानकारी ही नहीं ली थी। तो अपने आप में वो एक प्रधानमंत्री संग्रहालय उस तरह से परिपूर्ण हुआ। दूसरा, ये जो आपने कहा जनजातीय हमारे जो गौरव थे उनके आधार पर जो संग्रहालय बनाना, क्योंकि क्या हुआ कि जब स्वाधीनता संग्राम की बात आई तो फिर कुछ गिने चुने लोगों को ही स्वाधीनता संग्राम का श्रेय दिया जाने लगा। हम ये भूल गए, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया तब उन्होंने कहा था कि हम इसमें ऐसे गुमनाम या जो भुला दिए गए उन तमाम योद्धाओं को भी याद करने का प्रयास करें। और इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक तरह का एक आंदोलन हो गया कि हम ढूंढे हमारे ऐसे कौन कौन से योद्धा थे। अभी आप जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं, ये जो हमारा मानपुर का विद्रोह है उसको कोई जानता ही नहीं था, उसमें 1500 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी को पता ही नहीं था। तो ये जो बातें आई तो इसलिए उनके जीवन पर एक गौरव गाथा उनकी मालूम पड़े, इसलिए हमारे देश में जनजातीय संग्रहालयों की ये जो योजना बनाई गई, इन तमाम योद्धाओं की जीवन गाथाएं वहां पर आए, लोग समझें कि कहां कहां किस किस क्षेत्र में हमारे किस किस महान योद्धा ने काम किया। तीसरा, एक बहुत बड़ा संग्रहालय जो अभी बनने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वो है युग युगीन भारत, जो कि संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।
1: अगर हम मंदिरों की बात करें तो काशी, अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, उज्जैन, केदारनाथ, आज के जमाने में ये तीर्थ स्थान हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये इकोलॉजी का एक रूप है, ये कंजर्वेशन का एक रूप है, ये अर्बन डेवलपमेंट का भी एक रूप है। इन सब चीजों में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है और ये हमारी संस्कृति के लिए कितने आवश्यक है?
2: हमारे यहाँ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, हमारे यहाँ धर्मोदय और ज्ञानोदय दोनों का स्थान होता था। मंदिरों के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता था, उनके साथ शिक्षा व्यवस्थाएं भी होती थी, उनके साथ धर्म ग्रंथ भी जोड़े जाते थे, उनके साथ विद्वान जुड़े हुए होते थे, बहुत कुछ होता था, समाज कल्याण के भी काम होते थे, और समाज कल्याण जो है वो हमारे धर्म का आधार था, आज भी है। हम लोग दान और तप त्याग जो भारत की संस्कृति का भाग है वो किसी देश में नहीं है। तो मंदिर जो होते हैं, आप बहुत सारे मंदिरों में जाएंगी तो आप देखेंगी कि बहुत कुछ उत्कीर्ण है, परंतु उसको डीकोड करने की भी आवश्यकता है। तो जितने भी म्यूजियम हमारे हैं उन

0: और अधिक एक्टिवेट किया जाना चाहिए, ये देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश का जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ दिल्ली में ही जनपद पर है, बहुत कुछ एक्टिवेट करने की और ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमें अपने संग्रहालयों को और अधिक पुष्ट करने की और अधिक ज्ञान से प्राणवंत करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो देश की आवश्यकता है। हम केवल ऐसा नहीं कि एक म्यूजियम में आप गए, आपने ये मूर्तियां देखी, ये पेंटिंग्स देखी, उसका आपने एक फिजिकल रूप देखा और फिजिकली समझ लिया, नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, आध्यात्मिकता है, दर्शन है, ज्ञान है। मूर्ति कोई एक सुंदर वैसे ही कोई पीस ऑफ आर्ट नहीं है, इट्स नॉट मेड बाय कनोइजर्स ओनली। कहीं किसी मूर्ति में आपको नाम नहीं मिलेगा स्कल्प्टर का, किसी मंदिर में नहीं मिलेगा कि स्कल्प्टर कौन था, वो मूर्तिकार
1: जी
0: जो प्राणवंत कर देते थे और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, फिर भक्तों को उससे शक्ति मिलती थी। तो मंदिर हैं, ये सब कुछ हमारी देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जापान में एक को नोबेल प्राइज मिला है फास्टिंग पर, ईटिंग द सेल्फ या कुछ करके कुछ टाइटल था। हमारे यहाँ व्रत उपवास की परंपरा इतनी प्राचीन है, पर हम उसका साइंटिफिक रीजंस, उसका हमारे शरीर को क्या लाभ होगा, उसको हम नहीं बता पा रहे हैं।
1: शायद वो कहीं खो के रह गए हैं।
0: खोए नहीं है, उनको हमें पुनः एक ऐसे पटल पर लाने की आवश्यकता है जहाँ दुनिया देखे। जैसे मैं एक रूसी सहेली से बात कर रही थी एकादशी के विषय में, बता रही थी, शी सेड बट आई फास्ट ऑन एकादशी, तो शी वाज सो हैप्पी, बहुत उसको प्रसन्नता हुई बताने में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत भक्त हैं, भारत के मित्र हैं, भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, और अधिक से अधिक यदि हम अपनी संस्कृति के विषय में लोगों को जागृत करें, उनकी इच्छा है वो करना चाहिए।
1: यहाँ मुझे अंग्रेजी की एक बहुत खूबसूरत कहावत याद आ रही है, कहा जाता है एजुकेशन इज दैट विच कंपेल्स यू टू थिंक, नॉट मेयरली द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। शब्द शायद थोड़े इधर उधर होंगे, लेकिन ले दे के बात एक ही है कि आगे की पीढ़ियों को एजुकेट करने की जरूरत है। उसका एक माध्यम हो गया मंदिर, एक माध्यम हो गया संग्रहालय, और एक माध्यम और है विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में स्थित है और दुनिया भर के विद्वानों को विद्वान बनाने में नालंदा का किसी ना किसी तरह से योगदान रहा है। आज फिर एक बार नालंदा की चर्चा उठती है जब हम संस्कृति की बात करते हैं, और डॉक्टर सच्चिदानंद आपके विचार मैं इस पे जानना चाहूंगी।
2: हम जानते हैं कि जब प्राचीन भारत के समय में भारत के विश्वविद्यालय ऐसे हुआ करते थे जहां पूरे विश्व से लोग आते थे, चाहे वो नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, चाहे वल्लभी हो, चाहे उज्जैनी हो, तमाम विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से लोग आए, उन्होंने पढ़ाई की, और बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, कहीं 20,000 कहीं 50,000 इस तरह के वहां पर विद्यार्थी हुआ करते थे। और जब आप आज भी नालंदा के वो खंडहर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये इतना विस्तृत, इतना बड़ा परिसर इसी विश्वविद्यालय का होगा, यानी कितने सारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते होंगे, किस किस तरह की यहाँ पर शिक्षा ली जाती होगी। तो ये हमारी जो हमारे ज्ञान परंपरा का ये वैभव रहा है। लेकिन ये भी सोचा गया कि जब हम हर बार बात करेंगे तो क्या हम हर बार नालंदा के खंडहर ही दिखाएंगे क्या आधुनिक भारत में, या सिर्फ हम बख्तियार खिलजी को ही पोसते रहेंगे कि उन्होंने ये सारा विध्वंस किया, या हम कुछ नवनिर्माण भी करना चाहते हैं, ज्ञान के नए केंद्र भी खोलना चाहते हैं, ऐसे केंद्र जहाँ पर ज्ञान की नई नई विधाओं का विस्तार हो, नई नई बातें वहाँ पर हो, नई नई चर्चाएं वहाँ हो। इसलिए आपने देखा कि आज जो नालंदा विश्वविद्यालय बना है वो अपने आप में एक नया विश्व के लिए एक नया प्रतिमान बना है, एक अपने आप में एक अपना एक स्टैंडर्ड उसने स्थापित कर दिया कि ऐसी वास्तु, ऐसा भव्य परिसर, ऐसी सुंदर वहाँ सुविधाएं कि वहाँ कोई भी शोधार्थी, कोई भी ज्ञानार्जन के लिए गया हुआ व्यक्ति अपने आप को उसके साथ जोड़ सके, उस पूरे परिसर की उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसका जो स्पंदन है, उसके साथ वो जोड़ सके, इसलिए वो पूरा विश्वविद्यालय उस तरह से है। और वहाँ पे फिर नए नए विषयों के ऊपर शोध, नए नए विषयों के ऊपर नवाचार, ये सारी बातें वहाँ हो रही हैं। और सिर्फ नालंदा का ही विषय नहीं है, देश में आज IITs की संख्या कितनी हो गई। आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले तक सिर्फ 5 या 6 IITs हुआ करते थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भी संख्या बहुत सीमित थी। आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत सीमित संख्या में हुआ करते थे। आज देश में कितने सारे IITs खुल गए हैं, कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं, कितने एम्स खुल गए हैं, इसके साथ ही आईसर, सोशल साइंस रिसर्च और साइंस रिसर्च, इस पर भी पढ़ाई करवाने के लिए संस्थान खुल गए हैं जहां वहां पे एक नई तरह की पढ़ाई हो रही है। टेक्नोलॉजी के लिए IIIT कितने सारे खुल गए हैं ताकि टेक्नोलॉजी की बात हो और श्रेष्ठतम बातों के ऊपर चर्चा हो, आधुनिकतम ज्ञान की चर्चा हो। कौन था, आप देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 15 अगस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की।

0: कि भारत सेमीकंडक्टर की फील्ड में जाएगा, अपने चिप का निर्माण करेगा। कब सोचा था हमने कि भारत अपने चिप का निर्माण करेगा? आज आप जानते हैं 140 करोड़ का हमारा देश है। सबसे बड़ी लड़ाई पूरे विश्व में आज जो हो रही है वो डिजिटल डेटा की हो रही है। डेटा पे जिसका प्रभुत्व होगा वो पूरे विश्व पर राज करने वाला है, हम आप सब देखते हैं। तो आज भारत ने ये सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हम अगर सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे, चिप बनाएंगे, तो डेटा हमारा होगा, डेटा पर प्रभुत्व हमारा होगा, तो फिर हम पर कोई राज नहीं कर सकता, फिर हम दुनिया पर राज करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो एक शिक्षा का एक, ये जो एक नवाचार है, इसको सोचने की जरूरत है। सिर्फ विश्वविद्यालय खोलना नहीं, विश्वविद्यालयों में कौन सा ज्ञान दिया जाएगा, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक तरह से सारे ज्ञान का अमलगमीशन कराती है। भारतीय ज्ञान परंपरा भी है और आधुनिकतम ज्ञान भी है, दोनों को साथ लेके चलती है। वहां आपको संस्कृति का ज्ञान भी है, वहां पर विज्ञान का भी ज्ञान है। तो जिस तरह से भारत की पुरानी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जहां पर हम एक संपूर्ण विकास, विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की बात करते थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हम उस होलिस्टिक डेवलपमेंट को पाना चाहते हैं, इसलिए हम हमारे शैक्षणिक संस्थानों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।
1: मेरा ख्याल है हर विषय को एक जगह मिल गई है हमारे विश्वविद्यालयों में, जो कि पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था, पहले भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की शिक्षा दी जाती थी, चाहे कोई भी राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, एक, क्योंकि अगर एक किंगडम किसी को चलाना है उसे हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए।
0: नहीं, वैसा ही नहीं है। देखिए, कंपार्टमेंटलाइजेशन खत्म हो गया। पहले अगर कोई बच्चा या बच्ची मेडिसिन का कोर्स कर रहा है तो फिर उसको इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो संगीत का एक ऑप्शनल ले ले या विजुअल आर्ट का कोई ऑप्शनल ले ले। आज ये सुविधा है ना कि सिर्फ आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, आप सिर्फ मेडिसिन के विद्यार्थी नहीं है, आप संगीत भी सीख रहे हैं, आप विजुअल आर्ट भी सीख रहे हैं, आप सिरेमिक्स भी सीख रहे हैं, आप सिर्फ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नहीं है, आपको लगता है तो आप थोड़ा सा साहित्य का भी पढ़ रहे हैं कुछ तो भी। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपकी सारी ज्ञान की जो चक्षु हैं, ज्ञान की जो सारी दिशाएं हैं, वो खुली रहना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात है। आज भारत के पास पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हैं और ये युवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। आप भी जानते हैं कि अगर ये युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, प्रेरित होंगे, तो ये पूरे विश्व पर एक तरह से अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। तो इसलिए उन युवाओं को श्रेष्ठतम अवसर प्राप्त हों, ये बात हमने जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सोची और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर नए नए कोर्सेज की बात करके, नवाचार की बात करके उनको इस दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: एक सवाल मेरा आप दोनों से है और वो ये है, रण उत्सव जैसे उत्सव जो हैं वो जीवन संस्कृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, तो अगर मैं अपने देश के बाकी राज्यों की भाषाओं को, उनकी जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करूं या फिर केवल समझने की कोशिश करूं, क्या वो मुझमें राष्ट्रीय जुड़ाव की एक अधिक भावना जागरूक कर सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: भारत में ये देखा जाता है, हम लोग भारतीय जहाँ भी जाते हैं कहते हैं मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तमिल हूँ, परंतु हम सब भारतीय हैं, ये विलक्षण बात है। उसके पीछे बहुत सारा आधार है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, संपूर्ण भारत ज्ञान संस्कृति और बहुत सारे संस्कृति के आयाम उनके माध्यम से एक है। स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, हम लोग बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, अनेक उत्सवों का उदाहरण आपको दिया जा सकता है। तो भारत कभी भी बटा हुआ नहीं था और भारत की आत्मा उसकी संस्कृति है, उसका ज्ञान है, जिसके आधार पर भारत भारत है। और मैं तो एक बात और कहती हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं अरे इंडिया कहा या भारत कहा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कहती हूँ नहीं। फिर आज हम केवल नालंदा, तक्षशिला, उदयपुरी, विक्रमशिला इत्यादि थोड़े से जो हमें पता है उन विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं, परंतु आप थोड़ा सा इतिहास के पन्ने उलटकर देखिए कि भारत में जो विज्ञान था, जो वैज्ञानिक दिए, वो किसने दिए? वो आश्रमों और गुरुकुलों ने दिए। जब अंग्रेज आए, ये तो हमारी प्राचीन परंपराएं रही, अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम खत्म किया। उस समय पूरा भारत 100% शिक्षित था, आज हम कहते हैं प्रतिशत ढूंढते हैं कितना भारत कितने प्रतिशत शिक्षित है, तो एक सारी व्यवस्था जो है उसको बदल दिया गया। आज हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग और उसकी बहुत सारी बातें चर्चाएं करते हैं, परंतु गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता था तो पहले उसका पूरा टेस्ट लिया जाता था। हम कहते हैं द्विज जो विद्यार्थी होता था उसको कुछ समय आचार्य केवल अपने मन में रखता था कि ये इसके अंदर क्या योग्यता है और यथा योग्यता के अनुसार मुझे इसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो वो उस समय था, आज भारत में उसके लिए हमें बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। जो उस समय की व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई या समाप्त कर दी गई।

0: कुछ भी कह सकते हैं। तो भारत का वैज्ञानिक योगदान हमारे गुरुकुलों और आश्रमों से भी आया है। विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्तर के थे, गुरुकुल और आश्रमों की हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। आज यदि हमें अपने बच्चे को गुरुकुल या आश्रम में भेजना है तो हम सोचने में पड़ जाते हैं, परंतु उस व्यवस्था के प्रति हमारे मन में आदर तभी आएगा जब हम उनके इतिहास के विषय में जानेंगे।
1: ये जो आपने भाषा की बात कही उसमें मैं दो चीजें जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि वो आज की चर्चा के लिए शायद वो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये विचार आया माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में।
2: मैं इसी का जिक्र करने वाली थी। पहले हम कहा करते थे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी।
1: हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया उसमें, देखिए कि उन्होंने युग्म बनाए, दो दो राज्यों की युग्म बनाए। अगर आप गुजरात है तो गुजरात के साथ पांडिचेरी है, पश्चिम बंगाल है तो उसके साथ तमिलनाडु, यानी क्या किया कि इन प्रांतों के बीच में आपस में मेल जोल बढ़े, इन प्रांतों के लोग आपस में मिले, एक दूसरे के साथ बात करें, संवाद करें, कार्यक्रम आयोजित करें, तो उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को जानने की बात होगी। फिर काशी तमिल संगम प्रारंभ किया। ये काशी तमिल संगम अपने आप में एक बहुत ही अभिनव योजना थी, क्योंकि जैसा तीर्थ यात्रा के लिए तमिलनाडु के लोगों का काशी आना या काशी के लोगों का तमिलनाडु या अन्य दक्षिण प्रांतों में जाना एक आम बात थी, लेकिन एक दूसरे की संस्कृति को जानना, एक दूसरे की परंपराओं को जानना, साथ में रहकर उत्सव मनाना, ये पिछले कुछ सालों से काशी तमिल संगम के रूप में काशी में प्रारंभ किया गया और उसमें इतनी अपार सफलता मिली। बहुत सारी बातें लोगों को काशी तमिल संगम के माध्यम से सीखने को मिली। अभी एक और नवाचार हुआ है, अलग अलग राज्यों के जो लोक भवन हैं जहां पर माननीय राज्यपाल रहते हैं, अब वो राज्यपाल उस राज्य के जो राज्य दिवस होते हैं उनको अपने लोक भवन में मनाते हैं। ये अच्छा। कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि केरल के माननीय राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश दिवस है, तो केरल के राज्यपाल अपने लोक भवन में मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे और उस दिन मध्य प्रदेश का खान पान, मध्य प्रदेश की परंपराएं, मध्य प्रदेश का गीत, ये सब होगा। यानी केरल के लोगों को मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में जानने समझने का अवसर मिलेगा, या पंजाब के। तो इस तरह से ये अलग अलग नवाचार करके देश को एकता के सूत्र में फिर से मजबूती से बांधे रखना, या तीन भाषा का अभी जो एक सूत्र आया है जिसमें तीन भाषाएं पढ़ना विद्यार्थी को अनिवार्य है, उसके आधार पर वो विद्यार्थी अपनी एक मातृभाषा भी ले सकता है, एक अन्य भारतीय भाषा भी ले सकता है, इसके आधार पर पढ़ाई करेगा विद्यार्थी, या मातृभाषा में शिक्षा भी, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की तो मातृभाषा में शिक्षा करना, इंजीनियरिंग के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं, मेडिकल के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं। यानी आप देखिए कि हम कहां से कहां सोच है, इस बारे में विचार करना चाहिए था कि अब हमने अपने आप को कहां तक पहुंचा दिया है।
3: एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है
2: जी। और इसी में एक बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी, प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था कि द बेसिस ऑफ लिटरेचर इज लाइफ। सो जैसा हम जीवन को परखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, वैसा ही हमारा साहित्य होगा। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसकी कड़ी और कई विचारों से और शब्दों से जोड़ी जा सकती है। पहला सवाल जो है वो पीपल्स पद्मा पर है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि पीपल्स पद्मा लोगों का ध्यान केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों से हटाकर उन लोगों की ओर ले जाता है जो समुदाय में चुपचाप महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा विचार ये है कि अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है तो उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है और इसे किस तरह हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचा सकते हैं?
1: देखिए, पीपल्स पद्मा की जो बात आपने कही, अभी तक ये जो राष्ट्रीय अलंकरण होते थे, चाहे वो हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे जो थे, ऐसा लोगों को लगता था कि एक निश्चित अभिजात वर्ग के लोगों तक ही वो सीमित थे, क्योंकि उनकी जो चयन प्रक्रिया थी वो भी बहुत पारदर्शी नहीं थी। और फिर जो लोग चुने जाते थे, बहुत बार ये धारणा होती थी कि अच्छा इनको तो मिलना ही था क्योंकि ये एक उस अभिजात वर्ग से आते हैं। तो ये एक सामान्य लोगों से बिल्कुल कट के ये राष्ट्रीय अलंकरण रह गए थे। इसका जब से लोकतांत्रिकरण हुआ, आवेदन मंगाए जाने लगे, पोर्टल पे आवेदन आने लगे और लोगों से कहा गया कि आप अपना आवेदन ऐसे

0: व्यक्ति का भी नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्होंने समाज के क्षेत्र में कुछ किया है। और ऐसे में हमने देखा कि ऐसे ऐसे समाज के क्षेत्र के लोग जो अपने कहीं दूर किसी अंचल में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, जैसे बीज बचाने का काम करने वाली कोई हमारी माई है जो हमारे मौलिक बीजों को बचा रही है कृषि के लिए ताकि हमारी जो मौलिक फसल है वो आगे जिंदा रहे, या कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल अपने सीमित संसाधनों से एक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं, मतलब किसी को पेंशन मिली है वो पूरी की पूरी पेंशन झोंक के पब्लिक लाइब्रेरी बना रहे हैं, या कोई है जो हमारी पारंपरिक दवाइयों को अपने खर्चे पे ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंची। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना जब शुरू किया गया और खोजा गया कि भाई ऐसे लोग जिनके पास कई बार पैर में पहनने की चप्पल तक नहीं है, वो लोग अपने पूरा का पूरा जीवन दूसरे के उत्कर्ष में लगा रहे हैं, तो क्या एक अच्छे देश का ये कर्तव्य नहीं कि हम उनको सम्मानित करें, हम उनको जनता के प्रकाश में लाएं कि जनता देखे उनको कि ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में। तो ये पीपल्स पद्मा की जो अवधारणा आई और इसकी प्रक्रिया में हमने देखा कि एक ऐसा व्यापक समुदाय जुड़ा और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हाँ ये हैं हमारे सही हीरोज, ये हैं हमारे राष्ट्र के नायक जिनका अनुकरण हमें करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी पहल, और इसलिए आप देख रहे हैं कि हर साल पद्मा के लिए नॉमिनेट करने वालों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे तमाम लोग उसमें रुचि ले रहे हैं। अब जो लोग हमारे पद्मा अवार्ड विनर्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में हैं, अब समाज में उनके प्रति देखने का नजरिया एकदम बदल गया है, एक अलग तरह का सम्मान है, और न सिर्फ उन अवार्डीज के प्रति बल्कि ऐसे अनेक लोग जो काम कर रहे हैं उनके प्रति भी समाज का एक बहुत सकारात्मक, बहुत सम्मानजनक नजरिया होगा।
1: जी डॉक्टर शशि, आप क्या कहेंगी
2: जी? मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हम प्रसिद्ध लोगों को प्रसिद्ध कर रहे थे, अब हम समुद्र मंथन कर रहे हैं। समाज का आलोडन होता है और उसमें जो सेल्फ नॉमिनेशन है उसको भी एड कर दिया गया है, जिससे कि ये आत्मस्तुति नहीं है परंतु व्यक्ति ने यदि कोई कार्य किया है तो देश के समक्ष आने का एक साधन बना है। तो इससे क्या है कि अनेक प्रकार के लोग जो अनजाने हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनके कार्य को कोई नहीं जानता, वो उनके नाम उभर कर आ रहे हैं और उनको उससे मनोबल मिलता है। वो कोई एकमात्र अलंकरण नहीं होता, उससे व्यक्ति को मनोबल इतना मिलता है कि अच्छा मुझे इस कार्य के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया गया, अब मेरे ऊपर और बहुत बड़ा दायित्व आ गया है, मुझे और बढ़ चढ़ कर ये कार्य करना है, तो वो और बढ़कर करता है। दूसरा आपने प्रश्न किया संस्कृति के विषय में, संस्कृति का अध्ययन जो है वो भी हमारी पीढ़ी को और करना पड़ेगा, हमारे से अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी भी आ गई है। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ देखती हूँ तो मुझे ये ऐसा अनुभव होता है कि संस्कृति का अध्ययन करके ठीक से लॉजिकली और एक ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को देंगे तो बच्चे तैयार हैं, अगली पीढ़ी तैयार है। यदि हमने नहीं दिया तो हम चूक जाएंगे, बहुत सा ज्ञान विस्मृत हो जाएगा।
0: 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा की थी उसमें एक प्रण था अपनी विरासत पर गर्व
1: जी।
0: तो यही मुझे लगता है कि बॉटम लाइन है, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी विरासत पर गर्व करें और अपनी पीढ़ी को भी एक ऐसा वातावरण दें कि वो भी अपनी विरासत पर गर्व कर सके, तो वो संस्कृति को आगे ले जाएंगे।
2: और वो विरासत पर गर्व तब होगा जब हमें उसकी महानता का ज्ञान होगा।
1: शायद हमारा एक गोल, हमारा एक इंटेंशन इस चर्चा के जरिए वही था कि अपनी विरासत की महानता को सामने लाया जाए। ये हमारी स्पेशल सीरीज है जन सेवा से देश सेवा, और संस्कृति के कई ऐसे विचार हैं जो शायद अगली वार्तालाप में हम जिनका जिक्र करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, भारत की विरासत, संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशि बाला। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत।

हादसा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अमित कुमार और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी एमजी हशमत की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसमें स्वर दिया है अमित कुमार और उदित नारायण ने। शब्द रचना मजरू की है और संगीत जतिन ललित का, और फिल्म है कभी हाँ कभी ना।

अमित कुमार और उदित नारायण के गाए फिल्म कभी हाँ कभी ना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
4: स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए,
3: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात PM जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
5: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को

0: बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
1: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
0: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
2: मेरा नाम मुकेश भाई नाइका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
0: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपये के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उप निदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
4: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
3: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की

पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की असलाहत में भारत और अफ्रीका के लिए और ज़्यादा नुमाइंदगी पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने फ्लाई दुबई के हवाई जहाज में कैप्टन स्मिथ नचार पर हमले की तहकीकात के लिए केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज के मकाम पर जाने की कोशिश करने वाले कई अफराद को हिरासत में लिया। बीजेपी ने कहा है कि ज़िमनी चुनाव में उसकी कामयाबी से जमहूरियत में एतमाद को तकवीत मिली है। पार्टी ने अपोजिशन पर एहतजाज के जरिए अवाम की जिंदगी में खलल डालने का इल्ज़ाम लगाया है। यूक्रेन के ज़ाफ्रज़िया खित्ते में रूस के हमलों में 15 अफराद मारे गए हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को हिदायत दी है कि वो 16 अक्टूबर से रोजाना मतलूबा 99% CRR यानी कैश रिजर्व रेशो बरकरार रखें। और खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की असलाहत पर जोर दिया है और कहा है कि आलमी सतह पर फैसला साजी के अमल में भारत और अफ्रीका पीछे नहीं रह सकते। अदीस अबाबा में अडवा विक्ट्री मेमोरियल म्यूजियम में एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों नौइयत की रुकनियत में मुनासिब अफ्रीकी नुमाइंदगी पर जोर दिया और अफ्रीकी यूनियन के लिए मुस्तकिल रुकनियत की खातिर 2023 में G20 की भारत की सदारत के दौरान की गई कोशिशों का तذکرہ किया। तीन अफ्रीकी मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा तजारती साझीदार रहा है और दो तरफा तजारत $1 खरब के करीब पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी खित्ते में भारत की मदद से चलने वाले 220 से ज्यादा तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए हैं जिनकी मालियत $4.5 अरब है। उन्होंने भारतीय कारोबारी अफराद से जोर देकर कहा कि वो अफ्रीकी बर्रे आजम में सरमायाकारी करें। साथ ही उन्होंने खुराक की यकीनी फराहमी, ज़राअत और पायदार तरक्की के शोबों में ज्यादा इश्तराक पर भी जोर दिया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने फ्लाई दुबई की एक परवास के दौरान गुज़िश्ता महीने कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की तहकीकात के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। ये केस हाईजेकिंग की रोकथाम से मुतालिक कानून 2016 और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून 1967 के मुतालिक जाबतों के तहत दर्ज किया गया है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन मच्छर पर गुज़िश्ता महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अबीब की फ्लाई दुबई की परवास के दौरान उनके को पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था और वो संगीन तौर पर जख्मी हो गए थे। उस परवाज में 27 बच्चों समेत 174 मुसाफिर सवार थे। दुनिया भर के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कैप्टन मच्छर की दलेरी की सताइश की जिन्होंने जख्मी होने के बावजूद मुसाफिरों को बचाया। दिल्ली पुलिस ने आज कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया जो जंतर मंतर पर एहतजाज के मकाम पर जाने की कोशिश कर रहे थे। कल दिल्ली पुलिस ने CJP के एहतजाज के लिए इजाजत नहीं दी थी। जिन अफराद को हिरासत में लिया गया था उन्हें रफ्ता रफ्ता रिहा किया जा रहा है। इंतखाबी कमीशन के खिलाफ CJP के एहतजाज के मद्देनजर कौमी राजधानी में सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था। दिल्ली पुलिस के अफसरों और अहलकारों के साथ साथ नीम फौजी अमले के अहलकारों को भी तैनात किया गया ताकि अमन कानून की किसी भी तरह की खिलाफवर्जी को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में अमन कानून की मौजूदा सूरत हाल और इम्तनाई अहकाम का हवाला देते हुए मुजाहरे की इजाजत नहीं दी थी। अमन कानून शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस अवाम के साथ सरगर्म राबता कायम किए हुए है और उनसे जोर देकर कहा है कि वो किसी तरह के गैर कानूनी एहतजाज में शामिल न हों। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के एहतजाज में लोगों का शामिल होना भी गैर कानूनी होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अमन कानून बरकरार रखने की खातिर मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और पड़ोसी रियासतों की पुलिस फोर्सेज समेत सभी एजेंसियों के साथ तालमेल कायम किए हुए है। जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि मजमू एतबार से हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर हरमीत सिंह कालका ने गुरुद्वारा बंगला साहिब के अहाते में मुजाहिरीन के दाखिल होने के बाद वहां पुलिस को दाखिल होने की इजाजत देने के मामले पर आम आदमी पार्टी के कुछ रहनुमाओं की जानिब से

0: पास से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सिमत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि पीएम जनधन योजना के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से आगाज किए जाने के बाद से प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत की इक्तसादी शमूलियत के मामले में एक अहम संगे मेल के तौर पर उभरी है। 59 करोड़ से ज्यादा जनधन खातों के साथ ये स्कीम दुनिया भर में इक्तसादी शमूलियत की सबसे बड़ी पहल बन गई है। इस स्कीम ने हर कुनबे को बैंकिंग तक रसाई फराहम की और ये फायदे की बराह रास्त मुंतकली के लिए एक अहम बुनियाद बनी। फलाही स्कीमों के फराहमी में गड़बड़ियों के रोकथाम से इसने तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए की बचत करने में मदद की। गुज़िश्ता महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना भारत के बैंकिंग मंजरनामे में यकसर तब्दीली साबित हुई है और आज मुल्क का हर कुनबा बैंकिंग निजाम से मरबूत है।
2: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे, महिलाएं थी, माइग्रेंट लेबर थे, स्टूडेंट थे। इसलिए हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है।
1: गुजरात के रहने वाले मुकेश नायक ने कहा कि उन्हें मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमों के फायदे अपने जनधन खाते में मौसूल हो रहे हैं।
3: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इक्तसादी शमूलियत की पहल के तौर पर ये स्कीम लाखों महरूम शहरियों के लिए बैंकिंग तक रसाई को नए सिरे से तश्कील दे रही है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुजवजा अबूरी तजारती समझौते को बदलते हुए हालात की रोशनी में हतमी शक्ल दी जाएगी। आज नई दिल्ली में तिजारत और सनत के ऐवान पीएचडी सीसीआई के अरकान से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में जिस फ्रेमवर्क का ऐलान किया गया था अमेरिका के टैरिफ मंजरनामे में तब्दीलियों के तनाजुर में इसका फिर से जायजा लिया जा रहा है। यूक्रेन के ज़ेफ्रोजिया खित्ते में रूस के हमलों में कम अज कम 15 अफराद मारे गए जबकि 16 जख्मी हुए। इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबराह मिखाइलो सेमेकिन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस खित्ते में रूस ने रिहायशी इमारतों पर बमबारी की। रूस की फौजी कार्रवाई शुरू होने के बाद से रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई को 4.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से रोजाना 99% जरूरी कैश रिजर्व रेशो बरकरार रखने की जरूरत होगी जो इस वक्त 90% है। बैंकिंग निजाम में मौजूदा नकद रकम की दस्तियाबी की सूरत हाल के जायजे के बाद यह फैसला किया गया है और इससे बैंकिंग निजाम में नकद रकम की दस्तियाबी में कमी में मदद मिलेगी जो 8 अक्टूबर को तकरीबन 3,88,000 करोड़ रुपये फाजिल थी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की असलाहत नेज़ भारत और अफ्रीका के लिए और ज्यादा नुमाइंदगी पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने फलाई दुबई के हवाई जहाज में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की तहकीकात के लिए केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज के मकाम पर जाने की कोशिश करने वाले कई अफराद को हिरासत में लिया। बीजेपी ने कहा है कि ज़िमनी चुनाव में उसकी कामयाबी से जमहूरियत में एतमाद को तकवीत मिली है। पार्टी ने अपोजिशन पर एहतजाज के जरिए अवाम की जिंदगी में खलल डालने का इल्जाम लगाया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति के इस सफर में आज सुनेंगे एक नए सांस्कृतिक गांव की कहानी, एक कलाकार की अनुपस्थिति से बातचीत, शहर की छतों पर उगती हरियाली और कुछ ऐसे नाम जिन्हें हम आज याद करेंगे। सबसे पहले हमारा संपादकीय।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस घोषित किया। पहली बार ये दिवस 2012 में मनाया गया और इसकी जड़ें 1995 की बीजिंग घोषणा में है, जहां पहली बार बालिका को नीति विमर्श के केंद्र में रखा गया था। यानी दुनिया को ये मानने में भी सदियां लगी कि लड़की सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं, अपने आप में एक स्वतंत्र नागरिक है। भारत की कहानी भी इस मायने में ज्यादा अलग नहीं थी और कुछ मायनों में अलग भी है। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लड़कियों का स्कूल खोला था। यानी बालिका शिक्षा का बीज हमारी ही मिट्टी में बहुत पहले पड़ चुका था, फिर भी आज के आंकड़े हमें एक आईना सा दिखाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2019-21 के अनुसार 20 से 24 साल की लगभग 23% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले ही हो गया था। NFHS 4 में ये आंकड़ा करीब 27% था। इन आंकड़ों में ये गिरावट सुकून तो देती है, पर हर चौथी पांचवी बच्ची की शादी का बचपन में हो जाना कोई छोटी बात नहीं। जन्म के समय लिंगानुपात में भी थोड़ा सुधार दिखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी आई। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा, मगर कार्यबल में उनकी भागीदारी का सवाल अब भी खड़ा है। सवाल अब सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं, स्कूल के बाद आसमान तक पहुंचने का है। पढ़ने की आजादी के बाद चुनने की आजादी चाहिए, विषय चुनने की, पेशा चुनने की, साथी चुनने की और न चुनने की भी। हमारी संस्कृति में कन्या को देवी कहने की परंपरा है, पर देवी बना देना अक्सर इंसान ना बने रहने देने का तरीका भी बन जाता है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि उसे पूजा नहीं, पर्याप्त हवा, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पढ़ाई और बिना डर के एक रास्ता चाहिए। उसके हिस्से का आसमान उसे दान में नहीं मिलना चाहिए, वो उसका अपना है। हमें बस उसकी परवाज को संभालना है और उसके रास्ते की दुश्वारियां हटानी है। बेटियों के आसमान की बात के बाद अब बात जमीन की। एक ऐसी जमीन की जहां भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक गांव का रूप लेने जा रही है। नाम होगा कलाग्राम। इसकी परिकल्पना पर सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से बातचीत की गुलनिगार चौधरी ने। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सीसीआरटी क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये कला के किन क्षेत्रों में काम करता है?
1: देखिए, ऐसा है कि सीसीआरटी दैट इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नाम में ही बहुत कुछ है कि ये कल्चरल रिसोर्सेज तैयार करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देश भर के स्कूल टीचर्स हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनको हम आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये कोर्स नहीं है। तो देश भर के जो स्कूल टीचर्स है उनको जब हम इसमें ट्रेन करते हैं तो वो हमारे एक कल्चरल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। अब उनको सिर्फ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये

0: चारो स्पर्धाओं में सिर्फ उनको ट्रेनिंग करना, उससे संबंधित जो जो बातें हैं, फिर सारी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, तो इनको लेकर भी क्राफ्ट है, फोक आर्ट्स है, इनको भी लेकर के डांस ड्रामा म्यूजिक पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो ये जो सारी बातें हैं जिनका संबंध आर्ट और कल्चर से है, और फिर ये आर्ट और कल्चर को हम एजुकेशन के भी साथ में जोड़ते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो CCRT ये आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर में कला के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से एक ऐसी पर्सनैलिटी टीचर की बनाते हैं कि वो सही में एक कल्चरल एम्बेसडर करके काम करता है, ये फिर हमारे देश भर में काम करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को ये सारी बातें पढ़ाए जो उन्होंने ट्रेन किया है, वो बातें सारी वो बच्चों तक पहुंचाते हैं, इसलिए देश भर में जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक हमारी बात पहुंचती है, तो ये बहुत अहम एक बहुत अच्छा एक कार्य है ऐसा मैं समझता हूं। तो इन सारी बातों को लेकर हमारा एक सेंटर है, 1979 में शुरू हुआ था द्वारका में, यहाँ पर फिर हमारी एक बहुत अलग बहुत सुंदर ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार है, यहाँ पे हम सब गतिविधियां करते हैं।
1: CCRT के द्वारा कला ग्राम नाम के इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
0: कला ग्राम तो निश्चित ही ये दो डिवीजन है और इसके पीछे एक सोच है, कला गुरुकुल जहां हम बात करते हैं, हमारा कहना है कि कला गुरुकुल में हम पूरा जो रिसर्च वर्क है, जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर का, हम बड़े डिटेल में यहां पर करने वाले हैं, यहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग भी आएंगे जो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, फेलोशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, टीचर्स को भी पढ़ाएंगे। एकेडमिक पार्ट जो होता है आर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हो सकता है कि आगे चल के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हम इसमें आर्ट और कल्चर को लेकर शुरू करेंगे। और दूसरा हमारा कलाग्राम का क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उन लोगों के वर्कशॉप्स होंगे, वो लोग यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो लोग बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो प्रोडक्ट बच्चे भी तैयार करेंगे, टीचर्स भी तैयार करेंगे, उसका हम मार्केटिंग करेंगे और हम ये देखेंगे कि इससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, ताकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं आर्ट के क्षेत्र में उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिजिनस जो भी कलाकृतियां बनती है उसको भी कहीं कहीं मार्केट मिलेगा। तो कलाग्राम में हम जैसे है कि आर्टिजन क्लस्टर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जीबिशन और कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए कुछ स्पेसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने और एक सोचा है कि कल्चरल टूरिज्म और इंटीग्रेटेड जोन्स इस प्रकार से हम उसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे, उसका एक हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी रहेगा जिसमें डायरेक्ट क्राफ्ट सेल्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल फेस्टिवल्स, ऐसे सारी बातें रहेंगी। तो ये कला गुरुकुल और कला ग्राम ये दो लेवल पर काम करेंगे और दो लेवल पर काम करने के बाद में जब हम सोचेंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक और जहां पर एकेडमिक है वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल भी, तो दोनों बातों में ट्रेनिंग यहां पे सबको दी जाएगी, देश भर के जितने आर्टिस्ट है उन सबको फायदा होगा उसका, क्योंकि यहां से आर्ट वर्क जो बनने वाले हैं वो बेचे भी जाएंगे जिसमें एक जनरेशन भी होगा।
1: डॉक्टर साहब, तो इस प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप किस तरह रहेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू जनरेट किस तरह करेंगे आप?
0: हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक और जहां आप बोलते हो कि हम एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे या प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि अकेले के भरोसे तो होगा नहीं, तो पार्टनरशिप जो है वो भी करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में हमने सोचा है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप जो है ये हमारे सोसाइटी के साथ किन किन के साथ हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो गवर्नमेंट की कल्चरल बॉडीज है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, फिर यूनिवर्सिटीज है और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ में भी हम मिलकर के काम करेंगे, हो सकता है उनके साथ हम MOU भी करेंगे। कुछ इंटरनेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बहुत अच्छा काम करती है आर्ट और कल्चर को लेकर, हम उनके साथ भी काम करेंगे, उनके साथ में शायद कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स भी हम बना सकते हैं। कुछ NGOs जो है जो हेरिटेज और आर्ट्स पर बहुत काम करते हैं, CSR पार्टनर्स या प्राइवेट फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं उनके भी साथ हम देखेंगे कि फंडिंग हमको सपोर्ट कैसा मिल सकता है, उनके साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन कैसा हो सकता है, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जब तक कि हम रेवेन्यू जनरेशन करेंगे नहीं तब तक ये ढंग से चलेगा नहीं। तो रेवेन्यू जनरेशन प्लान में भी, एक्टिविटीज में भी हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिसकी फी रहेगी, टिकटेड कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, फेस्टिवल्स रहेंगे, फिर कुछ कंसल्टेंसी भी रहेगी और कल्चरल सर्विसेज भी हम देंगे जिसका हमको पैसा मिलेगा, फिर पब्लिकेशन रहेगा, सेल्स ऑफ बुक्स रहेंगे, एजुकेशनल मटेरियल भी हम सेल करेंगे, फिर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चरल प्रोडक्ट्स ये भी हम जो तैयार करेंगे उसका भी हम प्रमोशन करेंगे, कल्चरल टूरिज्म एक्टिविटीज को हम बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंसेस जो है प्रोडक्शन हम हमारे बढ़ाएंगे।
1: कलाग्राम कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए और कितने समय में कला प्रेमियों को ये सब देखने का मौका मिलेगा?
0: हमारे CCRT जो जहाँ पर स्टैब्लिश है द्वारका में तो करीब करीब 10 एकड़ लैंड में सीसीआईटी है। हमारी प्रांगण में हम वहां पर एक कलाग्राम वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका

0: कंस्ट्रक्शन वर्क भी हमारा अभी करीब करीब खत्म होते आ रहा है, 80% काम हमारा हो गया है और हमारी जो एक्टिविटीज है वो अभी से वो शुरू हो जाएगी। मतलब वहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, ये सारा हमारा जो है एक्टिविटीज, एक्सटेंशन एक्टिविटीज वगैरह, फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को दी जाती है उनके साथ में लेकर जो एक्टिविटीज है वो सारा हमारा शुरू हो जाएगा। पब्लिक जो यहाँ पर आने वाली है उनको भी एक करीब करीब एक 6 महीने के अंदर में उनको यहाँ पे ये लोग विजिट कर सकेंगे और यहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि ये सही में एक बहुत बड़ा कल्चरल हब बनाया गया है सीसीआरटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा।
1: आर्टिजन्स के लिए स्टॉल्स या शॉप्स का क्या प्रावधान रहेगा कलाग्राम में?
0: अब इसमें क्या दो लेवल पर काम होगा, एक तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर्स जो लड़के रहते हैं, जो काम करने वाले आर्टिस्ट है, एक अमेच्योर लेवल पर काम होता है, तो फेलोशिप और स्कॉलरशिप होल्डर्स जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के लिए हमारी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि उनको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स लोग लाएंगे, है ना, उनके लिए कुछ कोर्सेज शुरू करेंगे, ये एक लेवल का काम हो गया। दूसरा ऐसा है कि हमको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमको प्रोफेशनल लेवल पर भी काम करना है। तो प्रोफेशनल लेवल पर जब काम होगा तो देश भर में क्राफ्ट के बारे में इतना वर्क लोग करते हैं, जैसा बेल मेटल का वर्क है छत्तीसगढ़ में किया जाता है बस्तर, तो ऐसे जो जो ओरिजिनल इंडिजिनस काम करते हैं वो प्रैक्टिकल काम करते हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उन लोगों के यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगे। दूसरी बात ऐसी है कि एकदम हाई प्रोफेशनल लोग भी जो रहते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पेंटर है, बहुत बड़ा स्कल्पचर है, वो यहाँ पे आके रह सकेंगे, वो यहाँ रहेंगे, वो काम करेंगे और उनको हम जगह भी देंगे और उनके माध्यम से बाकी लोग भी काम सीखेंगे, वो भी एक काम यहाँ पर होगा। दूसरी बात ऐसा है जो हम स्टॉल्स यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, तो जो स्टॉल्स हम तैयार करेंगे वो स्पेशली रेंटल बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश भर में हैं लोग की जो प्रोफेशनली भी काम करते हैं, कमर्शियल लेवल पर काम करते हैं, उनको हम ये फैसिलिटी अवेल करके देंगे, उनको यहाँ पे स्टॉल्स के लिए जगह देंगे, लेकिन उसका एक रेंट रहेगा, उसके सिवा हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा नहीं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रोफेशनल्स का बताया अभी हमें, तो क्या इसमें छोटे स्तर पर काम करने वाले आर्टिजन्स को भी कोई सुविधा मिलेगी या कोई डिस्काउंट जैसी कोई चीज मिलेगी जिससे कि वो भी कला को आम लोगों तक पहुंचा सकें या अपनी कला को दुनिया को दिखा सकें?
0: बिल्कुल, हमने सोच के रखा है, क्योंकि सारे के सारे पैसा कमा लेते ऐसा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका काम प्रोफेशनल रहता है, वर्क उनका बहुत शानदार रहता है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग तो डाइंग आर्ट फॉर्म पे भी काम करने वाले हैं, बहुत सारे डाइंग आर्ट फॉर्म्स है भारत में, कई सालों से चल रहे हैं, वो लोग ऐसे आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पे लाएंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और वो आर्ट मरनी नहीं चाहिए।
2: अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम। सौजन्य गुल निगार चौधरी, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।

0: कला की सार्थकता का एक पहलू ये भी है कि कला समुदाय के साथ कैसे चलती है, उसके साथ कैसे निभाह करती है। और इसी क्रम में हमारी अगली प्रस्तुति में हम मिलते हैं एक ऐसी कलाकार से जिनका काम अकेले में खामोशी में चलता है। आशिमा धीर सहगल की कला उन चीजों की हाजिरी लगाती रही है जो अब नहीं है, यानी अनुपस्थिति की हाजिरी। स्मृति अक्सर चीजों में नहीं, चीजों के ना होने में बसती है। आशिमा की कला इसी ना होने की पड़ताल है। गुजरा हुआ कल यहाँ एक धुंधला अक्स बनकर लौटता है। छूटी हुई जगहें, मिटे हुए निशान और बीते रिश्तों की परछाइयाँ अलग अलग माध्यमों में दर्ज हो जाती हैं। उनकी कला हमें बताती है कि अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति है और याद करना भी एक तरह की हाजिरी लगाना है।
1: मुझे आर्ट और कल्चर में बहुत दिलचस्पी थी शुरू से, जब से मैं छोटी थी। What was here? ये उसके बारे में है, Does matter have memory? तो मैं एक आर्ट रेजिडेंसी के लिए गई 45 डेज के लिए हिमालयाज में, विच इज वहाँ पर ना रॉरिक म्यूजियम है नगर में। और वहाँ पर इस रेजिडेंसी में मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। आई बिगेन टू इन्वेस्टिगेट दोज थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स की तो मेमोरी होती है, पर मैं सोचती थी कि

0: इतनी अच्छी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है यहाँ पर, सब गिरी हुई, कोई दिखता नहीं है इसको. वेरी ऑफ्टन आई टू थिंक दैट, मतलब ये रिमेम्बर करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, सेलिब्रेशंस हुई, और साथ में यंगर पीपल कभी भी देखते भी नहीं है उसकी तरफ. सो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दोज इन टू कंटेम्प्रेरी आर्ट.
1: जब मैं अपने ट्रेवल्स पे होती हूँ तो आर्किटेक्चर जब मैं देखती हूँ, उनकी डिटेल्स जो मटेरियल और मैटर होता है जिससे वो बिल्डिंग्स बनी है, तो वो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ. और बहुत बारी सोचती हूँ कि कैन द वॉल स्पीक.
0: साथ में इन्वेस्टिगेट द आइडिया ऑफ डज मैटर हैव मेमोरी. तो ये स्लोली स्लोली मैं इन्वेस्टिगेट कर, जैसे मैं करती गई, मैंने रियलाइज किया कि मैटर तो बोल नहीं सकता, बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट दैट मैटर हैज मेमोरी. बिकॉज जब आप कोई दरवाजे से आप जाते हो, स्पेशली नगर में, वहाँ जब वुड से और स्टोन से बना हुआ है, तो वो ना वेयर आउट हो जाता है. तो दोज आर द एविडेंसेज दैट मैटर डज रिमेम्बर, बिकॉज थ्रू दीज एविडेंसेज ऑफ चेंज ऑफ मैटर यू कैन मेक आउट दैट दे डू रिमेम्बर थिंग्स. एंड वेरी ऑफन यू गो टू अ टेम्पल, वहाँ पर भी आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं. वहाँ पर जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव कम देयर, और उधर उन्होंने दुआएं मांगी हैं, विशेज मांगी हैं. तो जब आप जाते हो तो यू ऑटोमेटिकली गेट सम सुकून मिलता है. तो मैटर एक्चुअली रिमेम्बर करता है कुछ चीज़, और वो हमारे को ट्रांसमिट करता है साइलेंटली. और फिर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि ये मेरे आर्टवर्क है, उसमें देखो अंदर और पूछो कि इसमें क्या था, ये क्या था पहले और अभी क्या बन गया है. क्योंकि ना मैंने ये कपड़ा जो सा है, ये मैंने अपने आप बनाया है. ये बनाया है वेस्ट सिल्क का, और वेस्ट सिल्क बहुत फ्रेजाइल होता है. सो मैं दिखाना चाहती थी कि मेमोरी भी बहुत नाजुक है चीज़ों की, ये सब चीज़ों की मेमोरी, सब मेमोरी फ्रेजाइल है. और ये सब मेरे आर्टवर्क में मैं नाजुकपन दिखाना चाहती थी. तो इसीलिए मैंने ऑर्गेन्जा यूज़ किया है क्लॉथ में, डबल ट्रिपल लेयर के, काफ़ी लेयर्स के ऑर्गेन्जा किए हैं, और फिर हैंड स्टिचिंग करी है, और वो भी नाजुक दिखा रही है. और फिर ये सारी चीज़ें आप जब सब तरफ से देखोगे तो इनमें बहुत ज़्यादा फ्रिजिलिटी या नाजुकपन है. तो मैंने ये सब चीज़ें जो फेंकी हुई चीज़ें थी, उनको मैं ट्रांसफॉर्म करके आर्ट में लाना चाहती थी, ताकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे को मैटर जो होता है, चीज़ें जो होती हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए. जैसे जापानीज कल्चर में भी है, कुछ भी ओल्ड हो जाता है ना, उसको रिस्पेक्ट करते हैं. तो पहला आर्टवर्क है ट्रेसेस ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें दिख रहा है कि एक्चुअली बिल्डिंग्स काफ़ी पूरी हैं, इमेजेस कंप्लीट. उसके बाद मतलब टू क्रिएट मेमोरी, मैंने उनको थोड़ा सा डिसॉल्व किया है. ये डिसॉल्व किया है

0: अनुपस्थिति की हाजिरी। अभी आपने ये लघु प्रस्तुति सुनी। सौजन्य नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अनुपस्थिति को रंग और आकार देना आसान नहीं, पर अब हम चलते हैं मौजूदगी की ओर, एक ऐसी हरी मौजूदगी की ओर जो शहर की छतों पर उग रही है। और इसी निजी हरियाली के ठिकाने पर आधारित है हमारा लघु रूपक छत पर उगती जिंदगी।
1: सुबह सुबह छत का दरवाजा खुलता है
2: और कई मंजिला इमारतों के बीच एक छोटा सा हरा संसार मुस्कुराता है।
1: गमलों में तुलसी, पुराने टब में पुदीना, खाली पेंट के डब्बों में टमाटर,
2: कहीं ड्रमों में मौसमी सब्जियां, कहीं बोतलों में लटकती बेलें।
1: ये छतें अब सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, मन के ठिकाने हैं।
2: पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो इमारतों को ठंडा रखते हैं, धूल सोखते हैं, बारिश का पानी थामते हैं और शहरी गर्मी को घटाने में मदद करते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात, ये हमें

0: धैर्य सिखाते हैं, बीज रोपकर इंतजार करना, उस दौर में जब हर चीज इंस्टेंट है।
1: शुरुआत सिर्फ एक गमले से ही हो सकती है।
0: धूप कितनी आती है ये देखिए, हल्की मिट्टी, गोबर की खाद और रसोई का जैविक कचरा और छत की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिए।
1: कंक्रीट के इस जंगल में अपना एक पेड़, अपना एक फूल, अपना एक छोटा आसमान। प्रसिद्ध अर्बन गार्डनर किशी अरोड़ा कहती हैं,
2: अगर आपके पास कोई भी पौधा नहीं है तब भी आप एक गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली बीज पहले से ही होते हैं, किचन के अंदर हमेशा बीज होते हैं। आप अपना नमकदानी खोलिए, आपको उसी में 3 बीज मिल जाएंगे, धनिया, मेथी और राई, उसी से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर वो नहीं तो टमाटर है, और टमाटर नहीं तो खीरा है। अगर आप इनकी सिर्फ एक स्लाइसेस काट के मिट्टी में लगा के गाड़ देंगे, आई प्रॉमिस यू एक सैपलिंग निकलेगा उसके अंदर से। तो हमको बीज ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर के अंदर ही है। शुरुआत में सबसे पहले 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप देखिए आपके घर में सूरज की किरणें किस तरफ गिरती हैं। अगर आपकी बालकनी है, सोचिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तब तो बात अलग है, क्योंकि वहां पे दोनों वर्जन होंगे, छाया वाला एरिया और धूप वाला एरिया। बट लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि आप एक घर में हैं जहां बालकनीज हैं, तो आप तो पहले देखिए कि आपके सूरज कितना आता है। अगर खूब धूप आती है तो धूप वाले पौधे रखेंगे, फूल वाले पौधे रखेंगे, और अगर छाया वाला है तो छाया वाले भी पौधे हैं, हर तरीके के पौधे होते हैं। तो पहले सूरज की किरणें कितनी आती हैं, एंड दूसरी चीज मिट्टी बनाना, जो मुझे लगता है हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, नहीं करना चाहिए वो। अगर आपके आसपास कोई पार्क है, वहां के माली से बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए और एक कट्टा मिट्टी लेकर आइए, और उस मिट्टी के अंदर आप अपने घर के थोड़े बेसिक मसाले डालिए, जैसे हल्दी और जरा सा दालचीनी का पाउडर और जरा सा काली मिर्ची की, कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ हो तो वो अपने आप ठीक हो जाए। घर में हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीजें होती हैं, पर हम उसे देखते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं। मिट्टी, धूप का जब ध्यान रख लें, उसके बाद आप पौधा लगाएं। धूप के जगह अगर मिल रही है तो वहां पे धूप के पौधे, बहुत धूप के पौधे होते हैं, और नहीं तो फिर इनडोर पौधे, छाए वाले, वो लगाएं। और मिट्टी में जब आप कभी घर में खाना बना रहे होते हैं तो थोड़ा याद रखिए कि घर में हमारे जितने भी खाने के छिलके होते हैं उनकी कॉम्पोस्ट हमें बनानी चाहिए। खाद बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में किचन है और वहां पे कुछ भी खाना बन रहा है तो 2 चीजें, वहां पे जितने भी खाने के चीजें जो आप फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर, प्लीज उसे मत फेंकिए। घर में हर किसी के दूध का बर्तन होता है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, कुछ भी होता है, आप उसमें कलेक्ट करिए एक दिन का। तो जैसे मेरे घर में सब्जियां बनी, एंड ट्रिमिंग्स होता है, कुछ होता है जिसे हम ग्रीन पार्ट कहते हैं। मैं बहुत बेसिक एक डेफिनेशन बता रही हूँ। मैं यहाँ पे नींबू हमेशा अलग कर देती हूँ कि मैं अपने नींबुओं से एंजाइम्स बनाती हूँ। तो पहली बात यह है कि जो भी खाने का जितना भी वेस्ट होता है डस्टबिन में मत डालिए, प्लीज एक डब्बे में इकट्ठा करिए। दूसरी चीज, घर में हर किसी के एक ढक्कन वाली बाल्टी जरूर होती है, वो बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी के नीचे एक या तो टब रख दीजिए, एक ट्रे रख दीजिए, बड़ी थाल रख दीजिए, कुछ ऐसा रख दीजिए नीचे कि आप जब उस बाल्टी में छेद कराएंगे कारपेंटर से, चारों तरफ छेद करा लीजिए एयर फ्लो के लिए। हम उस बाल्टी में छेद करा रहे हैं चारों तरफ। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर सबसे पहले अपने खाने का जो भी हमारा ट्रिमिंग्स होती है वो डालते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन पार्ट हुआ, फिर डालते हैं हम कार्बन पार्ट, जितने भी सूखी हुई चीजें होती हैं। कहीं से डिलीवरी आती है चेक करिए, अगर वो पेपर कार्डबोर्ड रिसाइक्लेबल है तो उसको फाड़िए, छोटा छोटा करिए, जितने सूखे पत्ते गिर, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ये पत्ते डालिए, इसे हम कार्बन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम कर रहे हैं ग्रीन एंड ब्राउन का ऑल्टरनेटिव लेयर। पहले हमने खूब सारा नीचे ग्रीन ये ट्रिमिंग्स डाल दिया, फिर ब्राउन कार्बन डालिए, आपने ये ऑल्टरनेटिव लेयर बनाई और इस पे हल्का सा पानी का छिड़काव करा और फिर लास्ट में कार्बन डाल दिया और ढक दिया। थोड़े टाइम में ये कॉम्पोस्ट बन जाता है। इसको हिलाते रहना डेली और इसको एक थोड़ा सा शेडी डार्क सेमी शेड एरिया में, जहां पे आपको लगता है थोड़ा अलग कर सकते हैं, उसे कर दीजिए। जिससे कि कई लोगों को जैसे रिगली चीजों से इनसे के अंदर लगेंगी थोड़े कीड़े जो अच्छे होते हैं हमारे लिए बहुत, तो इसको थोड़ा सा कोने में करिए और ये डेली फॉलो करिए, तो आपके पास कॉम्पोस्ट थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगी। नहीं बनाना चाहते कॉम्पोस्ट और आपको थोड़ा अजीब लगता है तो जिस गमले में या जगह पे पौधा लगा हुआ है उसके साइड में आप थोड़ा सा खोद के ये खाने का जो मिक्सचर है अंदर डाल के मिट्टी से ढक दें। अर्थ वो अपने आप उसको तोड़ेगी और नीचे पोषण देगी इन सब पौधों को। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कभी चावल बनता है, दाल बनता है, इनको धोइए, इनका पानी आप फेंकिए मत, इनका पानी आप अपने पौधों को दीजिए, उसे थोड़े दूसरे पानी में डाइल्यूट करें, डाल दें। बहुत सारे सिंपल तरीके हैं अपने पौधों को पोषण देने के, बट जो मेन चीज है पहले धूप देखिए, उसके बाद आप मिट्टी देखिए, और फिर हम डिटेल में जाते हैं कि अच्छा इसको और कैसे बड़ा करें। पर ग्रोइंग अ प्लांट बहुत सिंपल है जिसे हमें

0: कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। मेरा छत ना, जिसे बोलते हैं, एक बायोडाइवर्स एरिया है। मेरे छत पे पेरेनियल्स हैं जो पूरे साल उगते हैं, थोड़े ऑर्नामेंटल्स भी हैं, सब्जियां हैं, सीजनल हैं, सीजनल फूल हैं। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, एक गार्डनर के लिए ये बहुत अच्छा मौसम होता है क्योंकि इस मौसम में प्रीटी मच सब कुछ उगता है। गर्मी से हम थोड़ा परेशान होते हैं, बट ये मौसम बहुत अच्छे वाला मौसम है जहां धूप भी होती है और एक हल्की सी ठंडक भी होती है रात में। एक चीज जो मैं अपने गार्डन में ऊपर फॉलो करती हूँ, मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ, मुझे पेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चेन है जो हमको जिस दिन समझ आ गई तो हम शायद इतना पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे। अगर छिपकली है तो वो एक कीड़े को खाती है तो वो कीड़ा उसका खाना बनता है और वो हमारे को उस कीड़े से बचाती है। तो ये एक चेन है जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उसको एक्चुअली रहने देना चाहिए। जितने बर्ड्स इंसेक्ट्स आपके टेरेस पे होंगे, उतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी होगा, उतना अच्छा फ्लोरा फौना होगा और वो बहुत हेल्प करता है पौधों को खुश रहने में। ये ना सिर्फ मेरे को खाना और रिटर्न में हर डेली कुछ ना कुछ देता है, ये मेरी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा खुश रखता है। मतलब मुझे शायद अब इंसान इतने पसंद नहीं है जितने मुझे पौधे पसंद है।
1: ये शहर के बीच प्रकृति के लिए बचाई गई एक छोटी सी जगह है
2: और शायद ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जीवन के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति।
1: छत पर उगती जिंदगी के साथ संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।

हरियाली की इस बात के बाद अब पतझड़ का वो हिस्सा जब हम उन्हें याद करते हैं जो जाकर भी कहीं नहीं गए। कुछ जीवन समय से बड़े होते हैं, कुछ राग रंग शब्द अपने रचयिता के जाने के बाद भी हमारे सांस्कृतिक जीवन में बजते खिलते और दर्ज होते रहते हैं। आज के स्मृति शेष में हम याद कर रहे हैं भारतीय कला संस्कृति की कुछ ऐसी विभूतियों को। सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर, जिनकी गायकी में कर्नाटक संगीत की परंपरा, अनुशासन और भाव संपन्नता का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। उस्ताद अब्दुल करीम खान, जिनकी गायकी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर की ऐसी कोमल और भावपूर्ण दुनिया रची जिसकी छाप आगे की पीढ़ियों तक पहुंची। राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय पौराणिक और सांस्कृतिक कल्पना को आधुनिक चित्रकला के माध्यम से एक बिल्कुल नई दृश्य भाषा दी। उस्ताद अली अकबर खान, सरोद का वो महान साधक जिनकी साधना ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व के मंचों तक पहुंचाया। बेगम अख्तर, जिनकी आवाज में गजल ठुमरी और दादरा केवल संगीत नहीं एक पूरा भाव जगत बन जाते थे। इन सभी को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक स्मृति को फिर से सुनना है, गुनना है। संस्कृति भारती के इस अंक का समापन हम बेहद भारी मन से कर रहे हैं। बीती 8 अक्टूबर को हिंदी और मराठी रंगमंच और सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर इस फानी दुनिया से गुजर गए। उनकी उम्र 75 साल की थी। ২০১৩ में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाना को सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं याद किया जाएगा, सूखे से जूझते किसानों के लिए काम हो या करगिल युद्ध के समय सैनिकों के बीच होना, और हाल ही में सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना। उनके संवादों की धार हमें हमेशा याद रहेगी, और ये भी कि वो एक ऐसे शख्स थे जो अपने कहे को जमीन पर निभाते थे। कला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है, चाहे वो चीख में हो या खामोशी में। नाना पाटेकर ने ये बार बार साबित किया। पत्रिका की ओर से हम इस महान कलाकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आप इस कार्यक्रम में कर्नाटिक शैली में गायन सुनेंगे। आज की कलाकार हैं अर्चना उपाध्याय।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टू नाइट्स कॉन्सर्ट यू आर गोइंग टू लिसन टू अ कर्नाटिक वोकल बाय अर्चना उपाध्याय।
0: अर्चना उपाध्याय एक प्रसिद्ध कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत गायिका है और आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार हैं। आप विदुषी वसंत लक्ष्मी हेब्बार और डॉक्टर वी अरविंद हेब्बार से अपना संगीत प्रशिक्षण शुरू किया और थोड़े समय तक आप स्वर्गीय श्रीमती रंजनी हेब्बार से भी शिक्षा हासिल की। आजकल आप संगीत गुरु चित्रवीणा एन रविकिरण के मार्गदर्शन में शिक्षा ले रही हैं। अपनी सहगायिका समन्वी के साथ आप लतांगी सिस्टर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप भारत और अमेरिका में 200 से अधिक संगीत समारोहों में प्रस्तुति दी है, जिनमें द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई, क्लेवलैंड त्यागराज महोत्सव और शिकागो त्यागराज उत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच शामिल हैं। इसके अलावा आप भारत, दुबई और जर्मनी में प्रसिद्ध कथावाचक श्री विनय वाराणसी के साथ भी कई प्रस्तुतियां दी हैं। अर्चना को MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप अवार्ड, युवा संगीत सम्राट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और राग लय प्रभा जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। संगीत के साथ साथ आप कीर्तनास ऑफ कर्नाटक पुस्तक का सह लेखन किया है और दासार्चने प्रोजेक्ट के तहत 101 कृतियों की रिकॉर्डिंग भी की है।
1: अर्चना इज अ प्रोमिनेंट कर्नाटिक वोकल आर्टिस्ट एंड एन ए ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her music training in 2008 under Vidwan Vasanta Lakshmi Hebbar and Dr. V. Aravinda Hebbar. She also had a brief training period under late Srimati Ranjani Hebbar and has been continuing her advanced learning under the guidance of Chitraveena N. Ravikiran at present. Alongside her duet partner Samanvi, together known as the Latangi Sisters, she has performed over 200 concerts across India and the US, including prestigious venues like the Music Academy Chennai, Cleveland Tyagaraja Festival, and Chicago Tyagaraja Utsavam. She has also collaborated with renowned storyteller Sri Vinay Varanasi across India, Dubai, and Germany. Archana's accolades include the MS Subbulakshmi Fellowship Award, first prize in the Yuva Sangeeta Samrat competition and the Raga Laya Prabha Award. Additionally, she co-authored the book Kirtanas of Karnataka and recorded 101 compositions under the Dasarchane project.
0: आज के संगीत कार्यक्रम में आपको वायलिन पर साथ दे रही हैं तन्मयी उपंगला और मृदंगम पर हैं सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर हैं बालकृष्ण होसमने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम की शुरुआत लालगुड़ी जी जयरामन जी की एक रचना एंतो प्रेमा वर्णा से कर रही हैं, जो राग बहुदारी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट शी विल बी अकंपनीड ऑन द वायलिन बाय तन्मयी उपंगला, ऑन द मृदंगम बाय सुनाद कृष्णा अमाई एंड ऑन द मोरसिंग बालकृष्ण हसमने। अर्चना उपाध्याय विल बिगिन हर कॉन्सर्ट विद एंतो प्रेमा, a Varna in Raga Bahudari set to Aditala, composed by Lalgudi J. Jayaraman.

0: भोदारी के बाद अब प्रस्तुत है पुरंदरदास की एक रचना धूप आरती, जो मोहन कल्याणी राग तथा आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय पुरंदरदासा, धूप आरती सेट इन राग मोहन कल्याणी एंड आदिताला।

0: मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना श्री गुरु गुहा, जो राग उदय रविचंद्रिका तथा रूपक ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय मुत्तुस्वामी दीक्षितर श्री गुरु गुहा विच इज सेट इन राग उदय रविचंद्रिका एंड रूपक ताला।

0: आगामी कार्यक्रम को जारी रखते हुए अर्चना उपाध्याय अब प्रस्तुत करेंगी उतुकाडु वेंकट रवि की रचना रसिक महोत्तमा, जो राग सरसांगी तथा मिश्र चापूताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर कॉन्सर्ट, अर्चना उपाध्याय विल नाउ प्रेजेंट रसिक महोत्तमा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ उतुकाडु वेंकट कवि, विच इज सेट इन राग सरसांगी एंड मिश्र

0: ये था कन्यावर्तनम, जिसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर सोनाद कृष्णा अमय तथा मोरसिंग पर बालकृष्ण भस्म ने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन त्यागराज की एक रचना चल रे रामा से कर रही हैं, जो राग आहिरी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam, presented by Sunada Krishna Amai on Mridangam and Balakrishna Hosmane on Morsing. Archana Upadhyaya will now conclude her concert with Chellare Rama, a composition of Tyagaraja, which is set in Ahiri Rag and Mishra Chapu Tala.

0: कर्नाटकी संगीत के कार्यक्रम में अब तक आप अर्चना उपाध्याय का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपके साथ वायलिन पर साथ कर रहे थे तन्मयी उपंगला तथा मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर थे बालकृष्णा होसमने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मंगलोर के स्टेशन में रिकॉर्ड कर आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ आज का अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: In tonight's national program of music, you were listening to a Carnatic vocal recital by Archana Upadhyaya. She was accompanied on the violin by Tanmayi Upangala and on the Mridangam, Sunada Krishna Amai and Balakrishna Hosmane on Morsing. This concert was recorded earlier at the studios of Akashwani Mangaluru and broadcast from Akashwani Delhi. Please stand by for our next program.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

सही समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता

0: के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish B. Abraham. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for reform of the UN Security Council, saying India and Africa cannot remain underrepresented in global decision-making. Addressing a gathering at the Adwa Victory Memorial Museum in Ethiopian capital Addis Ababa, Dr. Jaishankar called for fair African representation in both permanent and non-permanent membership.

एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:11 और 28 सेकंड हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर इन्हीं मीटर्स और किलोहर्ट्ज़ पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।